एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये एसआरएस का चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की

20वीं तिथि तद अनुसार 12 अक्टूबर 2026 सवेरे के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा कर

0: करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का यह सदस्य का चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम बंधनवार।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, जो समय की बचत करते हैं वास्तविकता में वो धन की बचत करते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर ही होता है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस आज सुनिएगा 339वीं कड़ी। छह बजकर 45 मिनट से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 12। आमंत्रित कलाकार गायक एवं संगीतकार शेखर सेन, संवादिका है ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, 8 बजे से सुनिए समाचार प्रभात, 8:15 से त्रिवेणी और 8:30 से नए जमाने के फिल्मी गीत सुनिए चित्रलोक में। सुबह 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम

केंद्रित है गीतकार निदा फाजली पर। 10 बजे से सुनिए पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत की चौथी कड़ी सुन सकते हैं। ग्यारह बजे से रंग तरंग, 12 बजे से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल और कार्यक्रम सुरीला सफर दोपहर 1 बजे से, 2 बजे से सुनिए त्रिवेणी। दोपहर 2:15 से दोपहर समाचार और 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। सखियों का इंतजार होगा खत्म 3 बजे से कार्यक्रम सखी सहेली के साथ। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा, आज सुनिए डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत। 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण, तराने नए पुराने कार्यक्रम 5:30 से, 6 बजे से हिंदी में समाचार। 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 शाम आप सुन सकते हैं संध्या रंजन। शाम 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, 12वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं पद्मश्री, गायक एवं संगीतकार शेखर सेन। शाम 7 बजे का समय, फौजी साथियों की सेवा में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम जय माला। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आज एक ही फिल्म से, इस कार्यक्रम में आज की फिल्म उलझन। रात 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका भाई वाह क्या कहने, लेखन सोमनाथ नागर का, निर्देशन कुमुद नागर का।

रात 8:15 से नए जमाने के गीत सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम के साथ, 8:45 से समाचार संध्या और रात 9 से कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गजल गायक जगजीत सिंह पर। 10 से सुनिए छाया गीत। 10:30 से ढलती जाए रात और 11 से रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

ये था आज का मुख्य कार्यक्रम। आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आपने सुना झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुनिए श्री रामचरितमानस आज 339वीं कड़ी।

श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। श्री राम के वाणों ने सर्प के समान उड़ते हुए रावण के सारथी और उसके रथ के घोड़ों का संहार कर दिया है। वो शीघ्र दूसरे रथ पर चा चढ़ा और उसने अपने अस्त्रों से श्री राम के रथ में जुटे घोड़ों का हनन कर दिया। क्रुद्ध होकर श्री राम ने उसके दसों सिरों में 10-10 वाण मारे। रक्त की धाराएं बह चली। वो दौड़कर उनकी ओर बढ़ा। श्री राम के वाणों से उसके सिर और 20 भुजाएं कट कट कर गिरने लगी, किंतु कटने के बाद उसके

उगाते हैं, भुजाएं यथावत हो जाती हैं। ये क्रम टूटता नहीं। सारा आकाश रावण के कटे सिरों और भुजाओं से पट गया है, किंतु वो पूर्ववत वाण संधान करता जा रहा है। अपने वाणों से उसने श्री राम के रथ को इस प्रकार ढक दिया है कि वो दिखाई नहीं देता। आसमान में छाए रावण के सिरों से निरंतर चुनौती भरा उद्घोष हो रहा है। कहां है वानर राज सुग्रीव, लक्ष्मण कहां है और कहां है स्वयं राम।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनते हैं श्रृंखला की 12वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और शेखर दादा कालखंड के हिसाब से आज भक्ति भाव में हम सबको अवगाहन करवा रहे हैं। तो शेखर दादा बताइए हमें कि अब किस इरा में हम पहुंच रहे हैं, किस कालखंड में पहुंच रहे हैं और कौन से वो गायक हैं जिनको आज की इस कड़ी में शामिल करेंगे।
2: हमारे जो अगले गायक हैं वो भी एक बहुत ही मधुर परिवर्तन के रूप में आए थे। बहुत अनूठी आवाज थी, बहुत स्पष्ट उच्चारण और सुरों में एक अद्भुत पवित्रता थी। 1973 से उनका गायन शुरू हुआ था
1: जी।
2: और धीरे धीरे वो गाना जो था उनकी सरलता और गाने में एक अजीब सा जो फक्कड़ी अंदाज, जो फकीराना अंदाज कहते हैं, वो था। और भक्ति संगीत को उन्होंने एक बार पुनः लोकप्रिय बना दिया
1: जी जी।
2: और उनका नाम था पंडित हरिओम शरण जी का
1: जी।
2: उनके सारे भजन

सारे ही भजन इतने लोकप्रिय हुए कि हर एक रिकॉर्ड कंपनी, उसमें तो दो तीन ही होती थी, HMV और म्यूजिक इंडिया और उस तरह की, लेकिन उन सबको भजनों की एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ी। और मैं चाहता हूं कि उनका एक प्रसिद्ध भजन हम लोग सुने, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे।

0: हरिओम चरण के स्वर में ये भक्ति रचना हमने सुनवाई। और सच बात है शेखर दादा कि आजकल जैसे गाने हिट होते हैं वैसे ही एक जमाने में ये भजन हिट हुआ करते थे। अब बताइए हमें कि अब अगली रचना कौन
1: मैं
0: सी?
1: चाह रहा हूँ कि अगली रचना सुनाने के पहले मैं आपका ध्यान इस बात पे लाऊं कि हमारे यहाँ केवल शायद हमारी ही संस्कृति ऐसी है,
0: जी
1: भारतीय या सनातन संस्कृति ऐसी है कि यहाँ कई बार भक्त की भक्ति जो है वो ईश्वर से बड़ी हो जाती है,
0: जी
1: इतनी बड़ी हो जाती है कि भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं।
0: जी जी
1: जब भगवान राम पर संकट आता है और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरते हैं तो वो हनुमान से जाकर के कहते हैं कि भैया तुम किसी भी तरह से मेरे भाई की प्राण बचाओ।
0: जी जी बिल्कुल।
1: या वो केवट के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे नैया पार लगाओ। और ये भक्ति की शक्ति ही है कि अर्जुन भी जब महाभारत में युद्ध करने जा रहे हैं तो स्वयं श्री कृष्ण आकर के उनके सारथी बन जाते हैं।
0: जी जी।
1: और इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा भक्ति का या भक्ति की दिव्यता का कि आज भगवान राम के भक्त हनुमान है ये तो हम सब जानते हैं, पर हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है भगवान राम के मंदिर से।
0: जी जी बिल्कुल सही।
1: तो
0: बात
1: ये हमारे यहाँ बड़ी अद्भुत बात है। और मैं चाहता हूँ मेरा एक बड़ा प्रिय भजन है और मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय अनूप जलोटा जी, उनका एक प्रसिद्ध भजन है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, रामचरितमानस में ही केवल ये प्रसंग आता है, वाल्मीकि रामायण में केवट का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जिस तरह से गोस्वामी जी ने केवट का प्रसंग मानस में जोड़ा है और वो इतना हम सब का प्रिय प्रसंग है कि जब जब भी वो प्रसंग आता है या अनूप भाई के स्वरों में हम सुनते हैं तो पता नहीं कैसे हमारी आंखों की कोर में वो छोटे छोटे आंसू के कण जो हैं वो आकर जमा हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ राग तोड़ी में ये रचना निबद्ध है, हमारे सभी संगीत सरिता के सुधी श्रोता इसका आनंद लें, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से

0: कल की कड़ी में कुछ और रचनाओं के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा ले रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। सवेरे के 7 बजे आइए सुनते हैं नमस्कार अलवर। नमस्कार अलवर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे बात करेंगे साइबर सुरक्षा, वित्तीय लेन देन में सुरक्षा। श्रोताओं, वित्तीय लेन देन में साइबर सुरक्षा बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से आपकी गाड़ी कमाई की चोरी हो सकती है। ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सतर्कता और जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। वित्तीय लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और किस तरह हम सुरक्षित रह सकते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, वित्तीय लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सावधानियां रखकर हम सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे अपना पासवर्ड, OTP, पिन या बैंकिंग डिटेल्स किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कभी शेयर ना करें। बैंक अधिकारी भी आपसे इन डिटेल्स को नहीं मांगते हैं। अपने सभी बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें। इससे पासवर्ड लीक होने पर भी आपका अकाउंट एक्सेस कोई नहीं कर पाएगा।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

श्रोताओं, वित्तीय लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए हम बात कर रहे हैं कि क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो जब भी आप कोई पासवर्ड बनाएं, हमेशा अक्षरों, नंबरों और विशेष प्रतीकों को मिलाकर मजबूत पासवर्ड बनाएं और समय समय पर इसे बदलते भी रहें। केवल उन्हीं वेबसाइट से खरीदारी या भुगतान करें जिनके URL की शुरुआत में HTTPS और पैडलॉक लगा हो।

श्रोताओ, तो हमारे ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर आने वाले लुभावने वाउचर, डिस्काउंट या अकाउंट वेरिफिकेशन वाले अनजान लिंक्स पर कभी भी क्लिक ना करें। रेलवे स्टेशन, कैफे या सार्वजनिक जगहों के मुफ्त वाईफाई से जुड़कर कभी भी वित्तीय लेनदेन ना करें। इसके लिए हमेशा अपने पर्सनल मोबाइल डेटा का ही उपयोग करना चाहिए।

श्रोताओं, इतनी सावधानियां रखने के बाद भी अगर कभी किसी साइबर या वित्तीय धोखाधड़ी के आप शिकार हो जाते हैं तो बिना समय गवाए तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और भारत सरकार के आधिकारिक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा अपने संबंधित बैंक को तुरंत कॉल करें और अपने कार्ड और अकाउंट को ब्लॉक कराएं ताकि आगे का नुकसान रोका जा सके।

श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात कर रहे थे साइबर सुरक्षा और वित्तीय लेन देन में सुरक्षा के बारे में, और अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप नमस्कार अलवर कार्यक्रम सुन रहे थे। FM पेंट 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: आराधना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें थी। अगले गीत को सुनने से पहले सुनिए ये संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अखियों के झरोखों से आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गाना। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ें थी। फिल्म का नाम था आँखियों के झरोकों से। यह गीत अभी आपने सुना और आइए सुनवाते हैं आपको महबूबा फिल्म का एक गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें, और फिल्म का नाम था गीत। और अब सुनते हैं हाथी मेरे साथी फिल्म का एक गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं।

आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें थीं। फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी,
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू

0: अपने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। एक रिपोर्ट।
1: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
2: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
4: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
2: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: जालिम लोशन दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होर्मोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
2: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें ओबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123314-01123717। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
4: क्या हो गया ऐसा?
3: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
4: ये कमाल कैसे हो गया?
3: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
4: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
3: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों

0: ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकशक्ति की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। सुगम संगीत में आइए आज आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की गाई हुई कुछ गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
6: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
5: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है।
6: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
5: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
7: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
8: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
7: हाँ।
8: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
7: हाँ।
8: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
7: हाँ? पता नहीं।
8: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
9: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

सुगम संगीत में अभी आप गुलाम अली की गाई हुई कुछ गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञान वर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए NCERT की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञान वर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल

0: कुलवंती देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुचर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं विमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवरोन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है, जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों, ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत

0: पसंद है।
1: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों, आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
2: जी सर,
3: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
1: ठीक है,
2: ठीक है, बहुत अच्छा लगा।
1: तो बच्चों, कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
2: हम अनेक किंतु एक।
1: तो अब बच्चों, मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
2: जी सर, तैयार हैं।
1: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के,
2: हैं कई प्रदेश के,
1: किंतु एक देश के,
2: किंतु एक देश के,
1: विविध रूप रंग हैं,
2: विविध रूप रंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
2: भारत के अंग हैं,
1: भारतीय वेश एक,
2: भारतीय वेश एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
2: हम अनेक किंतु एक,
1: बोलियां हजार हैं,
2: बोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
2: टोलियां हजार हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
2: कंठ भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
2: राग भी अनेक हैं,
1: किंतु गीत बोल एक,
2: किंतु गीत बोल एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
2: हम अनेक किंतु एक,
1: एक मातृभूमि है,
2: एक मातृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
2: एक पितृभूमि है,
1: एक भारतीय हम,
2: एक भारतीय हम,
1: चल रहे मिला कदम,
2: चल रहे मिला कदम,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
2: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
2: हम अनेक किंतु एक।
1: तो बच्चों, कैसी लगी कविता?
2: मुझे बहुत अच्छी लगी।
1: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के। क्या सुना हमने?
2: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
1: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
2: भारत।
1: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
3: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
4: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है।
5: असम में मेरे दादा रहते हैं।
3: और एक और मैं बताऊँ, पंजाब।
1: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों, हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?
6: बहुत मजा आएगा।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम अनेक किंतु एक। क्या?
2: हम अनेक किंतु एक।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय आप सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा।

0: बेटा संजय अब सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा, वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी, वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा, तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी, मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई, क्यों नहीं बताया था? जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी, क्या हुआ?
0: हाँ तो संजय बेटा, उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।

0: हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। छक्के
2: साथियों, ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
3: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
2: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।
3: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
2: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
3: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था

0: सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
0: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: कैसे हो वो लोग ऊंचाई पर लोग
3: साथियों?
2: बिल्कुल ठीक है।
3: आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है। वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
3: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करेंगे।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक रहेगा संजय भाई, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
3: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।

0: शुरू करें?
1: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल रहा पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
0: आजा मुकेश, आजा।
2: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
3: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
4: कमांडो,

0: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा।
1: आगे बढ़ो, बच लो, जवाब दो,
0: राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
2: या तो हम मरे

0: या मारेंगे।
1: बिल्कुल ठीक।
0: आंख में आंख डाल के फायर करो, फायर।
2: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था, वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गई।
3: कार्बाइन खाली हो गई है।
4: अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो, ठहरो।
3: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
2: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
5: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से तीन शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में तीन गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
3: दुर्गा माता
5: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
2: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
0: भाग रहे हैं भाग। और कहां भागते हो? और रुको, ठहरो, हिम्मत है तो सामने आओ। अपने साथियों, इनमें से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो।
5: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
6: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको आपको तुरंत उपचार की जरूरत है।
7: वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
8: आपको वहाँ ले चलते हैं। वहाँ चलते हैं। मरहम पट्टी करवा लीजिए। कम से कम खून का बहना रुक जाएगा।
6: आओ भाई जी।
9: नहीं मानसी, नहीं मानसी।
6: आओ तो सही।
9: मेरी चिंता मत करो,
6: मैं यही ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
8: लेकिन जी, लेकिन
6: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हूँ।
8: अरे
6: आप तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
8: आप सुनो,
6: छुपा हुआ ना, आप कोई बचने ना पाए, जाओ चेक करो।
8: लेकिन
6: करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे।
8: लेकिन
6: जाओ
8: आप।
5: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफल मैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
6: संजय भाई, इधर आओ। क्या हाल चाल है?
9: संजय भाई तो बोल ही नहीं रहे।
2: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन

0: संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दो जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
1: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। यह आकाशवाणी अलवर का सदस्य का चैनल है। थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता। जोधपुर में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आज समापन। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन के दो दिन शेष। और कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले का भव्य शुभारंभ।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दौर युवाओं का है, उनके नए विचार और कड़ी मेहनत भारत के साथ साथ दुनिया का भविष्य भी तय करेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि ज्ञान हासिल करने के साथ उसे व्यवहार में लाना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखें, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प में युवाओं को नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने का आह्वान किया है। श्री यादव कल अलवर के राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में विशेष भूमिका निभाई है और युवाओं की भागीदारी के बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा होना असंभव है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का जीवन अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ समाज से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। अच्छी शिक्षा से विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है, वहीं खेलकूद शारीरिक विकास को बल देते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि दिन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में यातायात

0: यातायात की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। पुलिस ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली के कुछ इलाकों और रास्तों पर यातायात को दूसरे रास्तों पर परिवर्तित किया जा सकता है। प्रभावित होने वाले रास्तों में मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य शामिल है। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। जोधपुर में चल रहे बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आज समापन होगा। 26 सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाओं ने भाग लिया। कई अन्य देशों की वायुसेनाओं ने ऑब्जर्वर के रूप में सहभागिता की है। युद्धाभ्यास के दौरान विभिन्न देशों की वायुसेनाओं ने संयुक्त हवाई अभियानों का अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई आधुनिक लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास का उद्देश्य मित्र देशों की वायुसेनाओं के बीच परिचालन समन्वय बढ़ाना, संयुक्त सैन्य अभियानों की क्षमता विकसित करना और आधुनिक हवाई युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुभव साझा करना है। तरंग शक्ति के माध्यम से भारतीय वायुसेना को मित्र देशों की वायुसेनाओं के साथ प्रशिक्षण और सामरिक सहयोग मजबूत करने का अवसर मिला है। ये अभ्यास भारत के बढ़ते रक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साझेदारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन के अब 2 दिन शेष हैं। प्रत्याशी आज और कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नामांकनों की जांच 14 अक्टूबर को जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 22 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। दूसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। तीसरे चरण में 3 नवंबर और चौथे चरण में 14 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। सभी चरणों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। वहीं पंच और सरपंच पदों के लिए पहले चरण में 24 अक्टूबर, दूसरे चरण में 30 अक्टूबर, तीसरे चरण में 5 नवंबर और चौथे चरण में 16 नवंबर को मतदान होगा। इन पदों के लिए मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र में पूर्व विधायक अतर सिंह बढ़ाना का कल निधन हो गया। वे वैर के भूंडा गांव में स्थित उनके क्रैशर पर थे। उसी दौरान कल देर शाम कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घटना में पूर्व विधायक और उनके अंगरक्षक गगन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को वैर के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अतर सिंह बढ़ाना को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं अंगरक्षक गगन शर्मा को भरतपुर रेफर किया गया है। कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले का कल भव्य शुभारंभ हुआ। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ध्वज फहराकर मेले की शुरुआत की। इस दौरान रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए और आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर मेले की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि कोटा का दशहरा मेला लोक आस्था और एकता का प्रतीक है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी के समन्वित प्रयासों से इस मेले को और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। यहां विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय दिखाई देगा। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। राज्य के विभिन्न माता मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में दर्शनों के लिए राज्य के अलावा अन्य स्थानों से भी लोग पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि दर्शनार्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
1: तनोट माता मंदिर का संचालन सीमा प्रहरियों के हाथों में है। नवरात्र पर्व पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा निःशुल्क भोजनशाला चलाई जा रही है। दर्शनार्थियों के लिए पेयजल व चिकित्सा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मेले के दौरान प्रतिदिन 3 आरतियां की जा रही है। भोजनशाला में

0: प्रेयर द्वारा अपने हाथों से भक्तगणों को भोजन करवाया जा रहा है। वहीं देश के कोने कोने से आने वाले भक्तों के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा धर्मशाला का भी संचालन किया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: वहीं हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर में आस्था और भक्ति का अनूठा माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। उधर पल्लू कस्बे के ब्रह्माणी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। बारां जिले के प्रमुख माता मंदिरों कृष्णाई मंदिर, गुगोर माता मंदिर, नगरकोट माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह विशेष पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता। जोधपुर में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आज समापन। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन के दो दिन शेष। और कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले का भव्य शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़।
3: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जन सेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: श्रोताओं, आप जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला सुन रहे हैं। आज चर्चा का विषय है आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर और आज हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक प्रोग्राम में शामिल हैं, शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। शुभमोय, अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
2: बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए।
3: धन्यवाद सोनू जी।
1: अनिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो 12 वर्ष गए हैं, इसमें जिस तरह का आर्थिक सुधार हुआ है, खासकर करों की अगर हम बात करें, जो अप्रत्यक्ष करों में जिस तरह के कहें कि रेवोल्यूशनरी एक बदलाव आया है, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में आया, उसे आप कितना मील का पत्थर मानते हैं?
3: हमें अगर इसको समझना है, जो सुधार आर्थिक व्यवस्था में किया है सरकार ने, तो आपको 1991 जाना पड़ेगा, जबकि जो हमने रिफॉर्म्स, देश ने रिफॉर्म्स अंडरटेक किए उस वक्त, तो वो था, उसका मुद्दा था कि भारत सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बड़ा इसमें जो एग्जांपल था वो था डी लाइसेंसिंग, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एग्जिट करना था काफी सेक्टर से। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, जो पिछले 12 साल में जो किए हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें है कि ये नया जनरेशन रिफॉर्म्स जो है, इन्होंने सरकार का फंक्शनिंग ही बदल दिया। तो पहला था कि सरकार क्या करेगा, अब सरकार कैसे फंक्शन करेगा, वो ही है फंडामेंटल डिफरेंस। तो उसमें जो जीएसटी है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, कि ये एक टैक्स था जीएसटी, जब मतलब 2001 से इस पे चर्चा चल रहा है, उससे पहले से, लेकिन किसी सरकार ने इसको कभी इम्प्लीमेंट करने का मतलब राजनीतिक साहस नहीं दिखाया और एक राजनीतिक कंसेंसस नहीं जुटाया। इसमें अरुण जेटली जी को मतलब याद करना चाहिए, वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने एक इसको एक एंकर किया, एक लीडरशिप किया, और इस टैक्स में जो सबसे बड़ा मतलब जो एक लिसनर जो समझ सकता है बड़ी आसानी से, ये इन्होंने देश को एक आर्थिक लेवल पे यूनिफाई कर दिया, एक इकोनॉमिक एंटिटी यूनिटी बना दिया। पहले था देश में, क्योंकि अलग अलग कर के व्यवस्था थे, तो हर स्टेट का एक अलग होता था, तो 38 सॉवरेन टेरिटरी से सामानों को जाना पड़ता, तो आप सोचिए कितना फ्रिक्शन होता था, कितना इनएफिशिएंसी होता था, लॉजिस्टिक्स, मतलब आप तमाम चीजों में देखते हैं अड़चन कैसे।

0: तो इन्होंने 17 मेजर सेंट्रल और स्टेट टैक्स और 13 सेस को एक करके जीएसटी बनाया। तो ये मतलब देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को दोनों को अगर मिलाएं, और इसका अभी हमें फल साफ नजर आ रहा है। अब जीएसटी रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ रहा है सिस्टम में। तो ये जीएसटी जो है भारत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म है पोस्ट इंडिपेंडेंस।
1: जी शुभमय, आपके पास आते हैं और इस पर ही आपकी भी हम प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही कहें कि क्रांतिकारी रिफॉर्म है। जैसा अनिल ने बताया कि नेशनल मार्केट बनी है, फॉर्मलाइज हुई है इकोनॉमी, आप बताएं कि जीएसटी क्यों आपके अनुसार एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है इतने सालों से लंबित क्यों था, और अब जो जिस तरह से इसको उठाया गया और शुरू में जिस तरह की कुछ कहें कि एक भावना थी कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कैसे आप देखते हैं इसकी जर्नी?
2: मैं काफी गौर से सुन रहा था अनिल जी के काफी भावनात्मक जो विचार थे
1: जी।
2: और मैं उससे कहीं बहुत बहुत तरीके से मैं उससे सहमत हूँ। जीएसटी अनिल जी जो बता रहे थे उसी कड़ी में अगर चलते हुए हम देखें तो भारत में 2014 से चलते हुए अभी तक की जो श्रृंखला है उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो सुधार का कार्यक्रम हुआ है वो है कैपिटल, लेबर, लैंड और कैपिटल, इन तीनों में अगर हम बांटे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इनमें कैपिटल में सबसे ज्यादा सुधार की मात्रा आई है। और ये इसीलिए इसमें अगर हम देखें जीएसटी को, तो जीएसटी अकेला ही नहीं है, जीएसटी के साथ अगर आप एक और बहुत जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण बदलाव जो लाया गया वो है बैंकरप्सी बिल, इंडियन इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ बैंकरप्सी इन इंडिया। ये बहुत बड़ा एक बदलाव था, एक तरफ कैपिटल तैयार करना, दूसरी तरफ कैपिटल जो बदलाव आएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, ये दोनों मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण पदक्षेप थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि सरकार लोगों के पास जो सीमित कैपिटल अवेलेबल है, संसाधन अवेलेबल है, वो मुआयना कर रहे थे, वो चीज पहले संभव नहीं था। अभी क्या हुआ कि जीएसटी और IBBI दोनों एक साथ में, एक तरफ तो लोगों के लिए सुविधा हो गया कि भाई हम अगर हमारी कोई बिजनेस चलते हुए बिजनेस में कोई अड़चने आ गई, कोई बिजनेस को बंद करने की जरूरत पड़ी, तो वो एक सिर्फ रोजमर्रा का इम्पेयरमेंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखा जाएगा और उससे मैं जल्दी से उससे निपट के मैं आगे का प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। और आप देखें स्टार्टअप्स की हमारी इतनी जो तादाद बनी है वो इसी भरोसे पे बनी है कि स्टार्टअप में अगर चलते हुए किसी जगह पे स्टार्टअप नहीं चला, और होता ही है
1: जी,
2: तो वो अचानक लिक्विडेशन वगैरह में उनको कोई अड़चन ही नहीं आता है। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो उसी श्रृंखला में कि टैक्स स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही सरल सुविधाजनक सिस्टम बन गया है। भारत में अगर हम बहुत सारी जो इसके बाद के जो बदलाव आए हैं वो बदलाव इन दोनों से जुड़े हुए हैं कि इन दोनों को एक बेस बनाकर फिर आगे लोगों को भरोसा आया है, रुचि आया है कि भाई वो कैपिटल लेकर कोई नया बिजनेस, कोई नए संभावनाओं के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं
1: जी।
2: जहां तक आपके सवाल थे कि ये क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना का सबसे बड़ा चीज था मंशा, और उसका वजह यह है कि हम जीएसटी किस पे ला रहे थे। जीएसटी एक कड़ी में है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कड़ी के अंतर्गत होके आया और तभी जाके जीएसटी बना। 2017 में ये जीएसटी का प्रक्रिया शुरू हुआ, और जैसे आप देखें कि सालों साल चलते हुए वो जीएसटी एक एक करके उसमें जो अड़चने थे वो सिंप्लीफाई किए गए, तो उसमें भी जैसे हर साल में जो मीटिंग होता है, और अगर वो जो मीटिंग शुरुआत में हुए थे कई सारे मीटिंग्स करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें थे, चुनिंदा सवाल थे जिनको हल करना सारे राज्यों को मिलके और केंद्र के साथ मिलके, तो उसका निपटाना जरूरी था। तो इसलिए ये किसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन मान सकते हैं
3: जी। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।
1: हम देख रहे हैं हर महीने जब जीएसटी कलेक्शन की फिगर्स आती हैं तो बहुत रोबस्ट आती हैं, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। सो आपको लगता है कि अब जैसा आप कह रहे हैं कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है सरकार का, तो लोग टैक्स इवेजन से भी अब बच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें टैक्सेस पे करने में वो अपने आप को एक तरह से कह रहे हैं कोऑपरेशन का एक भावना से टैक्सेस टैक्स सिस्टम में शामिल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल सोनू, आपने सही मुद्दा पकड़ा है। मैं आपको भारत के आर्थिक इतिहास में बहुत साल पहले ले जाता हूँ, 1960

0: टैक्स जो होता था 90% के ऊपर होता था, आई थिंक 97% होता था। तो आप खुद ही सोचिए, जो इंसेंटिव था टैक्स इवेजन था, टैक्स अवॉइडेंस नहीं था, उसमें दो, ये दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। इवेजन में मतलब आप टैक्स पे करना नहीं चाहते, आप छुपा के आप इनकम छुपाते हो। अब जीएसटी जब आया ना, तो आपको जब टैक्स क्रेडिट मिला, अब जीएसटी का एक्चुअली समझना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बेसिक पॉइंट क्या है। ये जीएसटी पहले जो होते थे इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज वगैरह, वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे था, अब जो है पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे टैक्स लगता है। तो मतलब उसके साथ में जो भी टैक्स पे करता रहेगा रास्ते में, उनको क्रेडिट मिलेगा
1: जी।
0: तो वो क्रेडिट आपके खर्चे से कम होगा, तो आपका उतना मार्जिन रहेगा, राइट। जो पहले होता था वो टैक्स बढ़ते जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, जो कंज्यूमर लेवल पे फाइनली आता था बहुत ही इम्पैक्ट ज्यादा होता था। तो एक तो टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट कम हुआ, दूसरा क्योंकि आपने टैक्स क्रेडिट देना शुरू किया, तो कंपनीज को इंसेंटिव रहा कि जो इवन छोटे मध्यम वर्ग MSME, आपने जो आंकड़ा दिखाया ना 60 लाख से 1,70,000 करोड़, तो ये इसमें ज्यादातर MSME है। तो इनका भारत में कुछ आई थिंक 65,000 कुछ MSME है, मेरे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो इनकी जो रजिस्ट्री हुई है ना, इनके कारण पड़ा है, तो इनकी इंसेंटिव रही। पहले ये अवॉइड करते थे सिस्टम में आने से, कैश का जो ट्रांजेक्शन करते थे, तो आपको याद है नोटबंदी में जो तो हुआ था 2016 में, तो उसका मुद्दा यही था कि इसके कारण ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो इसके जो फायदे है ना, आपने ट्रांसपेरेंट रेजीम बनाया, फिर आपने रेट सेट कर दिया, जो रेगुलेटरी ओवररीच है, पहले एक्साइज इंस्पेक्टर आपके फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंच जाते थे, आज उनको कोई कारण बताना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा अगर वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट, जो एक जो आपने बोला कंप्लायंस, वो एक वॉलंटरी कंप्लायंस रहा है, मतलब उद्योगों में एक इंसेंटिव है कि हम टैक्स कंप्लायंट रहे, हमें कम झमेले हैं, सारा ऑर्गेनाइज्ड है। और इसका एक सबटेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये जो रिसीट होते हैं ना, ये पेमेंट रिसीट्स वगैरह जो कैश रिसीवेबल्स होते हैं कंपनी के बुक्स पे, आजकल जो फिनटेक्स आ रहे हैं, जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो RBI ने इसको और लिबरलाइज किया है क्रेडिट पॉलिसी में, इस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में आपके जो ये रिसीवेबल्स हैं, इसके बल पर आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको कोलैटरल मतलब घर फैक्ट्री गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी लोन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबटेक्स है। तो जीएसटी जब हम देखते हैं ना, एक फाइनल पॉइंट ही नहीं देखना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, इसके जो फायदे हैं अनेकों फायदे हैं।
1: शुभम भाई, आपके पास आते हैं, जो एक कर डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो एक ऐसी चीज है जिस पर हर नागरिक की नजर होती है जब बजट भी आता है। तो इनकम टैक्स रिफॉर्म्स जो हुई हैं पिछले 12 वर्षों में और हालिया जो रिफॉर्म्स हुई हैं, इनको आप कैसे देखते हैं, जो फेसलेस असेसमेंट है या जिस तरह से इस नई जो कर प्रणाली आई है जो ऑप्शनल थी और जिसमें आपका रेट लोअर है लेकिन एग्जेम्पशंस नहीं है, तो ये जो पूरी जो एक जो बदलाव है उसके क्या क्या पहलू आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से?
2: देखिए, इनकम टैक्स आदतन एक टैक्स ऑन लेबर है कि लोग जो परिश्रम करते हैं उसके ऊपर टैक्स है। तो निश्चित ही अगर ऐसा टैक्स अगर हो, तो इस टैक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोगों को परिश्रम का जो एफर्ट का जो रिवॉर्ड है वो लगे कि सरकार के पास ही जा रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो पिछले साल जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बदलाव लाए टैक्स रेट्स में, 12 लाख तक के इनकम को उन्होंने इनकम टैक्स से रियायत दे दी, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये इनकम टैक्स में जनरली बदलाव बहुत जल्दी नहीं किया जाता है, 5 साल 6 4 साल वगैरह के अंतराल में किया जाता है। और लेकिन हर बारी वित्त मंत्रियां थोड़े थोड़े करके इस टैक्स में कुछ कुछ, मतलब जैसे कहते हैं लोगों के लिए लुहाने बनाते थे, इन्होंने एक झटके में इसको उठा के 8 लाख से उठा के 12 लाख कर दिए। अपने आप में ये बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया कि भाई इतना तक के इनकम, 12 लाख भारत जैसे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पर कैपिटल इनकम के हिसाब से अगर देखें तो ज्यादातर क्या ओवरवेलमिंग परसेंटेज ऑफ लोग जो इनकम कर रहे हैं सैलरी से मिल रहा है वो 12 लाख के सीमा रेखा के अंदर आ जाते हैं, और बाकी डिडक्शंस वगैरह लेकर और भी उसके ऊपर थोड़ा सा 12,75,000 का पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही मूलभूत बदलाव था कि कॉन्फिडेंस इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर
1: जी।
2: दूसरी बात जिसके आपने अपने जो प्रश्न उठाया वो था फेसलेस असेसमेंट। ये फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई इनकम टैक्स आप दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है, और वो ही बहुत बड़ा एक बदलाव था कि धीरे धीरे चलते हुए अभी इनकम टैक्स को किस

0: जगह पे जाके टैक्स देने का संभावना है ही नहीं, किसी सरकारी कर्मचारी से आपकी मुलाकात होगी ही नहीं, क्योंकि टैक्स आप जो भरेंगे और टैक्स के जो फॉर्म्स आएंगे वो प्री सेट टैक्स फॉर्म्स आ जाएंगे। यानी कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मेरा टैक्स क्या है, कैलकुलेशंस अपने आप में उसी में ही प्रीफिल फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने का भी जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर देखने की जरूरत नहीं है, उन सारे जगह से नंबर्स को समेट कर प्रीफिल टैक्स फॉर्म आ जाता है और उसमें कहते हैं कि इतना टैक्स आपका हुआ, अगर आपको सही लगता है तो यस, अगर नहीं हुआ तो फिर आप उसमें बदलाव कीजिए। तो ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर क्या, अगेन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 90% ज्यादा लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने की जरूरत नहीं है, टैक्स फॉर्म पहले से भर के आ रहा है और उनके सैलरी के साथ मैच्ड है, बस अब इसको यस कर दो और आगे चलते दो। तीसरा चीज जो किया गया वो है फेसलेस असेसमेंट, यानी कि बाकी जो लोग जिनको टैक्स में कुछ बदलाव की उन्हें लग रहा है, ये जो टैक्स पे करने के लिए मुझे कहा जा रहा है पेमेंट करने के लिए, उसमें मेरी कुछ आपत्ति है, तो उसमें भी सबसे बड़ा जो चेंज कर दिया गया है कि ये नहीं कि आप बॉम्बे में बैठे हैं तो आपके बॉम्बे के ही इनकम टैक्स ऑफिसर आपको पकड़ेंगे या आपसे बात करेंगे, वो चला गया है कहीं और उनसे आपकी फिर से जो वार्तालाप होगी वो ट्रेन या प्लेन से आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो दूर में कहीं और पे बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं और उनसे भी आपकी जो डिस्कशन होगी वो पूरी ऑनलाइन। यानी कि जो पूरा टैक्सेशन प्रोसेस है डायरेक्ट टैक्स का वो इतना इम्पर्सनल कर दिया गया कि लोगों को इस बारे में सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है, और इसीलिए आप जब देख रहे हैं, आप जो नंबर का जिक्र किए कि इतना ज्यादा नंबर्स पे लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स फिल फाइलर्स का नंबर आ गया है, वो इसीलिए कि ये प्रोसेस इतना ही ऑटोमेटिक बन गया है कि इस प्रोसेस में ज्यादातर लोग शायद याद भी नहीं रखते कि हमने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। और इससे फायदा क्या हुआ है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नागरिक के लिए जिंदगी आसान हो गया है, दूसरा सरकार के लिए भी ट्रैकिंग की इनकम टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स में जो रिटर्न आएगा वो कितना किस परसेंटेज से बढ़ेगा, तो अपने बजटिंग के में ये एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा हो जाता है कि उनको पता है कि इतना सारा जितने सारे टैक्स में देने वाले लोग थे, इनके खेमे में आने वाले थे, उन सबको उसमें डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया गया है। तीसरा चीज जो बहुत बड़ा चीज है वो ये है कि टैक्स रिटर्न होने के वजह से फॉर्मलाइजेशन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। छोटे छोटे इनकम सैलरी वाले जो कंपनियां, जो एसएमई वाले एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए भी इनकम टैक्स देना चूंकि बहुत ही इजी है, इसीलिए लोगों को प्रवृत्ति हो गया कि अभी इनकम टैक्स और जीएसटी इन सारी चीजों में कोई आपत्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे सामने आ जाते हैं
1: जी।
0: अगर हम साथ में क्यूआर कोड को, अगर उसके साथ में, अगर हम तीसरा चीज तीसरा पिलर को अगर उसके साथ में लाए
1: जी,
0: यूपीआई का जो सिस्टम है, तो ये तीनों मिलाकर जो फाइनेंशियल सिस्टम एक इतना बड़ा, एक 1.5 बिलियन लोगों की जो एक इतनी बड़ी तादाद है, इन सबके लिए एक जैसे कहते हैं फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बन गया है जिसका संभव क्या, इनफैक्ट मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ दुनिया में इसका कोई तुलना ही नहीं है कि इतने बड़े लोगों को इतने कम समय में इतने बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क के अंदर शामिल करना, उनके लिए एक आइडेंटिटी देना और साथ में उनके लिए ये भरोसा देना कि ये चीज आपके लिए काम का है।
1: अनिल जी, अगर आपके पास आए, आपको लगता है एक और भी एस्पेक्ट है कि भयमुक्त हो गया है, अब जो करों का जो एक डर होता था वो खत्म हो गया है और ट्रांसपेरेंसी आ गई है पूरे सिस्टम में?
2: काफी हद तक सोनू आ गया है, लेकिन जो एक माइंडसेट है जो हमारे रेगुलेटर्स में है वो उसको बदलना बहुत आवश्यक है, वो टाइम लगेगा। अभी वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एरा का अभी भी ट्रॉमा इनके दिमाग में है, तो रेगुलेटरी ओवररीच जो है वो हमें जीएसटी में भी दिखते हैं, मतलब एनेक्डोटली जो दिखता है, इनकम टैक्स में भी दिखता है, तो इसको और भी ट्रांसपेरेंट करना होगा। लेकिन वित्त मंत्री इसके, शी इज अवेयर ऑफ इट, उन्होंने हाल में इनफैक्ट कुछ चेंजेस लाने का उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, लेकिन पिछले बजट में नहीं लेके आ पाई वो, तो मुझे लगता है अगले बजट में वो ट्रांसपेरेंसी के लिए और चेंजेस लाएंगी, तो डेफिनेटली वो बदलाव तो आया ही है।
1: आइए सुनते हैं जीएसटी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट।
3: जीएसटी लागू होने से पहले देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था कई अलग अलग केंद्रीय और राज्य करों में बटी हुई थी। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स और मनोरंजन कर जैसे कई कर अलग अलग स्तरों पर लगाए जाते थे। राज्यों के बीच टैक्स की दरें और नियम भी अलग थे। इसका असर कारोबार की लागत, सामान की कीमत और देश भर में व्यापार की गति

0: पर पड़ता था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी टैक्स पर टैक्स, यानी एक चरण पर चुकाए गए टैक्स का बोझ अगले चरण की कीमत में शामिल हो जाना। जीएसटी पर काम की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। वर्ष 2006 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक सहमति बनने में कुछ समय लगा। वर्ष 2016 में संविधान के 101वें संशोधन के बाद जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। इसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच दरों, नियमों और राजस्व से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श भी हुआ। आखिरकार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हुआ। इस वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार माना गया। जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के 17 अलग अलग करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था में शामिल किया। जीएसटी की खासियत यह रही कि इसमें टैक्स का भुगतान केवल उत्पादन या बिक्री के अलग अलग चरणों पर नहीं, बल्कि वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर आधारित किया गया। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था ने कारोबार की अलग अलग कड़ियों में टैक्स के दोहराव को कम करने में मदद की। शुरुआत में नई डिजिटल व्यवस्था को अपनाना कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन समय के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल और ई इनवॉइस जैसी व्यवस्थाओं ने टैक्स अनुपालन को अधिक डिजिटल और व्यवस्थित बनाया। इसी बदलाव का असर टैक्स बेस पर भी दिखाई दिया। वर्ष 2017 में जीएसटी के करीब 66.5 लाख करदाता थे। मई 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई। इसी अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 2017-18 के करीब 7.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी जीएसटी ने केवल टैक्स जमा करने का तरीका नहीं बदला, इसने देश के कारोबार को एक साझा बाजार से जोड़ने, अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक बनाने और टैक्स अनुपालन को डिजिटल करने की दिशा में भी बड़ा बदलाव किया। आज जीएसटी की व्यवस्था लगातार विकसित हो रही है। दरों में बदलाव से लेकर प्रक्रियाओं के सरलीकरण तक इसका उद्देश्य अब केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि कम जटिलता, ज्यादा पारदर्शिता और आसान अनुपालन वाली व्यवस्था तैयार करना है।
1: तो जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि पॉलिसी जो एनवायरनमेंट होता है इट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे जैसे सिचुएशंस इवॉल्व होती हैं तो पॉलिसी को भी इवॉल्व होना होता है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि जीएसटी की जो लेटेस्ट मीटिंग, उसमें प्रोसेस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्लैब्स तो कम हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रोसेस रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उस पर अभी भी कार्य हो रहा है। एक और जो एरिया है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, अगर आपके पास आए शुभ मोए, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिफॉर्म्स हैं, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें जो रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि जो बिजनेसेस हैं उनमें एक सुगमता आए व्यापार में और उस साथ ही साथ सेफगार्ड भी हो, इसको आप कैसे देखते हैं? कई चरणों में ये सरकार ने इन 12 वर्षों में किया है, सो ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ऐसे समय पे जब बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जरूरी हो गया है?
2: फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो बदलाव आया है उसके साथ एक और बदलाव साथ में आया है। इनफैक्ट मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा
1: जी।
2: एक आया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये एक साथ में एक मूलभूत चेंज, और इसके साथ में FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये तीनों का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि तीनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं
1: जी। जी,
2: सरकारी मूलतंत्र का ये सिक्वेंस रहा था कि हम इस तरीके से बदलाव लाएंगे कि मोटा मोटी जो भी शख्स नहीं, मैं कहूंगा कंपनी, या फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो समान तरल होनी चाहिए। यानी कि के पहले, अब देखिए जिसका जिक्र अनिल जी पहले कर रहे थे कि एक पुरानी माइंडसेट की, ये पुरानी माइंडसेट फॉरेन एक्सचेंज के मामले में बहुत ज्यादा था और हमने बहुत सारे हॉरर स्टोरी सुने थे कि फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कंपनियों में बहुत सारे झमेले, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रेड्स, इधर इनफैक्ट स्टेट लेवल में भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के बहुत सारे अनुशासन वगैरह वगैरह, इन सब मिलाकर एक अस्त व्यस्त हालत था फॉरेन एक्सचेंज को लेकर। इसमें प्रगति लाने में सरकार ने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बदलाव जो लाए हैं वो ये है कि सारे कंपनियों को उन्होंने एनकरेज किए हैं कि आप या तो कंपनी यानी कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज के तहत आप रजिस्ट्रेशन हो जाइए, और अगर ना भी हो सके तब भी अगर आप सेक्शन 8 कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के तहत ही आता है, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी है कि आपके प्रॉफिट लॉस कुछ का दायरा नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक कंपनी, तो आपके लिए वही मोटा मोटी रूल्स लागू होंगे जो बड़े कंपनियों के लिए
1: जी।
2: तो इससे फायदा क्या हुआ है कि सबके लिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट

0: सिस्टम क्लियर हो गया है। और ये चीज FCRA में भी काफी हद तक पुश किया गया है कि जो कंट्रीब्यूशन आएंगे फॉरेन एक्सचेंज के, जो फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए कामकाज होंगे, वो शुड बी अबव बोर्ड, यानी कि वो दिखना चाहिए कि किस लिए किस तरीके से आ रहे हैं। और इसकी जरूरत क्यों है, अगर हम दुनिया की किसी भी बड़े देश को अगर हम देखें इस वक्त, तो एक बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है। और वो उथल पुथल क्यों चल रहा है, क्योंकि करेंसी, दूसरे देशों से आने वाले पैसे, उसके चलते राजनीतिक इम्पैक्ट, दबा दबोच वगैरह, बहुत सारी चीजों की प्रक्रिया है। उन सभी चीजों के चलते हुए सारे बड़े बड़े देशों में इस पर निगरानी रखने की नया नया सिस्टम्स जो इनकोऑर्डिनेटेड है उनको लाया गया। और उसको लाने के लिए क्या किया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अंतर्जातिक एक सिस्टम है। इसमें भारत 2014 में मेंबर बन गया है, और भारत काफी जिसे कहते हैं इलस्ट्रियस मेंबर बन गया है इसका। ये OECD का पहले होता था, सिर्फ ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक क्लब था, जिसमें भारत पहला नॉन OECD मेंबर है जो इस FATF के मेंबर बने, फुल मेंबर बन गए। और फुल मेंबर होने की वजह से क्या हुआ कि भारत की जो एक उन देशों के बीच में विश्वास आया कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत है, ये एक बहुत बड़ी चीज है
1: जी।
0: दूसरा, भारत का जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे देशों के लिए, खासकर ग्लोबल साउथ के बाकी सारे देशों के लिए एक तुलनात्मक चीज बन गया है कि इस तरीके से किया जा सकता है। ये चीजें सब मिलाकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो एक सुधार किया गया है वो सब मिलाकर बन गया है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब नेचुरली कि ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेंगे तो उसमें होता ही है कि कुछ किसी न किसी को इसमें मुश्किल पहुंचती है, वो लाजमी है। लेकिन ये जो पूरे जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर कोई दो राय। और इसलिए आप देखेंगे इसके साथ ही एक और चीज किया गया था जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में बहुत काम में आया, वो है शेल कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में होते थे जो सिर्फ नाम से होते थे, और एक एक एड्रेस में 200-300 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन होती थी। इन सारी कंपनीज का बेसिकली काम था फॉरेन एक्सचेंज को लाना और लाकर कोई ना कोई गलत काम में इसको इस्तेमाल करना। आपको याद होगा ट्रेवल वगैरह में बहुत सारे टाइम में हमने जब इस पर जब बारीकी से जांच हुआ है तो दिखा गया है कोई ना कोई शेल कंपनी के थ्रू से ही ये सारे पैसे आए। ये सारी चीज जड़ से उखाड़ने के लिए जो प्रक्रिया किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से, जिससे बहुत बड़ा फायदा आया है कि अभी किसी भी सरकारी तंत्र के सिस्टम्स को इन बारे में, इस बारे में पता चलता है, पहुंच रहती है, किस तरीके से उसको निपटा जाए उस पर वो खबर रख सकते हैं जी।
1: अनिल जी, एक और जो पहलू है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि विश्वास बना है बिजनेसेस को शामिल करने के लिए, जन विश्वास जो अधिनियम आया है 2023 में, जिसमें डीक्रिमिनलाइज किए गए हैं 183 प्रोविजंस 42 सेंट्रल एक्ट्स में, और उनको क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल पेनल्टीज में बदला गया है जो माइनर और टेक्निकल लैप्सेस है, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है? और जो पुराने लॉज है उनमें लगभग 1500 जो सेंट्रल लॉज थे जो आउटडेटेड थे उनको हटाया गया है, ये भी क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है?
2: बिल्कुल सोनू जी, इनफैक्ट इसको इतनी देर हो गई यही मैं हैरान हूँ। जो ये जो पुराने जो लॉ होते थे, अजीब अजीब किस्म के कानून होते थे जो अंग्रेज बना के गए, तो वो आज तक चलते आ रहे थे, तो उनको जैसे एक एक करके जो इसको हटाने का जो प्लान था, आप जान के हैरान होंगे, ये 1993 का है। जो स्वर्गीय विवेक देबरॉय थे ये उस टाइम IIFT में थे, इन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और उसमें इन्होंने सारे जो लॉस थे ये जो हटाने हैं, तो 1993-94 में इन्होंने छापा था ये कमिटी का रिपोर्ट, और उसको मतलब ये सरकार जो है मोदी जी की सरकार जब आई, इन्होंने उसको उठाया और फिर उसको जो प्रोसेस रिफॉर्म लेवल पे पुश किया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो जो हमने डिस्कस किया कि जो माइंडसेट है
1: जी,
2: जो एक मतलब बिजनेसमैन की ओर जो है एक अप्रोच है, वो उसमें तो बहुत ही बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ईज ऑफ डूइंग जो ये लॉस है अब इनको भी बदलना है। अब जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि रेगुलेटरी ओवररीच, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो ये ना भारत सरकार ना

0: स्टेट लेवल सरकार इसका कोई मसले का हल तुरंत ढूंढ पा रहे हैं। इस पे कोशिश तो जरूर जारी है, लेकिन इस पे और भी मेहनत करना है, क्योंकि हमारे जो ये उद्योगपति हैं, खास करके मध्यम वर्ग में, इनको जो रेगुलेटरी जो हैरेसमेंट होता है, इसके कारण फ्रिक्शन बढ़ता है। जब फ्रिक्शन बढ़ता है, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, मतलब तो ग्रोथ नहीं होता है। तो इसको हटाना एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी, नेशनल प्रायोरिटी बनाना चाहिए।
1: जी, तो शुभमय, जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि कांस्टेंट सिंप्लीफिकेशन प्रोसेसेस की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के थ्रू, जिसका जिसके बारे में सरकार भी पूरी तरह प्रयासरत है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की हम बात सुनते हैं, और डिजिटलाइजेशन से अलग अलग जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, जीएसटी की तो हमने बात करी ही, आपको परमिट्स मिलने हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्रेडिट जो मिलता है ये टेक्नोलॉजी की वजह से, जो उसमें ईज आई है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको लगते हैं ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके उसको बेहतर करने के लिए?
2: बिल्कुल सोनू जी, और इसमें अगर आप देखें कि अभी जो डिबेट चल रहा है एमडीआई चार्जेस को लेकर, एमडीआर चार्जेस को लेकर यूपीआई में, अगर आप इसको देखें तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। वो क्यों एक समय था जब लोग कैश से ही कोई ट्रांजैक्शन करना नॉर्मल मानते थे, उसी में ही चलते थे।
1: जी।
2: आज भारत की इतनी बड़ी जनता का तादाद यूपीआई के बनाए हुए क्यूआर कोड के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनको अभी लगता है कि ये चीज हट जाएगा तो हमारे लिए हम ऐसे वापस पहुंच जाएंगे कहीं, और वो पहुंचना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, माइंडसेट का बदलाव है। अगर हम इसको देखें तो ये अविश्वसनीय है कि किस तरीके से लोग एक, मतलब लोग का कहना है कि ये एक रिफॉर्म है, और इस रिफॉर्म को हम इसको हम अपना चुके हैं, इस पर हम बिल्कुल इसमें हम लीन हो गए हैं और हम इस पे ही टिकना चाहते हैं। एमडीआर चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, वो उसके ऊपर तर्क हो सकता है, लेकिन एक इतना बड़ा चेंज कि जो गरीब से, और इस चेंज इसलिए मूलभूत है कि क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी कहता है कि नहीं, हम सबसे बड़ा ये जरा देखिएगा कि कहीं हमको इससे हटना पड़े, इससे हम हटना जाए। तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप कह रहे हैं जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, वो इसका एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा मिसाल है। और इसमें सिर्फ क्यूआर कोड नहीं, अगर आप इसके नीचे देखें तो इसमें इंक्लूडेड है बैंक अकाउंट, यानी कि देश के सारे जनता एडल्ट जो है सबके पास बैंक अकाउंट है। अगर हम इसके नीचे जाए तो देखेंगे कि इसके नीचे सबके आधार कार्ड जो श्रृंखला है वो है। तो कुल मिलाकर ये एक फाइनेंशियल सिस्टम को बदल देने का इतना बड़ा एक, जिसे कहते हैं, एक ठिकाना है, एक सिस्टम है, जिसको जिसका फिर से मैं वही कहूंगा कि इसका फ्रेंकली कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में।
1: जी।
2: और ये चीज साथ में अगर आप देखें बाकी सारे चीजों में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, बाकी क्षेत्र में भी इसी का ही जोर है, इसी का ही आवाज है कि भाई हमें भी इसी तरह का सुविधा चाहिए।
1: जी।
2: कि अगर इनकम टैक्स आराम से भर सकते हैं, अगर हम जीएसटी में कोई झमेला नहीं होता है, अगर पेमेंट प्रक्रिया अगर सुचारू ढंग से चलता है, जिस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपको याद होगा कि जैसे एक टाइम था कि स्मॉल कंपनीज को जब अपना कैश लेकर जाते थे बैंकों में, तो आए दिन खबर आती थी कि फलाने के जगह पे डाका डल लग गया है, यहाँ पे कुछ वो पैसे लूटपाट हो गया है। अब वो सारे खबरें जिसे कहते हैं इतिहास बन चुका
1: जी,
2: है
1: जी, जी।
2: क्योंकि वो पैसे लेकर जाते नहीं है,
1: बिल्कुल
2: वो जरूरत नहीं होती है। तो ये चीजें जो गांव, दूर दूर के गांव तक में भी ये इसका प्रक्रिया इतना बड़ा बन चुका है कि वहां पर तो खासकर इस चीज को लेकर ही लोग चलते हैं कि भाई पैसे लेकर कौन चलेगा।
1: जी जी।
2: तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं स्तंभ है। अगर हम इसको अगर आगे देखें कि ये किस तरीके से बिजनेस को बदल रहा है, तो बिजनेस चलाने में जो परमिट्स हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो सारे फिर इसी से ही जुड़े हुए बन गए हैं कि वो बन किसी बिजनेस को किसी चीज परमिट मिलने में काफी आसानी हो गई है। और हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि अभी भी बहुत सारी जगह पे और वो शायद हमारी एक गलत हमारी जो तरीका है कि हम फूड क्वालिटी कैसे रख रहे हैं, उसमें

0: क्या चीज किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं उस पर जरूर निगरानी होनी चाहिए, उस पर
1: जी
0: लोगों को भरोसा आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि एक कंपनी जिनके नाम हमारे मुंह से एकदम जस बच्चा बच्चा भी याद बोल देता है, कि इस सारे कंपनियों का हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे अगर इस तरह का पेमेंट सिस्टम नहीं आ सकता। और इससे आज जुड़े हुए जो
1: जी
0: गिग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए इतने मिलियंस की जो नौकरी है, ये पूरा ये सोच में भी नहीं आ सकता था अगर ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का बंदोबस्त अगर नहीं तैयार होता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभमोय अनिल, आप शामिल हुए इस कार्यक्रम में जनसेवा से देश सेवा, और आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद सोनू जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के

0: हैं, उससे जुड़े हुए इतने मिलियंस की जो नौकरी है, ये पूरा ये सोच में भी नहीं आ सकता था अगर ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का बंदोबस्त अगर नहीं तैयार होता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभमोय अनिल, आप शामिल हुए इस कार्यक्रम में जन सेवा से देश सेवा, और आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद सोनू जी।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का यह सदस्य का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

पत्रिकाओं में निदा फाजली की रचनाएं धीरे धीरे धीरे छपने लगी और उनकी सरल शैली ने पाठकों के बीच निदा फाजली को लोकप्रिय कर दिया। अब निदा फाजली ने अपनी कलम के दायरे को बंबई में और दूर तक फैलाने की कोशिश की और नतीजा बहुत अच्छा निकला। कुछ ही दिनों में निदा फाजली को कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्ताना में गाने लिखने का मौका मिल गया। लेकिन फिल्म रजिया सुल्ताना के नायक धर्मेंद्र, जिन्होंने एक हबशी गुलाम की भूमिका अदा की थी, उन पर गाए दोनों गीत खूब जमे और लोकप्रिय भी हुए। विविध भारती के हमारे जो पुराने श्रोता हैं, शायद वो जानते ही होंगे कि कब्बन मिर्जा विविध भारती स्टाफ में ही थे। निदा फाजली के अपने सहज स्वभाव और सरल लेखन से सारे लोग मुतासर थे, प्रभावित थे। सभी का दिल निदा फाजली ने जीत लिया। कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित भी हुए और सन 2013 में भारत सरकार ने भी निदा फाजली को पद्मश्री से सम्मानित किया।

पार्टीशन के बाद देश में होने वाले दंगों से निदा फाजली के माता पिता परेशान और दुखी हो गए और तब उन दोनों ने पाकिस्तान जाकर बसने का फैसला कर लिया। लेकिन निदा फाजली को उनका यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, सो वो तब की बंबई यानी आज की मुंबई में आकर रहने लगे। अब यहां बंबई में आने का और यहां रहने का मकसद एक ये भी था कि उस समय जो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं थीं, बड़े बड़े अखबार जो निकला करते थे, उनके लिए ये मुंबई एक बड़ा गढ़ माना जाता था और फिल्म नगरी यहां की पहचान शुरू से ही थी, तो यहां की तमाम

कलम के धनी, हिंदी और उर्दू दोनों पर समान अधिकार रखने वाले शायर और गीतकार निदा फाजली 8 फरवरी 2016 को इस संसार से विदा।

0: शायर और गीतकार निदा फाजली पर केंद्रित था आज का ये कार्यक्रम शोध आलेख और स्वर अमरकांत का, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

0: हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा सारा साथ
5: होगा। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। लीजिए सुनिए ये संदेश।
6: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
7: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
8: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
9: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
10: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
11: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: ये आकाशवाणी अलवर का सदस्य का चैनल है, आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
5: एक हिस्ट्री है,
6: ये भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ से म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा शुरू होती है और मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू आती है।
5: ओ जी, ऐसा है कि आपने एक फिल्म, आपको याद होगी, शिरडी के साईं बाबा।
6: जी हाँ,
5: उसमें दो गाने जो हैं आज भी चल रहे हैं। ये दो गाने जो हैं, साईं बाबा साईं नाथ बोलो, साईं बाबा बोलो, एक एक साईं नाथ तेरे हजारों, ये दोनों गाने जगदीश खन्ना के।
6: ओ हो,
5: नाम नहीं है,
6: नाम नहीं है।

0: नाम उनका शायद जो पांडुरंग दीक्षित थे जो उनका नाम है
1: जी जी,
0: लेकिन गाने ये दोनों जगदीश खन्ना के हैं और ये दोनों गाने मेरे अरेंज किए हुए हैं।
1: अरे क्या बात है,
0: क्योंकि जगदीश आया था, मेरे दो गाने अरेंज करने आए, मनोज साहब फिल्म बना रहे हैं, दो गाने मुझे अरेंज में तो जैसे दूसरे मुझे अट रहे थे ये भी आ गया, तो मैंने इनके दो गाने अरेंज किए, दो गाने हिट हो गए, वो ऐसे हिट हुए कि आज तक चल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये फिल्म उनकी हिट हो गई मनोज साहब की।

0: उन्होंने साहब की क्रांति हिट हो गई थी बहुत बड़ी, क्रांति उनकी बहुत चली। क्रांति के बाद ही वांटेड टू स्टार्ट न्यू फिल्म।
1: जी,
0: उस न्यू फिल्म में उनका माइंड चल गया कि छोटे भाई को हीरो बनाया जाए और अपने साले को डायरेक्टर बनाया जाए। तो उन्होंने प्लान किया कि नया म्यूजिटर लेंगे। म्यूजिटर कौन? जगदीश।
1: अच्छा, जगदीश तब तक क्या कर रहे थे?
0: जगदीश उनके घर में टीचर थे बच्चों के, म्यूजिक टीचर थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो उनके साथ बैठ के वो काम करते रहते थे, जैसे ये गाने बना लिए, ऐसे और गाने बना लिए।
1: जी।
0: तो मनोज जी को पता था कि अच्छा कंपोजर है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ये दोनों गाने जगदीश के बने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जगदीश उत्तम को बुला के ले,
1: मनोज जी ने कहा।
0: हाँ। तो जगदीश को पता नहीं चला कि क्यों बुला रहे। तो मैं आया, मैंने कहा जी बाबा उत्तम मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जगदीश म्यूजिक दे रहा है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो तुम जगदीश के साथ काम करो। मैंने कहा मैं तो कर ही रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, जगदीश खन्ना उत्तम सिंह।
1: अच्छा,
0: म्यूजिक एक्टर। मैंने कहा पा पा मत बड़े भाई। मैंने कहा पा यू हैव टू गिव मी टाइम। क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे आप टाइम दीजिए सोचने का। अच्छा ले लो। तो मैं बहुत बिजी था, मेरा काम सुबह शाम काम था मेरा। तो 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। हर चौथे दिन जगदीश आ जाए और उससे बुला रहे हैं। मैंने कहा यार तुम देख रहे हो कैसे काम कर रहा हूँ मैं, सब काम चल रहा है। महीना बीत गया, और महीने में कम से कम 6-7 दफा 8 दफा ये आ गया जगदीश। तो एक दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो डैडी के पास बैठा मैं। मैंने कहा डैडी ऐसे ऐसी ऑफर आई है। क्या ऑफर है? मैंने कहा ऐसे ऐसे वो पिक्चर बना रहे हैं VIP,
1: मनोज जी का बैनर VIP,
0: राज कपूर VIP, मतलब
1: जी
0: इंडस्ट्री के टॉप बैनर।
1: जी,
0: इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो वो चाह रहे हैं कि मैं म्यूजिक एक्टर बनूं लेकिन जगदीश खन्ना के साथ बनूं। जगदीश खन्ना ट्यून बनाएगा और मैं अरेंजमेंट करूंगा। मैंने ये बात मनोज, मैंने कहा मनोज जी मैं तो अरेंजर हूँ, आप मुझे क्यों म्यूजिक एक्टर बना रहे हैं? बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी म्यूजिक एक्टर हैं, लक्ष्मी जी ट्यून बनाते हैं और प्यारेलाल जी अरेंजमेंट करते हैं। ऐसे ही तुम जगदीश के साथ, जगदीश का ट्यून बनाएगा और तुम अपना जो काम करते हो वो करो, लेकिन तुम दोनों का नाम आए। तो ये बात मैंने जाके डैडी को कही। तो डैडी बोलते हैं तुमको क्या लगता है? मैंने कहा नहीं नहीं आप बताइए। बोलते देखो म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो ये लास्ट स्टेज है, मतलब ये लास्ट सीढ़ी है जहाँ पे लोग म्यूजिक खत्म होते हैं, वहां से तुम शुरू कर रहे हो।
1: जी जी।
0: और अगर नहीं बनना तो मना कर दो, तुम काम तो कर ही रहे हो। मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है?
1: वाह।
0: बोलते मैं तो चाहता था कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो। तो मैंने कहा आपने मुझे ये बात कभी भूली नहीं। बोले कभी मौका ही नहीं आया। आप तो मुझे म्यूजिशियन बनना चाहते, तो आपने देख लिया, अरेंजर भी आपने देख लिया, तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए आपने बोला क्यों नहीं? बोलते नहीं ऐसा कभी मौका ही नहीं आया, आज मौका आया तो बोल रहा हूँ तुमको कि मैं चाहता हूँ तो कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो।
1: ये पिताजी की बात है?
0: पिताजी की बात। तो मैंने कहा हाँ बोलता हूँ। हाँ बोल दो। फिर मैं गया मनोज जी के पास 1.5 महीने के बाद।
1: जी जी।
0: 1.5 महीने के बाद जाके मैंने बोला कि मैं करता हूँ। तो पहला गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ पिंटर बाबू का, तू रख ले नाम, रख ले नाम, मुकद्दर सिकंदर होता है।
1: हाँ, हाँ
0: वक्त सिकंदर नहीं होता, ऐसा कुछ गाना है।
1: हाँ,
0: राधा जी का और महेंद्र कपूर का।
1: हाँ,
0: उसमें ऑलमोस्ट शायद 100 के ऊपर म्यूजिशियन था और 30-40 कोरस था।
1: ओहो।
0: हमने सुबह 9 बजे शुरू किया और 5 बजे तक गाना खत्म हुआ। लता जी महेंद्र जी चले गए और हम लोग कहा रात को 2 बजे वो गाना खत्म हुआ।
1: क्या बात है।
0: हम कुछ भी रख ले नाम उसका, इंसान का मुकद्दर होता है, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, हाँ वक्त

0: ये पूरी कंपोजिशन
1: थोड़ा हमारे लिए गाइए ना सर ये गाना।
2: तो हमने पेंटर बाबू शुरू की, तो पहला गाना
1: वो किया,
2: वो रिकॉर्ड किया कि वक्त सिकंदर होता है
1: जी।
2: उसके बाद कतिल सफाई जी का गाना लेके आई है मनोज साहब, और मुझे जगदीश ने गाना सुनाया
1: जी।
2: मैं और ये है गजल
1: बिल्कुल,
2: और इसको
1: गाने की शक्ल दे,
2: गीत में गाना देना। कब तलक शम्मा जली,

0: इतना मुश्किल है?
1: क्या बात है, मतलब गजल को लेके आपने वहां ले गए और फिर पूरा वो एक ब्रेक आता है, सारा
0: ब्रेक आता है,
1: फिर आता है,
0: ब्रेक आता है, फिर आता है, और फिर इसके अंतरे, और फिर इसमें, और बहुत बड़ा गाना था, चार अंतरों का गाना था।
1: जी जी,
0: मैंने कहा मनोज साहब चार शेर है, एक शेर कम करे ना, तुम
1: कुछ हटेगा,
0: लाजवाब शेर है
1: जी,
0: इनको कम नहीं कर सकते।
1: पर अदायगी भी कमाल थी,
0: कमाल थी। कपूर फिर देखिए, फिर अपना हमने पूरे चार के चार अंतरे रखे, चारों के चारों म्यूजिक देखिए कितना डिफरेंट है, कहीं क्लैप बज रही है, कहीं चुटकियां बज रही है, कहीं घुंघरू बज रहा है, कहीं सारंगी बज रही है, कहीं वायलिन बज रहे है, कहीं लता जी का आलाप है, विद म्यूजिशियन वन टेक है ये गाना।
1: क्या बात है,
0: छह साढ़े छह सात मिनट का गाना है।
1: जी जी जी,
0: और आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत म्यूजिशियन है इसमें तो।
1: हाँ,
0: खाली मेरे कहने से नहीं, आप गाना सुनो आपको लगेगा कि यस म्यूजिशियन बहुत है।
1: जी जी जी।

0: वहां से एक संगीतकार की जर्नी शुरू हुई।
1: बिल्कुल, और ये तय कैसे हुआ कि नाम जगदीश उत्तम होगा या उत्तम जगदीश होगा?
0: वो उन्होंने कर दिया अपने आप,
1: मनोज जी ने कर दिया उत्तम जगदीश,
0: उत्तम सिंह जगदीश करना, बाद में उत्तम जगदीश हो गया वो।
1: अच्छा,
0: शॉर्ट। अच्छा। बहुत हलचल मच गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये गाना बाहर गया है कब तक शम्मा जली
1: जी,
0: तब कोई बहुत बड़ी डांसर थी उस टाइम, उन्होंने बोला क्या गाना है, बड़े म्यूजिक्टर होते हैं।
1: ओहो,
0: उनको लगा कि ये शायद किसी और बड़े म्यूजिक्टर या एलपी का गाना या किसी और का गाना।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने कहा ये नए म्यूजिक्टर है, ऐसा गाना नए म्यूजिक्टर, म्यूजिक्टर नहीं थे लेकिन पीछे अरेंजर तो पुराना था ना
1: जी,
0: अरेंजर को तो सालों साल बीत गए थे अरेंजमेंट करते हुए। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बात फैलाई गई।
1: क्या?
0: हमारे लिए फैलाई गई ये बात कि कंपोजर तो बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं।
1: ओ, मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़चन पैदा करनी है।
0: महंगे बहुत है, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह शुरू होती है तो 2 बजे खत्म होती है।
1: जी जी,
0: महंगे बहुत है। मेरे को तो इन चीजों का कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ा, किसी ने महंगा बोला किसी ने कुछ बोला, हम अपना काम करते चले गए और आज भी काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मनोज जी वॉज वेरी हैप्पी विद म्यूजिक और म्यूजिक बहुत हिट हुआ था इसका।
1: इसका एक और गाना मैं याद करना चाहता हूँ, जब याद की बदली छाती,
0: जब याद की बदली छाती
1: तो आंख मेरी भर आती है।
0: तो मुझे उन्होंने गाना सुनाया जब याद की बदली छाती है, इतना का वाह वाह क्या बात है, क्योंकि उन दिनों में उनके गाने फिल्मों में एक सैड गाना होते ही था, और वो बरसात का गाना सैड गाना। तो जब जगदीश ने सुनाया मुझे गाना, मैं कहा जगदीश बहुत अच्छा तुम्हारा कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऐसी थी, जब याद की

0: देखिए इतने मुखड़ा है
1: जी,
0: बाकी अंतरे हैं, मुखड़ा इतना ही है
1: बिल्कुल।
0: और इसमें वायलिन सोलो आप सुनेंगे वो भी मेरी बजाई हुई है,
1: बहुत शानदार, एकदम गाढ़ा वायलिन,
0: गाढ़ा वायलिन। और इस गाने को इतना अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया था, तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को ये गाना सुनाए।
1: जरूर, बिल्कुल सुनते हैं।

0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है उत्तम जगदीश की जोड़ी की, वो है रविंद्र पीपट की फिल्म वारिस।
1: वारिस, यस, ये 1986 की फिल्म है।
0: जी जी,
1: 84 में ये फिल्म मुझे क्यों मिली थी, क्योंकि इन लोगों की, इस ग्रुप की, पीपट के ग्रुप की एक फिल्म आई थी चन प्रदेशी पंजाबी।
0: हाँ,
1: सुपर, पंजाब की बहुत बड़ी
0: सुपर हिट फिल्म थी,
1: जैसे नानक नाम जहाज
0: जी,
1: चन प्रदेशी, ये उस कैटेगरी की। उसका काम सारा अरेंजमेंट भी मैंने किया था, सुरेंद्र कोहली का म्यूजिक था और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था।
0: अच्छा,
1: उसमें बकायदा आपको नाम मिलेगा उत्तम सिंह
0: जी जी,
1: बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो वहां से वो ग्रुप जो है वो मेरे पहचान में आ गया और वो मुझे पसंद करने लग पड़ा
0: जी।
1: तो उन्होंने वारिस शुरू की, तो वारिस के लिए मेरे पास उन्होंने आए थे।
0: और ये पूरी पंजाबी पृष्ठभूमि की,
1: पूरी पंजाबी, हाँ,
0: स्मिता पाटिल और राज बब्बर,
1: राज बब्बर की फिल्म थी वो, उसके गाने आज भी चल रहे हैं।
0: इसमें आपने एक बड़ा कमाल किया था, एक व्यक्ति को गायक बना दिया था
1: मनमोहन सिंह
0: जी, जो कि कैमरामैन थे।
1: कैमरामैन थे, यस,
0: ये बताइए
1: कैमरामैन थे, क्या हुआ?

0: कि ये गाना जो है ना दीदी का, लता जी का गाना
1: जी,
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी, कितना ऊपर है और कितनी ईज लग रहा है।
1: जी जी जी जी,
0: क्या लोग थे,
1: क्या बात है।
0: तो ये मैं गाना सुना था, ये ऐसा था कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ कि हम लोग कुछ बैठ के काम कर रहे थे, दीदी का मैसेज आया
1: जी लता दीदी,
0: कल, हाँ कल सुबह स्टूडियो खाली है, मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, तुम चाहो तो गाना कर सकते हो। क्योंकि मैं इस गाने के लिए एक महीने से उनके पीछे पड़ा हुआ था, सामने से मैसेज आया कि गाना कर लो, तो गाना सिर्फ मुखड़ा बना था बस,
1: सिर्फ इतना, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी।
0: फिर उनको अपना बुलाया, अपना वर्मा मलिक जी को
1: जी,
0: ताकि आदमी लेके, फोन तो हुआ नहीं करते, फोन तो मोबाइल थे नहीं, बुलाया उनको, बैठे हम लोगों ने गाना बनाया, म्यूजिशियन बुक किए, सुबह दीदी आई, दीदी का पार्ट कर लिया हमने।
1: अच्छा अच्छा,
0: दीदी के पार्ट हमने इस गाने में रिकॉर्ड कर लिए।
1: अब मेल वॉइस रह गई है,
0: अब मेल वॉइस कौन गाएगा, किसको गवाए, उसको गवाए, उसको गवाए, उसको गवाए, नहीं यार ये सब आवाजें जो है सब सुनी सुनाई है, कुछ अलग होना चाहिए। तो इस बात को भी 7-8 दिन गुजर गए, गाना रिकॉर्ड हो गया,
1: फीमेल पार्ट है आपके पास,
0: फीमेल पार्ट है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब हो गया, बढ़िया, क्या लग रहा है गाना। जब वो साइलेंट हो जाए मेल की आवाज, खाली म्यूजिक चल रहा है, दिन कड़क, दीदी की आवाज आ रही, तो ऐसा लग रहा है। फिर मैंने कहा यार सबको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, मनमोहन सिंह भी आगे बैठते थे, मैंने कहा मन जी आप गाइएगा,
1: जबकि वो तो कैमरामैन थे ना,
0: कैमरामैन थे
1: और गायकी शौकिया थी,
0: गायक शौकिया थी, और उन्होंने उससे पहले एक उषा खन्ना का भी गाना गाया था, और एक किसी और म्यूजिक

0: तो मैंने कहा ब्रह्मन जी आप गाओ। बोलते मैं कैसे गाऊँ इतना मुश्किल गाना। मैं कहा गाओ तो सही, ट्राई तो करो। घर में रिहर्सल किया।
1: अच्छा।
0: हाँ रिहर्सल किया और माइक्रोफोन पर गए, अच्छी आवाज लग रही है और नई आवाज लग रही,
1: और राजबब्बर पे फिट हो रही है।
0: राजबब्बर पे फिट हो गई और मुझे लगता है शायद 3-4 घंटे में गाना रिकॉर्ड हो गया उनका।
1: क्या बात है,
0: वो आज भी हिस्ट्री है ये गाना।
1: और ये गाना बड़ा हिट है।
0: बहुत हिट है, आज भी चलता है ये गाना।
1: जी
0: सुना जाए इसको।
1: जरूर आप थोड़ा गाएंगे।
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मैं काम करता हूँ इसको, आप जो है वो बजाएगा, मैं लोग आता हूँ।
1: जी ठीक है।

0: वारिस के और भी गाने थे जो बहुत लोकप्रिय हुए थे. मुझे याद आता है कि किशोर कुमार का एक गाना था, हुस्न की वादियों में प्यार पलता, बड़े ऊंचे सुर का गाना था, बहुत अलग तरह का गाना था. फिर घटा छा गई है, बहार आ गई है, दुनिया तू याद रखना, और एक बच्चे को खिलाने वाला गाना आशा भोसले ने गाया था, आरे मुंजे तारे मुंजे. तो वारिस फिल्म के इन गानों के हिट होने का कुछ फायदा मिला?
1: खास नहीं.
0: क्यों?
1: ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चली थी,
0: डिले बहुत हो गई थी.
1: डिले भी हो गई थी और ये फिल्म आई थी उसके साथ तुझे याद करेगा
0: कयामत
1: पापा कहते हैं. हाँ, दोनों सेम डे रिलीज हुई थी.
0: जी जी,
1: वो कयामत से कयामत तक पहुंच गई थी और बारिश हमारी पीछे रह गई.
0: जी जी जी.
1: तो इससे भी कुछ संगीतकार की जोड़ी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ.
0: जी जी जी.
1: लेकिन मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं लगा हुआ था अपने काम में.
0: जी जी. अब जगदीश खन्ना का जिक्र हमारी बातचीत में इस समय बहुत सारा आया है. तो पेंटर बाबू और उसके बाद कुछ फिल्मों में उत्तम जगदीश साथ में आते हैं
1: जी.
0: और फिर जब जगदीश नहीं रहते उसके बाद आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी है और
1: दिल तो पागल से शुरू होती है.
0: जी, दिल तो पागल है से. तो टीम में काम करना और फिर स्वतंत्र रूप से काम करना, इसमें क्या फर्क रहा?
1: देखिए, टीम में काम करने से क्या है कि भार बहुत कम पड़ जाता है क्योंकि गाना वो बना रहा है तो मैं अपना म्यूजिक बना रहा हूँ जो मैं काम कर रहा था इतने सालों से.
0: जी जी.
1: तो मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जमीन प्रोड्यूस कर सकूंगा.
0: जी,
1: जमीन के ऊपर फूल लगाना वो तो मालिक का काम है लेकिन जमीन खरीदना बहुत बड़ी बात होती है.
0: जी.
1: तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं गाने इतने आराम से और ऐसे बन जाएंगे, मुझसे गाने ऐसे इजिली बन जाएंगे.
0: जी.
1: लेकिन मैं आपको सच मत बताऊं, आई एम एंजॉयिंग दैट साइड आल्सो एंड दिस साइड आल्सो.
0: जी, दोनों काम अब आपको खुद ही.
1: उत्तम जगदीश के साथ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई काम करने में.
0: जी.
1: बड़ा मजा आया काम करने का. पेंटर बाबू क्लर्क हो गया क्योंकि उसमें मैं तो साथ था ही.
0: हाँ.
1: ट्यून मैं भी बना रहा था, उसके भी आइडिया आ रहे थे, तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा था और बना भी जितना भी हुआ, चला नहीं चला वो अलग बात है. तो अभी देखिए, गाना है भूपेंद्र जी का, उस गाने में मुखड़ा नहीं है.
0: जी,
1: मुखड़ा नहीं है, अंतरा नहीं है, वो फ्री वर्स है.
0: अच्छा.
1: हाँ, वो आप सुनिएगा उसको, वो फ्री वर्स है. मतलब जैसे स्टोरी लिखते हैं ना, ऐसे मनोज जी की लिखी हुई है वो.
0: गजब.
1: तो मनोज जी ने मुझे बोला, उत्तम ये मेरी एक स्टोरी है, क्या इसमें गाना बन सकता है? तो मैं पूरी उनसे वो लिख के घर आया और घर आते ही वो शुरू हो गया.
0: अच्छा.
1: हाँ, घर आते ही मैं बाजे पे बैठा और वो शुरू हो गया. अब ये आप गाना सुनाइए लोगों को, ये गाना इस माइंड से सुनिए कि इस गाने में ना मुखड़ा है ना अंतरा है, कुछ नहीं है, फ्री वर्स है. वो फ्री वर्स को देखिए कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट के ये गाना बना है.
0: क्लर्क क्यों? तुमसे जो बात हुई.
1: तुमसे जो बात.
0: ये जरूर, ये गाना आप बोल रहे हैं तो जरूर हम अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं ये गाना.
1: जी.

सब कुछ खामोश हो

0: तुम जगदीश की जोड़ी बहुत ज्यादा काम क्यों नहीं कर पाई?
1: इसको आप ईगो कह दीजिए या इसको मेरी भावना कह दीजिए, यूनुस जी मैंने आज तक किसी से काम मांगा नहीं।
0: जी जी,
1: कभी नहीं मांगा। कि जितना भी आप मेरा काम देख रहे हैं, जितना भी मेरा म्यूजिशियन का काम देख रहे हैं, सब घर चल के आया है।
0: जी जी,
1: मैंने वायलिन सुनाई, फादर ने कहा कि इसको सुन लीजिए, इसको काम दीजिए, ये वर्ड कभी नहीं आया।
0: जी जी,
1: तो मैंने वायलिन सुनाई, उसके बाद मैंने उनके मरने तक काम किया, चाहे वो अन्ना हो,
0: जी
1: वसंत देसाई हो, या चित्रगुप्त जी हो, या कोई भी हो, मैं इनको सबको वायलिन सुनाई थी मैंने।
0: जी,
1: क्योंकि वो काम को काम दे रहे थे।
0: जी जी,
1: मेरी प्लेइंग को वो काम दे रहे थे। अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट किया, उससे उसको पता चला कि वो अरेंजमेंट

0: करता है उससे उसको पता चला, तो एक काम बढ़ता चले गया मेरा एज ए अरेंजर, काम बढ़ता चले गया
1: जी।
0: फिर काम चलते चलते चलते चलते रिजेक्शन हो गई जिसकी भी हम बात कर रहे हैं
1: जी।
0: तो काम हम ज्यादा क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हम किसी के पास गए नहीं काम मांगने। और ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये कहती है कि आप आओ तो हम काम देंगे। आज तो बहुत ज्यादा है
1: जी,
0: पहले भी थी, हम किसी के पास गए नहीं। और हमको लगा कि मनोज जी की फिल्म कर ली है तो मतलब तो टॉप एंड है ना
1: जी, जी
0: टॉप एंड से शुरू होंगे तो अपने आप
1: काम आएगा।
0: बट क्योंकि फिल्म नहीं चली, म्यूजिक बहुत चला, फिल्म पंजाब में चली
1: जी जी,
0: बट मंडी हाउस में फिल्म नहीं चली। मंडी हाउस मतलब मुंबई बॉलीवुड, जिसको आज आप बॉलीवुड बोलते हैं
1: जी जी,
0: वरना ये पहले फिल्म इंडस्ट्री थी
1: जी।
0: फिल्म इंडस्ट्री में हिट होना बहुत जरूरी होता था, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हिट हो गए तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा
1: जी।
0: तो फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म चली नहीं थी,
1: उस वजह से वो काम में कन्वर्ट नहीं हुआ।
0: और फिल्में मिली भी तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ यहाँ पे
1: जी।
0: पेंटर बाबू को जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ ना, ये वक्त सिकंदर होता है, तो हंगामे हो गए थे इंडस्ट्री में, बहुत कमाल का गाना हुआ। और मनोज कुमार का गाना करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड डे पंचम की रिकॉर्डिंग थी आरडी बर्मन की, तो मैं अपनी वायलिन लेके जा रहा था, तो सेकंड फ्लोर में स्टूडियो था, ऐसे जा रहा था तो सामने से बहुत बड़े उस टाइम के एडिटर थे, दो लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़े एडिटर थे, तो आ रहे थे सामने। अरे उत्तम, मैंने कहा हाँ, तुम वायलिन बजाने आ रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ? जहां से संगीतकार खत्म होते हैं वहां से तो तूने शुरू किया कल, और पूरी इंडस्ट्री में हंगामा हो गया, और सेकंड डे तुम वायलिन बजाने आ गए। तो मैंने कहा जी बात ऐसी है कि संगीतकार का आना जाना है, वायलिन का यहाँ रहना है।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: मैंने कहा ये वायलिन जो है ये
1: कायम रहेगी,
0: मेरे साथ कायम रहेगी, और संगीतकार तो आना जाना है, कभी आएंगे कभी जाएंगे।
1: ये जो वायलिन आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसकी भी एक दास्तान है
0: जी। इसकी दास्तान मैं बताता हूँ आपको
1: जी।
0: आज मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है
1: जी,
0: कि आप कितना भी पढ़ लिख लो लेकिन आपके पास हाथ का हुनर होना बहुत जरूरी है
1: जी। जी,
0: अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप भूखे नहीं मरोगे, और वो चीज प्रूफ हो रही है आज
1: बिल्कुल।
0: एक चाय वाला करोड़पति बन गया, एक भेल वाला अरबोपति बन गया, एक बड़ा पाव वाला बिल्डिंग बना ली, तो काम छोटा लगता है लेकिन मेहनत के पीछे फल है
1: जी।
0: तो मेरी यही जो मेहनत है वो मुझे आज तक यहाँ ले आई। मुझे लता मंगेशकर पहला अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का
1: जी,
0: लता मंगेशकर अवार्ड तो मुझे दिया गया, तो स्टेज पे मैंने बोला, मैंने कहा जी मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में वायलिन दी थी
1: जी।
0: बोला बेटा ये वायलिन तेरे को दे दी है, वो सामने रास्ता है, रास्ता का एंड नजर नहीं आ रहा, ये रास्ता तो कहां तक पार करेगा तेरे ऊपर है।
1: हमने तो
0: तेरे को वायलिन गाड़ी दे दी है
1: जी,
0: अभी गाड़ी को कहां तक ले जाता है। तो मैंने कहा जी उनका वायलिन दी हुई मैं आज स्टेज पे पहुंच गया कि आज मुझे लता मंगेशकर का अवार्ड मिल रहा है।
1: क्या बात है,
0: ये तो मेरे लिए पद्मा से भी ऊपर अवार्ड, लता मंगेशकर के नाम का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और मुझे तीन तीन लता मंगेशकर के अवार्ड मिल गए
1: जी,
0: एक यहाँ का मिला, इंदौर गवर्नमेंट का मिला, अभी एक रायपुर में भी एक अवार्ड लता मंगेशकर। तो मेहनत और आपका हाथ का हुनर
1: जी,
0: ये बहुत बड़ी बात है
1: बिल्कुल।

0: के।
1: म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा दोबारा शुरू हुई उत्तम सिंह के नाम से जब यश जी ने अपनी एक फिल्म बनाई।
2: जी जी, उन्हें वो
1: कहानी
2: वो बात की बात है। क्या हुआ कि उत्तम जगदीश थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, मेरा अरेंजमेंट चल रहा था
1: जी।
2: तो जगदीश मेरे साथ कभी कोरस भी गा लेता था, कभी रिदम भी बजा लेता था। तो उसका घर भी चल रहा था, मेरा घर भी चल रहा था। तो 92 में एक फिल्म शुरू हुई तीर अंदाज करके
1: जी,
2: कंवल मुकुट उसके प्रोड्यूसर थे
1: जी,
2: और मनमोहन सिंह डायरेक्ट कर रहे थे।
1: अच्छा।
2: और उसकी स्टारकास्ट थी श्रीदेवी और सनी देओल। बहुत बड़ी फिल्म थी वो। वो फिल्म बन जाती तो एक जैसे मुगल आजम याद है ना
1: जी,
2: ऐसे लोग इस फिल्म को याद रखते हैं, इतनी बड़ी फिल्म थी वो। तो फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हो गया, दूसरा

0: हम लोग के लिए सुबह 9 बजे का टाइम था, तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं, राइटर, कवर जलाल अभी राइटर थे, वो बैठे हुए
1: जी
0: थे हम
1: जी
0: लोग। तो फोन की घंटी बजी लैंडलाइन की, तो जगदीश 9 बजे आ जाते थे, 9:15 बज गए थे, 9:15 बजे घंटी बजी कि जगदीश खन्ना ऑफ हो गए।
1: अरे अरे अरे
0: हम सब हैरान हो गए, सब सिटिंग वीटिंग में ही छोड़ी, उनके घर गए तो पता चला जी कि वो निकल रहे थे सिटिंग में आने के लिए, तो तुलसी को पानी डाल रहे थे, तुलसी के पेड़ को, वहीं पीछे गिर गए
1: अरे बाप रे,
0: और वहीं खत्म हो गए,
1: हार्ट अटैक आया।
0: हार्ट अटैक आया। और बहुत बड़ी फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म कर रहे थे, तो बड़ी खुशी थी। वो फिल्म बंद हो गई,
1: जी
0: वो फिल्म बनी नहीं, जिंदगी चलती रही। 93 या 94 में मुझे उषा मंगेशकर जी का फोन आया कि उत्तम भैया, मैंने कहा जी, दीदी का एल्बम करना है साईं बाबा का।
1: अच्छा
0: मैंने कहा जी ठीक है करते। तो मैं घर गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, इसलिए मैं
1: जी
0: आपको बड़े प्यार से पूरी बता रहा हूं।
1: यस यस बिल्कुल
0: तो मैंने कहा जी ठीक है, तो इसमें बात हुई और 1 साल निकल गया। एवरीबडी लव साइंस गाना है उसके अंदर, वो मनोज जी का लिखा हुआ और वो जगदीश खन्ना का बनाया हुआ है।
1: अच्छा।
0: तो उसको मैंने ठीक ठाक करके उसको रिकॉर्ड किया, तो दीदी भी खुश हो गई, टिप्स वाले भी खुश हो गए, मनोज जी भी खुश हो गए। फिर उसके बाद दूसरा गाना बना, दूसरा गाना बना तो वो भी मुखड़ा था इसका, जगदीश का,
1: जी
0: अंतरे उसने बनाए तो अंतरे मैंने बनाए,
1: जी
0: दूसरा गाना भी रिकॉर्ड हो गया। अब जगदीश की कोई कंपोजिशन नहीं है, तो तीसरा गाना शुरू हुआ तो मैंने बनाया, तो मैंने जाके मनोज जी से लिखवाया, फिर उसमें उन्होंने भी लिखा, भरताचार्य ने लिखा।
1: जी
0: तो वो गाना जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो दीदी आई, उन्होंने गाना लिखा, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड। तो संजीव कोहली मुझे पूछते ये किसका बनाया हो, मैंने कहा ये मेरा। तो जगदीश का, जगदीश के पहले 2 गाने हो गए, ये आपने बनाया, मैंने कहा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 गाने रिकॉर्ड किया हमने।
1: जी उसमें से दो जगदीश जी के थे,
0: डेढ़ जगदीश का।
1: डेढ़ थे। जी हाँ
0: तो आप सोचिए कि कितना कॉन्फिडेंस होगा दीदी को मेरे ऊपर, कि वो आती थी, क्या बन रहा है उनको पता नहीं,
1: जी
0: टिप्स वालों को क्या बन रहा है पता नहीं, मनोज जी बोले ये लिख लिया, उत्तम ये लिख लिया, हो गया। नारायण अग्रवाल का एक गाना है
1: जी
0: उसके
1: जी
0: अंदर। तो दीदी आती थी, मैं रिहर्सल कराता था, आती थी चले जाते थे। 12 गाने हमने रिकॉर्ड किए, हर गाने में मुझे संजीव कोहली पूछे कि ये गाना आपका है, मैंने कहा ये मेरा है। और वो गाना, वो एल्बम हिट हो गई बहुत।
1: जी।
0: दीदी की वो आज भी वो एल्बम बहुत बड़ी हिट है।
1: जी उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का 4th भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: उजाले।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे ये नगमा चंदन दास की आवाज में, और इसे चंदन दास ने ही संगीतबद्ध किया। निदा फाजली के बोल।

0: हम सुन रहे थे सजदा एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया जगजीत सिंह ने और बोल लिखे निदा फाजली ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
4: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
3: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
4: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
3: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे नगमे को जिसे लिखा निदा फाजली ने और गाया जगजीत सिंह ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे

0: साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

हम सुन रहे थे महबूब एल्बम से तलत अजीज की आवाज में निदा फाजली के बोलों को, जिसे संगीतबद्ध किया है तलत अजीज ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है इजहार एल्बम से। सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने इसे गाया है, निदा फाजली ने इसे बोल दिए हैं और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत।

हम सुन रहे थे कतील शिफाई और मुमताज राशिद के द्वारा लिखे गए इस नगमे को, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जिसे पंकज उदास की आवाज में हम सुनने वाले हैं।

पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्यार के गीत एल्बम से शुभा मुद्गल की आवाज में, जिसके गीतकार हैं अनिल पांडे और संगीतकार हैं संदेश शांडिल्य। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:00 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे शीशा एल्बम से यह नगमा जिसे मधुश्री ने गाया, गीतकार माया गोविंद और सीन ब्रदर्स ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: और कार्यक्रम रंग तरंग समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
5: रंग तरंग
6: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
7: Our Constitution has made expensive promises.
8: हमारे

0: संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है और इनमें स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये कार्यक्रम मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। ये एक सुरंग रोधी जहाज था। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मांगरोल युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और उन्नत हथियारों तथा सेंसरों के एकीकरण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। घरेलू शेयर बाजार आज सुबह 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 71,911 पर, जबकि निफ्टी 149 अंक गिरकर 22,372 पर पहुंच गया। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

0: हम सुन रहे थे गीत आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से, जिसे गाया आशा भोसले और अनवर ने, निदा फाजली के बोल और संगीत खयाम का।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: ये आकाशवाणी अलवर का सदिस का चैनल है, आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे ये गीत आप तो ऐसे ना थे फिल्म से, हेमलता की आवाज़ में निदा फाजली के बोल और संगीतबद्ध किया उषा खन्ना ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत, जो कि है फिल्म स्वीकार किया मैंने से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, निदा फाजली ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे देव फिल्म का यह गीत विजेता पंडित की आवाज़ में, जिसे लिखा निदा फाजली ने, आदेश श्रीवास्तव ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे ये गीत नाखुदा फिल्म से, लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाज़ों में, गीतकार निदा फाजली और संगीतकार खयाम। आइए सुनते हैं अगला गीत सपने टू फिल्म से, संजीवनी भेलांडे की आवाज़ में। अनुज कपूर ने इसे संगीतबद्ध किया और बोल हैं निदा फाजली के।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत, हरजाई फिल्म से, जिसे लिखा है निदा फाजली ने, संगीतबद्ध किया है राहुल देव वर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

तारों में चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल।

0: हम सुन रहे थे ये गीत चाहत फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में अनु मलिक के संगीत के साथ, जिसे बोल दिए निदा फाजली ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना? बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं एक और गीत निदा फाजली की कलम से निकला हुआ, जिसे संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने, जगजीत सिंह, अलका याग्निक की आवाज़ों में, और फिल्म है तरकीब।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर प्रस्तुत होगा बस थोड़ी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर आज न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकार आयोगों को शिकायतों की जांच करनी चाहिए और व्यवस्था की कमियों की पहचान करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन मुद्दों पर आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता उन पर संस्थागत स्तर पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि आयोग मानवाधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करना जारी रखेगा और न्याय, गरिमा तथा जवाबदेही

को बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्षों में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट से संवाद करेंगे। इस दौरान महिला सुरक्षा और महिला पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा होगी। संवाद के दौरान कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स की कार्यप्रणाली, सक्रियता और कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। एडीजी लता मनोज कुमार ने बताया कि संवाद का उद्देश्य प्रदेश में महिला सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ ही पुलिस की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। राज्य के विभिन्न माता मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने मां से सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद देने की कामना की। जयपुर की जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय अमृता हाट मेला आयोजित किया जा रहा है। कल से शुरू हुए और 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न जिलों के लगभग 170 महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। मेले में हैंडीक्राफ्ट, कशीदाकारी, लाख की चूड़ियां, पेपर मेशी आइटम, सलवार सूट, अचार, मुरब्बा और मसाले सहित अन्य हस्त निर्मित उत्पाद उपलब्ध है। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि राज्य के विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर साल ये मेला लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारिता विभाग का लक्ष्य हस्तशिल्प से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनका सशक्तिकरण करना है। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर मौसम में बदलाव आया है। पिछले 24 घंटों में बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर सहित कई इलाकों में बारिश हुई। बीकानेर जिले के लूण करणसर में ओले भी गिरे। बारिश और ठंडी हवा के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में एक और मौसम तंत्र सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक बीकानेर संभाग के साथ ही शेखावटी क्षेत्र में मौसम प्रभावित रह सकता है। कल बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू में बादल छाने तथा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। विभाग ने 13 से 15 अक्टूबर तक संबंधित क्षेत्रों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 139वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 23 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम सुन रहे थे ये गीत सरफरोश फिल्म से, जगजीत सिंह की आवाज़ में निदा फाजली के बोल और संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने। आइए बात करते हैं कार्यक्रम सुरीला सफ़र में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसकर हर गम भुलाती है माँ, मैं रोता हूँ तो सीने से लगाती है माँ, बहुत दर्द दिया है ज़माने ने मुझको, सब कुछ झेल कर सिखाती है माँ। दोस्तों, किसी भी मुश्किल का किसी को हल नहीं मिलता, शायद घर से कोई अब माँ के पैर छू कर नहीं निकलता। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि माँ एक नाम या रिश्ता नहीं, पूरा संसार इस एक नाम में समाया है। जब पास होती है तो लगता है हमें किसी बात की चिंता नहीं, मेरे साथ हमेशा रहेंगी, हम उनसे रूठते हैं मनाते हैं, जी भर कर बात नहीं कर पाते, लेकिन उनके जाने के बाद खुद को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमें बहुत मजबूत बनाकर चली जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आइए सुनते हैं इस माँ के नाम एक गीत।

दादी माँ फिल्म के इस गीत को हम सुन रहे थे मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीतबद्ध किया रोशन ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफर। हमारे श्रोता बहुत सुंदर कमेंट करते हैं और वह लिखते हैं कि माँ वो है जिसके पास लौटकर आज भी मन बच्चा बन जाना चाहता है, जिसकी गोद में दुनिया की सारी थकान भूल जाते हैं और जिसकी आवाज़ सुनकर तो लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। सच तो ये है कि माँ घर में हो तो घर सिर्फ घर नहीं, सुकून बन जाता है। और आप, मैं, हम सभी सदा ही उसी सुकून की तलाश में रहते हैं, है ना? तो चलिए बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और सुनिए ये गीत सुकून की तलाश में।

0: सही कहा आपने, बहुत सुंदर चित्रण है इस गीत में गर्मी सर्दी बरसात दिल की चाहतों का। और आप सभी ने सही पहचाना, भूपिंदर गायक कलाकार भूपिंदर हैं। गुलजार की कलम से निकला यह गीत है, मदन मोहन का संगीत है और फिल्म है मौसम। हम बात कर रहे हैं माँ की, कार्यक्रम सुरीला सफर में। लेकिन बात करते करते सुन लेते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और

0: रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर। आपने संदेश भेजे हैं बड़े सुंदर से। एक ने लिखा है कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ नाम से ही खुशी का हर पल सा है। आज मैं खुद माँ हूँ, लेकिन अगर कोई डांट दे या कोई कुछ कह दे या दुख का पल हो तो बस माँ की याद आती है और खूब रो लेती हूँ, लेकिन उसे बताती नहीं कि मैं उसे याद करके रो रही थी। ये तो जिसकी माँ है उसके हृदय की बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सर्वोच्च इबारत माँ शब्द, सारे शब्द इस शब्द के आगे फेल हैं, सब कुछ इसी शब्द में समा गया है। बिल्कुल सही। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि माँ अपने आप में विश्वसनीय होती है, जिसमें हमारे हर प्रश्न का हल होता है। जिनके माँ होती है वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिनके माँ नहीं होती वो जानते हैं। सही बात है। हमने हमारी इबारत में भी लिखा है कि दिल फुर्त ढूंढता है फुर्सत उसकी ही गोद में, सुकून का बस एक ही ठिकाना रहा है, वो इतनी दूर क्यों जाती है जीवन से, रब से शिकायत का यही पिटारा रहा है। चलिए सुनिए अगला गीत और बताइएगा इस गीत के संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत जिसे लिया हमने अदालत फिल्म से। बड़ी खूबसूरत से गीत को हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, और आप सबने सही पहचाना संगीतकार मदन मोहन। हम बात कर रहे हैं माँ की, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान कितना भी अरबपति खरबपति अमीर हो जाए, दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन इसे संसार में वो एक चीज़ नहीं खरीद सकता, वो है माँ और पिता। इंसान कितनी भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी माँ के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि माँ वह पहला नाम है जो बचपन से लेकर जीवन की हर दहलीज तक उनका प्यार हमें संभल देता है। माँ जिसकी गोद में हर उम्र में सुकून मिलता है, और नवरात्र में जब माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं तो एहसास होता है कि माँ केवल ममता की मूर्त ही नहीं बल्कि साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जगत जननी माँ जगदम्बा का आगमन हमारे घर हमारे दिलों में हुआ है, और पूरी भक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ हवन की सुगंध पूरी फिजाओं में तैर रही है। हमारे एक और श्रोता बताते हैं कि हर माँ सोते हुए अपने नन्हे शिशु पर लगातार नजर रखती है और उसे जान से बढ़कर प्यार करती है। आगे चलकर इसी तरह से त्रैलोक की जननी आदि शक्ति माता रानी से भी अनुभूति मिलती है। अज्ञान की नींद में समाये हम भक्तों को जगाती हैं और उनके सपनों को संजोए रखती हैं। तो चलिए हम सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को सुनते हुए आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से है, और ये जरूर बताइएगा कि ये फिल्म आपने कब कहाँ कैसे देखी थी। बताइएगा जरूर। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया। हमने आप सबसे पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सबने बताया कि ये त्रिमूर्ति फिल्म का गीत है। किसी ने बताया कि उन्होंने करतारपुर में देखी, किसी ने बताया भोपाल में देखी, किसी ने कहा अभी तक नहीं देखी। सबकी अलग अलग बातें थी, तो सबकी अलग अलग बातों को स्वीकार करते हैं। और एक बात हमारे एक श्रोता ने लिखी जो बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा कि शहर आकर पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। बात तो बड़ी छूने वाली है और सच भी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में निबंध में लिखते थे कि चलो चलो माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों के गांव में। तब समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आया कि माँ जहाँ होती है वहाँ सपनों का गांव बसता है, वहाँ सिर्फ प्यार दुलार होता है और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब एक प्रश्न आप सबसे आ रहा है मन में जो पूछा जाए, प्रश्न ये है कि आपने अपनी माँ की किस ख्वाहिश को पूरा किया है, या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी नहीं कर पाए, ज़रूर से बताइएगा। माँ इस धरती का आधार होती है, अपने अपनी माँ को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बताइए ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी माँ की जो पूरी नहीं की, या ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो पूरी करके आप प्रसन्न हो गए।

हम सुन रहे थे ये गीत ABCD 2 फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। मयूर पुरी ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया सचिन जिगर ने। हमने आपसे पूछा था कि ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप अपनी माँ की पूरी कर पाए या नहीं कर पाए, परंतु उसके पहले हम ये संदेश पढ़ते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कहते हैं भगवान सभी का ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए उन्होंने इस दुनिया में माँ का निर्माण किया। बिल्कुल सही बात है। हमारी एक और श्रोता बताते हैं कि उनकी माँ की अंतिम ख्वाहिश थी कि उनका सत्कार जगन्नाथपुरी धाम में हो और उन्होंने यह कार्य किया, उसके लिए आपका आभार। अपनी माँ की हर बात को पूरा करना हम बच्चों का कर्तव्य होता है ना। तो हमारी एक और श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते, कहते हैं हमें लगता है कि हमने अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी की है, क्योंकि हमारी माँ जब भी हम कुछ करते थे तो कहती थी कि बस यही तो मैं चाहती थी। सच बात है, माएँ ऐसी ही होती हैं, हम जो कह दें उन्हें लगता है कि बस वही सही है, और माँ इतना प्यार जो करती है। हमारी कोई श्रोता लिखते हैं कि द टाइम इज़ द बेस्ट हीलर बट नॉट इन केस ऑफ मदर, एज द टाइम पासिस आई मिस माई मदर मोर डे बाई डे। सच कहा आपने कि कहते हैं कि समय एक अच्छा हीलर होता है, लेकिन माँ के केस में नहीं होता। जब समय गुजरता है तो माँ को और याद करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सब रिश्ते पैसों के बने हुए हैं, पर माँ के रिश्ते का कोई मोल नहीं है। हमारे एक और श्रोता ने कथा लिखी कि हम छोटे थे, एक ही कंघी थी, जब माँ को बाल झाड़ना होता था तो उसे बहुत टाइम लगता था, क्योंकि माँ के बाल बहुत बड़े थे, स्कूल जाते समय समय हो जाती थी, और माँ को मुकेश जी भी पसंद थे, तो हमने बर्थडे पर सारे भाई बहनों ने पैसे इकट्ठा करके माँ को कंघी और मुकेश जी का कैसेट दिया था, और माँ खुशी के मारे रोने लगी थी। क्या बढ़िया बात है, माँ बहुत सुंदर चीज़ है। हमारे श्रोता ने इसी बात को लिखा है, और हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि मेरी बेटी अच्छा इंसान बने और मेरी तरह विद्यादान का काम करे, और उनकी यही ख्वाहिश थी और यह इच्छा मैंने पूरी की है। कितनी बढ़िया बात है कि आप सभी अपनी माँओं की इच्छाओं को पूरी कर पा रहे हैं और करते जा रहे हैं, और जिनके पास उनकी माँ है उन्हें तो यह कार्य अधिकार से करते रहना चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कहती थी जिंदगी में सफल हो ना हो लेकिन एक अच्छा इंसान बनो, और उसी पर चलकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ जैसा दुनिया में ना कोई है ना कोई होगा, माँ ममता का सागर है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे और सारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, हम ये सारी बातें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम सुनवाते हैं आपको अगला गीत। ये बड़ा प्यारा सा गीत है, और बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन है, ये आप बताइए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे पिया का घर फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल से सजा हुआ और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस संगीतबद्ध किया। हमारे बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माने जिस तरह से हम लोगों को घर गृहस्थी में पाला है, उस समय कोई और होता तो पता नहीं कैसे करता। वह सब उन्होंने ही किया है, बिल्कुल सही बात है, माँ सब संभाल लेती है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ बहुत बीमार थी, इलाज कराना था, दिल्ली लेकर आए थे और सेवा किए, मुझे पुणे जाना पड़ा और सेवा नहीं कर पाए, रहता है मलाल दिल में, कोई बात नहीं। हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि माँ की कितनी महिमा है यह हर किसी को मालूम है, पर देख कर, समाचारों में पढ़ कर, सुनकर बहुत दुख होता है कि बुढ़ापे में कुछ औलाद अपने माँ पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। बात ये भी बिल्कुल सही है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़िया गाना है, जीवन और जीवन की जीत पर लिखा है, संभवतः संगीतकार रविंद्र जैन है। नहीं, आप यहाँ पर त्रुटिवश हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीतबद्ध किया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कितनी अच्छी होती है ना, बच्चे की हर बात, हर ख्वाहिश जान लेती है और ख्वाहिश को पूरा करती है। जी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ वैसे कई बार मेरे घर आई थी, लेकिन वो उनके घर आना चाहती थी और वो आ नहीं पाई और अचानक से चली गई, ये दुख उनके मन में है। बिल्कुल सही है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि साधारणतः अनेक बच्चों की माँ वृद्धाश्रम में होती है, वो 9 भाई बहन हैं, पर उन्होंने अपनी माँ को कभी कष्ट नहीं होने दिया। बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मम्मी बिल्कुल छोटी सी ख्वाहिश पूरी की थी, उन्हें विविध भारती में स्वप्न चेहरे फूल सेवा लगीत सुनना था, वो फरमाइश उन्होंने पूरी करवाई थी। ऐसे ही विविध भारती का साथ और आपका साथ बना रहता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि माँ की बात को सुनकर हम आगे बढ़े हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम सुनते हैं अगला गीत। और ये जो अगला गीत है, आप अपने संदेश भेजते जाइए और साथ में बताइएगा कि

0: कभी छांव।
1: हम सुन रहे थे ये गीत कभी धूप कभी छांव। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत में गीतकार, संगीतकार और गायक तीनों के नाम बताइए। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि इस गीत के गायक हैं कवि प्रदीप, गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने। हमने हमारी इबारत में लिखा है कि ये जीवन है, यहाँ सुख दुख सब हैं, कहीं धूप कहीं छांव मिलती है, तो चलो ना संग में मुस्कुराते हैं, यहाँ मुस्कुराने की फीस कहाँ लगती है। तो चलिए मुस्कुराते हैं इस गीत के साथ, और हो सके तो बताइएगा कि इस गाने में आपको किस गायक कलाकार की आवाज़ सुनाई दे रही है। सुरीला सफर का यह अंतिम गीत।

0: पल।
1: हम सुन रहे थे ये गीत जमीर फिल्म से। साहिर लुधियानवी के बोल सपन चक्रवर्ती ने इसे संगीतबद्ध किया और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना, किशोर कुमार की आवाज में था यह गीत। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से आपका जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी
1: भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया और दिल्ली हरियाणा पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तटीय और

0: उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया INS मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अब है हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और माइन वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्ध पोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
3: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से

0: कांग्रेस सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
1: स्मैश द पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं, उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैश द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
2: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
4: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
3: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल

0: 18 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे श्रीमती 420 फिल्म से यह गीत, मोहम्मद रफ़ी शमशाद बेगम की आवाज़ों में सुनेंगे हम मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, रानी रूपमती फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, भरत व्यास के हैं बोल और एस एन त्रिपाठी का है संगीत।

0: नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत तीसरी गली फिल्म से। हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का है संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं तीसरी गली फिल्म से यह गीत हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का है संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और कल्याण जी आनंद जी का है संगीत।

आइए चलते सदाबहार नगमे में सुनते हैं आखिरी गीत फागुन फिल्म से, आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। इस गीत के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही देर में।

0: की सहेली।
1: सभी सुनने वालों को, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को, सभी श्रोताओं को और दीपा तुमको भी प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: बिल्कुल, सभी हमारे सभी सुनने वाली सखियों को, श्रोता भाइयों को, दीपा माहेश्वरी का, चंचल तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार
1: और भी शुभकामनाएं। मैंने तुम्हें दी, तुमने मुझे नहीं दी ना सुनने वालों को।

0: बिल्कुल दीना, नमस्कार दीना भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से बहुत प्यार से अपने परिवार का खुद का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
1: और कल हम ये शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं भाई, कल से जो उत्सव की धूम शुरू है पूरे देश भर में।
0: जी हाँ,
1: और ये उत्सव है नवरात्रि का, जो पूरे 9 से 10 दिन तक देश में यूं ही कहते हैं ना, रंग बिरंगी रौनकें नजर आएंगी, खूब सारी लाइटें होंगी, खूब सारा नाच गाना होगा, पकवान बनेंगे, वहीं जो बहुत सारे लोग हैं उपवास करते हैं, जहाँ पूजा पाठ का महत्व है वहीं नाच गाने का महत्व है, उजाले का महत्व, बहुत सारे रंगों का महत्व।
0: और देखो ना, ये पूरे नवरात्रि के 9 दिन हर दिन को एक रंग समर्पित कर दिया गया है ना, जैसे आज का रंग है सफेद। पता है श्रुता, आज ऑफिस में यहाँ पर विविध भारती में ज्यादातर लोग सफेद कलर के कपड़े पहनकर आए, बड़े प्यारे लग रहे हैं, सब एक दूसरे को देखकर एक स्माइल दी। उसके अलावा बाहर भी जब हम घर से दफ्तर तक आ रहे थे तो बहुत सारे लोग सफेद या उसके कॉम्बिनेशन में कपड़े पहने हुए, और कई सारे लोग तो इन दिनों में चप्पल या कुछ किसी भी तरह का
1: चप्पल जूते भी नहीं
0: पहनते हैं, उस तरह के लोग भी दिखे। और जी हाँ,
1: उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, अपनी अपनी भक्ति करने के तरीके होते हैं लोगों के। बाकी सुबह का जो समय होता है ना, हर घर से अमूमन हर घर से आरती की ध्वनियां नजर आएंगी, तो वहीं जब शाम के वक्त हम निकलते हैं तो जो बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं या सोसाइटी हैं, बिल्डिंगे हैं, सब जगह पर बहुत ऊंची आवाज में जो गरबा के धुनें जलती रहती हैं, वहां थिरकते छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के स्त्री पुरुष बच्चे सभी नजर आते हैं। और अभी जहाँ हम एक रंग में देख रहे हैं, वहाँ रंग बिरंगे रंग भी हमें नजर आएंगे, रंग बिरंगे परिधान में भी, और वहीं सफेद रंग में भी बहुत सारी महिलाएं पुरुष हमें नजर आएंगे। तो ये माहौल ही ऐसा होता है,
0: माहौल ही कुछ ऐसा है, खुशनुमा हो जाता है, सकारात्मक रहता है, हर जगह पॉजिटिविटी रहती है। और आप किसी को जानो या ना जानो, एक चेहरे पे मुस्कान जो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं वो बड़ा प्यारा लगता है ना।
1: बिल्कुल, चाहे वो कहीं कीर्तन भजन चल रहा हो घर में या शाम को गरबे का समय हो, हम जब देखते हैं ना भक्तिमय माहौल में और नृत्यमय उत्सवमय माहौल में हम डूब जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे माहौल को हम बनाएं, गीत सुने?
0: बिल्कुल, वो माहौल थोड़ा बना रहना चाहिए, है ना।

0: तो भाई दीपा, नवरात्रों की धूम तो है, लेकिन अब कार्यक्रम में आगे बढ़ना है नवरात्रि की बात के बाद में। तो हम बताएं कि आज किन विषयों पर हम बात करेंगे। तो छोटी छोटी सी कुछ आदतें होती हैं, हम सब में होती हैं, लेकिन जब उनमें बदलाव करना पड़ता है तो उनके जो परिणाम आते हैं वो बड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बदलाव कैसे? सकारात्मक बदलाव।
0: हाँ
1: भाई, बदलाव तो कैसे भी हो सकते हैं। अब आप कहे कि भाई कोई दिन भर बहुत सक्रिय रहता है और अचानक से आलसी बन जाए, तो वैसे वाले बदलाव नहीं होने चाहिए। ये बदलाव पॉजिटिव वे में होने चाहिए और तभी तो देखिए हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और इसीलिए बात हम करने चले हैं, विश्व गठिया दिवस पे भी हम छोटी सी बात करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: उसके बारे में क्या जरूरी है जानना।
0: बिल्कुल, जब उम्र बढ़ती है तो सभी को कहीं ना कहीं ये जो गठिया है या अर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, इसकी समस्या आ ही जाती है। तो कैसे पहचाने, क्या बचाव करें, थोड़ी सी इस पर बात होगी। एक और खास दिवस है, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। और अभी सोमवार में हम ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के व्यंजन। तो आज जिस खास व्यंजन की हम बात करेंगे, देखिए वैसे तो उपवास के दिन भी हैं नवरात्रि में, लेकिन जो उपवास नहीं कर रहे हैं, सब तरह से खा पी रहे, वो इन पकवानों का ज़रूर से मजा रहे। तो छत्तीसगढ़ में खासतौर पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हीं में से एक है फरा, या इसे मुठिया भी कहते हैं, और एक है अंगाकर रोटी। इनकी बात आज होगी।
1: बिल्कुल, कैसे बनती है, क्या खास है, वो सब हम जानेंगे। और भाई कुछ मैं कहूँ, कुछ
0: तुम कहो। बात तभी बनती है ना,
1: हाँ,
0: कि एक जना बोलता रहेगा ना तो वो बात लगेगा कि भाई कितनी बकबक कर रहा है कि सामने वाले को मौका ही नहीं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन संवाद तभी होता है या बात पूरी तभी होती है जब दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर किसी एक को शिकायत हो तो जो सामने वाला है वो शिकायत को दूर कर दे। जैसे आज एक छोटी सी प्यार भरी शिकायत आई है हमारे एक श्रोता भाई की है शायद, ये कि भाई इस आरंभ हो चुका है सप्ताह का, भाई देखिए हाँ आज तो सोमवार है और माता रानी का दूसरा नवरात्रा है, और आप ही देखिए ना सखी सहेली कार्यक्रम में नवरात्रों के विषय में कुछ भी नहीं है। उपवास, पूजा पाठ या भोजन व्यंजन आदि विशेष तौर पर जो बातें की जाती हैं, और उनको लगता है कि ये तो माता बहनों का डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता का डिपार्टमेंट हर एक के लिए है, ये किसी खास तौर पर महिलाओं के लिए नहीं है। और नवरात्रों के उपलक्ष्य में एक विषय अवश्य होना चाहिए, तो ऐसा उन्हें लगता है।
0: ये पूरा सप्ताह जो है वो नवरात्रि की धूम चलने वाली है। अलग से जो हमने विषय जिन पर चर्चा के लिए लिखे, वहाँ हमने नवरात्रि को नहीं लिखा किसी विषय को, लेकिन आगे आने वाले दिन में ये शामिल होने ही वाले हैं। और जब हमने शुरुआत की नवरात्रि की धूम से की
1: और आपको देखिए ना एक सुंदर सा गीत सुना करके बिल्कुल उस भक्ति भाव में आप सब शायद सरोबार हो भी चुके होंगे।
0: तो हमारे श्रोता ने शिकायत तो की है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भले हो मन में लेकिन वो नहीं लिख पाए हैं, तो भी शिकायत उनकी दूर हो गई। और उन्होंने हमसे शिकायत की, कुछ उन्होंने कहा, कुछ हमने कह दिया। बात तभी होती है, और ये जो जुमला है ना कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बात तभी बनती है दीपा, क्योंकि ये रिश्तों का पूरा व्याकरण है। हम सभी बोलना चाहते हैं और कोई हमें सुने, हम ये भी चाहते हैं। बोलने से गला हल्का होता है और सुनने से मन, कोई जब हमें सुनता है तो हमारा मन हल्का होता है। और बात तभी बनती है जब गला और मन दोनों पूरी तरह से हल्के हो जाते हैं। तो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इसका एक मतलब ये भी है कि आपस में बातचीत करना, अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ साझा करना और संवाद का माहौल बनाना। ये केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता दीपा, बल्कि दो लोगों या दो पक्षों के बीच आपसी जुड़ाव और आपसी समझ की बात भी है।
1: बिल्कुल सही कहा, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इसमें सबसे सुंदर पता है क्या शब्द है चंचल? हम।
0: क्या बात है। हाँ,
1: और जब तक मैं और तुम है ना, तो फिर देखिए बहस है, जहाँ हम आ गया वहाँ बात बन जाएगी, और बात को तुमने क्या किया से निकाल कर हम इसे कैसे ठीक करें, बिल्कुल इसमें तब्दील हो जाएगी, होगी या नहीं होगी।
0: बिल्कुल, और तब बात बन भी जाएगी। और दो लोगों के बीच जब संवाद होता है तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे की बात तक रखे, जिसे संवाद का संतुलन जो है वो बना रहे। आपसी जुड़ाव, आत्मीयता अक्सर रिश्तों, दोस्ती या प्रेम में इस्तेमाल होती है। और दो लोग जब अपनी भावनाएं, अपने सुख दुख और अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं तो बात तभी बनती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को सुनना और समझना दोनों जरूरी है। इसमें केवल कहने ही नहीं बल्कि एक दूसरे को ध्यान से सुनने और समझने पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिससे आपसी समझ और विश्वास मजबूत हो।

0: अब देखो ना, आजकल संवाद का हाल कुछ ऐसा हो गया है चंचल कि एक बोलता है तो दूसरा इंतजार करता है कि पहला कब चुप हो ताकि वो अपनी बात शुरू कर दे। अब देखिए, ये संवाद नहीं है, ये तो भाई मोनोलॉग हो गया है या नहीं दोस्तों? क्योंकि जो आपस में टकरा रहा है, मतलब बोलने ही नहीं दे रहा है अगर दूसरे को, तो फिर वो कैसे आपसी बातचीत हुई? और जब कोई अपनी बात कहना शुरू करता है, उसके पहले ही हम ये तय कर लेते हैं कि सामने वाला गलत है, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कहे, हमें तो बस गलत ही लगने लगती है। ऐसे संवाद से बात करने के बजाय बिगड़ ही जाती है। तो जब भी बात कहो, साफ कहो, लेकिन थोड़े मीठे अंदाज में कह दो।
1: और शब्दों के पीछे का दर्द भी कई बार हमें जब कोई बताता है तो हम उनसे अनसुना कर देते हैं। कोई हमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, हम उसके शब्द सुनते हैं लेकिन उसके पीछे छुपी हुई जो कुछ शब्द हैं जो हमें नहीं सुनाई दे रहे कि वो कहना चाह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: ना कहकर भी उसने कहा लेकिन हम इन शब्दों को सुन नहीं।
0: कई बार क्या होता है ना, ऐसा होता है लोगों में कि वो प्रेम भरे शब्द बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन उनके गुस्से में भी वो जो उनके प्रेम को हमें समझना पड़ता है।
1: जब कोई गीत या गजल बनती है ना, तो उसमें चार चीजें चाहिए होती हैं, जब भी वो अच्छा लगता है, वो है लय, सुर, उसके शब्द और एहसास। इसी तरह से बात भी जब हम कोई करते हैं तो बात तभी बनती है, उसमें चार सुर होने चाहिए, ठहराव, सच्चाई, पारदर्शिता और विश्वास।
0: बिल्कुल, और जब हम ठहराव यानी मन को शांत कर लेंगे, वहाँ से बात शुरू करेंगे, तो गुस्से में कहीं की गई जो बात है ना, सच भी हो तो जहर लगने लगती है। लेकिन इसलिए जब आप जब आए तो 20-25 मिनट के लिए मौन हो जाएं, यानी आप कभी भी कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो अगर यह गुस्से में है तो थोड़ा सा चुप रह जाइए। इससे होगा ये कि 90% बातें तो वहीं खत्म हो जाएंगी।
1: बिल्कुल सही,
0: गुस्से में, क्योंकि गुस्से में की गई बात और फिर देखिए वो बात का कहाँ बतंगड़ बन जाता, देर नहीं लगती।
1: और जब कोई बात अपनी हमसे कह रहा है तो सच्चे मन से उसे सुनना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आंखें मोबाइल पर हैं, चेहरा उसकी तरफ लगा हुआ है और हम उसकी बात को पूरी तरह से सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब उसे दिखा रहे हैं कि हमने सुना, लेकिन हमारा ध्यान या तो अपने किसी और बात पर है, हमारे मोबाइल पर है, या उसे बीच में जब अगर हम टोक देते हैं उसकी बात को पूरा होने से पहले ही, तो वो अपने बात कहने के लिए जो अपना मन हल्का करना चाहता है ना, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो हमें पूरी तरह से समझता है, हमारे मन के भीतर चल रही उथल पुथल को वो पूरी तरह से भांप लेता है और हमसे वो बात करता है। फिर भी अक्सर हम घुमा फिरा के कह देते हैं ना कि कुछ नहीं, सब ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो तूफान चल रहा है उसे वो हमें समझ लेता है और कई बार बिना कहे ही वो बात संवाद जो है दोनों के बीच में हो जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, बात करने से ही बात बनती है, खामोश रहने से तो दूरियां पनपती है।
1: और इसीलिए दीपा, ना तुम चुप रहो ना हम चुप रहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और जो उलझी है गांठ दिल में तो बातों ही बातों में वो सुलझे।
0: बिल्कुल, संवाद कोई जादू नहीं, आदत है चंचल, और आदत एक दिन में नहीं बनती। हम सब एक अच्छी शुरुआत करें कि हर रोज जब भी समय मिले किसी एक अपने से सिर्फ 5 मिनट बिना सलाह के, बिना जज किए, सिर्फ सुनने सुनाले वाली बातें करेंगे, करके देखिए, मन हल्का लगेगा, यकीन मानिए।
1: बिल्कुल, अब जब ऐसा करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। और सुन लेते हैं गाना।

0: जब बात मन में रह जाती है ना तो उलझनें बढ़ जाती हैं, इसलिए मन की बात कह दीजिए और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ऐसा होना चाहिए। इसी पर एक बड़ा बहुत अच्छा संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जहाँ एक ही बोले वो भाषण होता है, संवाद नहीं। जहाँ दोनों बोलें और दोनों सुने वहाँ संवाद बन जाता है। बिना संवाद के मन बंद हो जाते हैं। कहने से मन हल्का होता है, सुनने से भी मन बड़ा होता है। और आज की सबसे बड़ी कमी है कि सबको कहना है पर सुनना किसी का नहीं है। इसीलिए ये पंक्तियाँ हमें बराबरी का सम्मान सिखाती हैं कि ना तुम हमेशा सही ना हम हमेशा सही। इसीलिए घर में, रिश्तों में, समाज में अगर हम थोड़ा सुन लें, थोड़ा कह दें, तो आधी दूरियाँ आधी लड़ाइयाँ खुद ब खुद मिट जाएंगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह से एक और संदेश है, कह रहे हैं कि साझा अभिव्यक्ति, यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, रिश्तों में ताजगी और अपनापन बनाए रखती हैं। जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं और एक दूसरे के मन की थाह ले लेते हैं, तब विश्वास की जड़ें और मजबूत होती हैं।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि जहाँ ना शब्दों की कोई बाध्यता हो, ना भावनाओं पर कोई पहरा हो, बस मन हो, संवेदनाएं हो और एक दूसरे को सुनने और समझने का सुंदर सा सिलसिला हो।
1: बहुत सुंदर कहा। और एक संदेश और है कि हम किसी से कुछ कहते हैं अपने दिल की बात, तो हमारी बात, हमारी बहुत सारी व्यर्थ जो नेगेटिव बातें वो निकल जाती है, पर हम सिर्फ कहें ही नहीं, अगला जो सुन रहा है उसकी भी कुछ बात सुने। परिवार में कुछ लोगों के प्रति कुछ ऐसे विचार आते हैं जो अच्छे नहीं होते, पर अगला कोई आपका दोस्त या प्रिय सुनकर और आपको सुझाव देता है, उन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
0: एक अन्य संदेश में पढ़कर सुनाती हूँ, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि एक तरफा बात अक्सर बोझिल हो जाती है और संवाद एक तरफा भाषण बनकर रह जाता है। साझा अभिव्यक्ति यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, तो ये अगर होगा तो रिश्तों में ताजगी और अपनापन बना रहेगा। जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं, एक दूसरे के मन की थाह लेते हैं, तब विश्वास की जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं।
1: बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि जीवन केवल अपने हिस्से की बात कह देने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को सुनने और समझने की कला भी है। जब हम कहते हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता है।
0: तो भाई सिर्फ हमें ही नहीं कहना है, गीतों के माध्यम से भी बहुत कुछ कहा जाता है, तो सुने गीत।
1: चलिए चलिए।

0: हम भी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और एक अच्छा सा सुंदर सा संदेश है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हमारी एक सखी लिखती है कि आज विश्व गठिया दिवस है, मैं बहुत लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं सारा काम कर लेती हूँ, चल फिर लेती हूँ, अगर मैं एक दो दिन भी नहीं चली तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी हो जाता है। इसीलिए आप इसका सिर्फ एक ही इलाज है या परहेज है कि आप शरीर के अनुसार खाना खाएं, कुछ वात की चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, शरीर को एक्टिव रखें, नियमित रूप से हल्का फुल्का व्यायाम करें, दुरुस्त दिनचर्या, सही खान पान इस रोग से निजात दिलाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, एक सक्रिय मतलब फिजिकली एक्टिव लाइफ बहुत ज़रूरी है हर तरह की चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए ना, गठिया एक रोग नहीं है बल्कि 100 से ज़्यादा बीमारियों का ये समूह है। इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न आ जाती है। और अगर एक अनुमान के अनुसार हम देखें तो भारत में, हमारे देश में करीब 18 करोड़ से ज़्यादा लोग किसी न किसी तरह से इस गठिया से पीड़ित हैं। लेकिन होता यह है कि 70% लोग इसे बुढ़ापे का दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये बच्चों में भी हो सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा दीपा, और कई तरह का गठिया रोग होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, इसमें सबसे आम तौर पर ये सबसे आम है, और लगभग जब 40-45 की उम्र होने लगती है उसके बाद कूल और घुटनों में घिसाव पाया जाता है, तब ये दर्द उठते बैठते, जिसे इतने कमर में दर्द हो रहा है या घुटनों में चला फिरा नहीं जा रहा, उस तरह का होता है। इसी तरह से रूमेटाइड अर्थराइटिस है, जिसमें सुबह उठते ही हाथों में अकड़न सी महसूस होती है और 30 मिनट तक मुट्ठी खुलने ना खुलने जैसी दिक्कत भी महसूस हो सकती है। इसी तरह से गाउट भी एक गठिया का प्रकार है, जिसमें यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो पैर के अंगूठे में असहनीय दर्द होता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये युवा में सुबह कमर में जकड़न जैसी समस्या इसमें आती है।
0: तो बिल्कुल ये कभी ना समझे कि ये बढ़ती उम्र में ही होता है, कई बार कम उम्र में भी ये समस्या आपको जकड़ सकती है।
1: बिल्कुल, और जब भी इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। जैसे सुबह 30 मिनट से ज्यादा जोड़ों में जकड़न हो, 3 दिन से ज्यादा एक ही जोड़ में सूजन आना है, या बिना चोट के भी दर्द

0: जोड़ों में बना अगर रहता है या बढ़ता जा रहा है, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होना, ये चलने उठने बैठने इन सब में तकलीफ होना, इन सब लक्षण अगर ये हैं तो जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है यानी रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। और देर करने से देखिए जोड़ जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं,
1: बिल्कुल फिर समस्या को समाधान करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसे समय रहते बचाव ज़्यादा अच्छा रहता है। और गठिया रोग से बचने के लिए जैसे हमारे संदेश में भी लिखा गया था ना कि 30 मिनट अगर आप ज़्यादा समय ना कर सकें 30 मिनट टहल लीजिए, तैरना साइकिल चलाना जैसे व्यायाम भी कर सकते हैं अगर आपकी शारीरिक क्षमता है तो। बढ़ते वजन को भी नियंत्रित करना ज़रूरी है, अगर लगातार आप देखें कि आपका वज़न बढ़ रहा है तो वहीं उसे भी नियंत्रण करने की कोशिश करें। धूप में 15 मिनट तक विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं, और जो सुबह के उगते सूरज की धूप होती है उसी में विटामिन डी होता है। ऐसा ना समझें कि सारा दिन में से कभी भी आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे विटामिन डी आपको मिलेगा
0: जी।
1: अदरक हल्दी और या ओमेगा 3 वाली जो भी चीज़ें हैं जिसमें अखरोट अलसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, इन्हें अपनी नियमित खुराक में शामिल किया जा सकता है, और अकड़न होने पर थोड़ा सा ना गर्म सिकाई भी की जा सकती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, और जोड़ों में दर्द रहता है ना चंचल, तो ठंडे पानी से नहाए इस तरह से हमेशा सलाह दी जाती है, और देर तक एसी में बैठे रहना, क्योंकि आजकल हर घर में ही तो देखिए एयर कंडीशन है ही, तो इसमें भी दर्द बहुत बढ़ जाता है। फिर पालथी मारकर घंटों बैठना या सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना, ये सब में दर्द बढ़ सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। दर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द का जो कोई भी पेन किलर लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये समस्या को और बढ़ा सकता है।
1: ये सिर्फ जोड़ों के दर्द की बात नहीं है, आपको किसी भी तरह का दर्द होता है और उसमें अगर आपने बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर लिया है तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी आपको आ सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऐसा दर्द हो और खासतौर पर गठिया की हम बात कर रहे हैं, अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो चिकित्सकीय सलाह बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और दर्द अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है तो पहले ही आराम, जो पहले क्या करना चाहिए, आराम तो उसका इलाज है ही, ये सोचकर बिल्कुल हिलना डुलना जो है बिल्कुल ना करें, ये उचित नहीं है। और गठिया ला इलाज नहीं है देखिए, पर अनदेखा करना ये भी सही नहीं है। सही समय पर सही जानकारी और व्यायाम से हम अपने रोज़मर्रा के जीवन को बिल्कुल सामान्य रख सकते हैं,
1: और इसीलिए दर्द को अपना स्वभाव बिल्कुल मत बनने दीजिए। जोड़ हिलेंगे जीवन तभी मिलेगा। और इस तरह के विश्व स्तर पर जब भी कोई दिवस मनाए जाते हैं तो उनकी एक थीम रखी जाती है। इस बार इस दिन की थीम रखी गई है सही जानकारी बेहतर जीवन।
0: बिल्कुल, और अभी क्या करना चाहिए,
1: एक अंतराल का समय है,
0: चलिए

0: श्रोताओं, विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और दीपा, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: गीत बहुत सुंदर था दीपा, और ऐसे गीत जब बजते हैं ना तो गठिया वटिया सब भूल के ना नाचने कूदने को झूमने को दिल करता
1: बिल्कुल
0: है। और जब रात को गरबा होता है ना तब भी कितना भी दर्द हो रहा हो हाथ पैरों में, लेकिन जब वो थिरकते हुए हम पैर देखते हैं ऐसा कोई गीत सुनते हैं ना तो मन करता है कि थोड़ा सा चलिए चाहे दो राउंड लेंगे गरबा के हम, लेकिन हो जाए।
1: दिल जब खो जाता है तो किसी सखी को ही बताया जाता है ना।
0: और चलिए हम गठिया दिवस के बाद अब बात करते हैं एक और खास दिवस की, जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस।
1: बिल्कुल,
0: ये भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है दीपा कि सोचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लेकिन किसी की दी हुई वस्तु नहीं है। ये स्वतंत्र विचार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी मन में आया वो बोल दिया। बड़ों का अपमान करना, हर परंपरा को भला बुरा कहना, इसे विचारों की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता।
1: जी, स्वतंत्र विचार का मतलब ये है चंचल कि किसी भी बात को आंख बंद करके ना मानना, सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल रखना चाहिए। ऐसा क्यों, ये हम पूछ सकते हैं अपने बुद्धि, अपने अनुभव और सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाना और दूसरों को भी अपनी राय बनाने की जो है जब बना उसका सम्मान करना। अगर किसी की राय कुछ और है, हमारे सोच से अलग है, तो उसका सम्मान बिल्कुल करना चाहिए।
0: आज हमारे पास जानकारी तो बहुत है लेकिन सोच है वो बहुत कम है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी सूचना जो हमें मिलती है हम उनको ही सच मान लेते हैं और भीड़ का हिस्सा मानकर हम भी वही करने लगते हैं जो सारे लोग कर रहे होते हैं। और कई बार हमें ये भी डर लगता है कि इससे अलग सोचा तो लोग क्या कहेंगे।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है और इसलिए सुनो सबकी, करो अपने विवेक की, मानो वही जो बुद्धि को ठीक लगे। बुजुर्गों ने कहा है, सुनिए सबकी, करिए मन की। पर मन का मतलब जिद नहीं, विवेक है। स्वतंत्र विचार विद्रोही नहीं, ये जिम्मेदारी है, खुद के दिमाग का इस्तेमाल करने की हमारी जिम्मेदारी।
0: बिल्कुल सही कहा, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि बातों के साथ साथ गीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए।
1: चलिए

0: चंचल
1: बोलिए।
0: देखो ऐसा लगता है ना कि भाई छोटी छोटी हम वो किस्सा कहानी जो पड़ी है, बूंद बूंद से जो घड़ा घड़ा जो भरता है
1: जी।
0: बस ठीक उसी तरह हमारी छोटी छोटी आदतें ही जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती
1: हैं। सही कहा, हम सब चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, घर व्यवस्थित रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे, जीवन में खुशहाली आए, लेकिन इसके लिए हमेशा बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है, छोटी सी शुरुआत भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है ना दीपा?
0: बिल्कुल सही कहा। तो देखो चलिए जान ही लेते हैं आपकी ज़िंदगी, ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें कौन से छोटे छोटे बदलाव हम कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले शुरुआत होती है अपनी सुबह से, अच्छी आदतों से हमें करना चाहिए। उठते ही मोबाइल देखने के ये जो आदत है उसके बदले में थोड़ा सा टहल लें, घर के अंदर ही ताज़ी हवा ले लें या हल्का सा बिल्कुल स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है ना वो कर लें। और छोटी सी आदत ये देखो हमें दिन भर ऊर्जावान रहने में मदद कर सकती है।
1: इसके अलावा एक छोटा सा दूसरा बदलाव हम ये भी कर सकते हैं कि अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव ले आएँ, पर्याप्त रूप से पानी पिएँ, फल सब्जियाँ खाएँ, जंक फूड का सेवन थोड़ा सा कम कर दें। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी ये नहीं कि हम सब कुछ एकदम से बदल दें, लेकिन छोटी छोटी सी आदतों से भी हम अपना सकते हैं और मौसम में जो फल सब्जियां आते हैं उनको अपने आहार में ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और सही समय का हमें समय का जो है सही इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कभी कभी होता है ना बेवजह समय बिताने लगते हैं, हम पता ही नहीं चलता कितना वक्त निकल जाता है। इसके बदले में हम कुछ समय किताबें पढ़ने में लगाना चाहिए, कुछ समय को और नई चीज़ें सीखने का या अपने शौक पूरे करने में भी हम व्यतीत कर सकते हैं अपना समय। और रोज़ के 15 मिनट भी धीरे धीरे अगर कुछ सीखा तो समझ लीजिए सच में बहुत कुछ सीखा।
1: एक छोटा सा संदेश इसके बारे में बड़ा अच्छा आया है कि छोटी आदतों में बदलाव करने से समय के साथ जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम आते हैं। जब आप रोज़ाना खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत छोटी सी करते हैं तो बहुत महीनों या सालों में वो बदलाव बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जैसे कभी कभी छोटी सी बचत बहुत बड़ी बचत बन जाती है, आपका अर्थ मजबूत होता है। सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान या मेडिटेशन, हल्की सैर, छोटी छोटी ये आदतें हैं जो मानसिक शांति, सकारात्मक मानसिकता और बेहतर समय प्रबंधन लाती हैं। और ये छोटी सी जो बातें हैं वो जीवन में बहुत बड़ी खुशियां ले आती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, घर को भी साफ सुथरा रखने के लिए रोज़ केवल 10-15 मिनट अगर हम निकाल लें तो सच में देखो जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित रहेंगी। हर दिन ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी, आज हम बोलते हैं ना कि संडे है अब आज हम सफाई करेंगे, अगर हर रोज़ भी थोड़ा थोड़ा समय निकाला तो घर आपका व्यवस्थित रहेगा।
1: एक छोटा सा संदेश है लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात लिखी कि रोज़ व्यायाम करना, सैर करना कुछ देर भी अगर आप करते हैं, रोज़ नहीं हो पाता तो समय के अंतराल पर करिए, लेकिन इसे पता लगता है कि धीरे धीरे शरीर जो है वो स्वस्थ होता जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा, और आर्थिक स्थिति को भी हम बेहतर बना सकते हैं छोटी छोटी आदतों से, जैसे गैर ज़रूरी खर्चों से बचें और ख़रीदारी से पहले सोच लें कि क्या सच में वो चीज़ हमें ज़रूरत है।

0: उसकी, क्योंकि फट से ऐसे ही ऑनलाइन ये जो क्लिक कर देते हैं हम बटन, उसके पहले ज़रा सा उंगली हटा लीजिए और सोच लीजिए, और धीरे धीरे यही छोटी बचत आपकी बड़ी बचत में तब्दील हो सकती है।
1: ऐसे ही एक संदेश कहता है कि ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे कदम, जैसे मीठा बोलना, समय की कद्र करना, दूसरों की मदद करना, ये भी हमारे जीवन को खूबसूरत बना देती हैं। बस छोटी सी शुरुआत है तो बड़ा बदलाव भी एक दिन ज़रूर हो जाएगा।
0: बिल्कुल। हम फिर आ जाते हैं अब एक और ज़रूरी आदत पर, सकारात्मक सोच की। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने की हमें कोशिश करना चाहिए चंचल, और जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों का उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त नहीं करते, कम करते हैं जरा। छोटी सी ही बात क्यों ना सही कि मेरा भरा पूरा परिवार है, सब लोग मेरे साथ हैं, हम इसके लिए भी अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक ही दिन में सारी आदतें देखिए बदलने वाली नहीं है, इसकी कोशिश भी हमें करनी नहीं चाहिए। बस शुरुआत एक या दो छोटी अच्छी छोटी छोटी आदतों से करिए, नियमित रूप से उसे अपना कर देखिए तो सही, आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे।
1: एक छोटी सी आदत हमारी भी है कि हम बीच में गाने सुना देते हैं, वो हमें रोकनी नहीं।
0: ये तो बहुत अच्छी आदत है।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट

0: को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: भाई हम बहुत बोल रहे हैं, हम कोई भी काम करें चाहे वो बोलने का हो या कोई शारीरिक श्रम हो, ऊर्जा कैसे मिलती है, हमें खाने से ऊर्जा मिलती है।
5: बिल्कुल सही
4: तो
5: का।
4: मेरे कहने का इशारा आप समझ गए कि अब कुछ खान पान की बात भी होनी चाहिए ना?
5: और हमारे यहाँ तो इतने विभिन्न प्रकार के देखो व्यंजन होते हैं, हम हर प्रदेश के व्यंजन को लाने की कोशिश कर रहे हैं और कितने तरह तरह के व्यंजन और रेसिपीज हमने सीखी भी है। आज छत्तीसगढ़ की हम सीख रहे हैं अंगाकर रोटी। ये एक पारंपरिक वहाँ के व्यंजन, प्रसिद्ध और पारंपरिक व्यंजन है। इसे सीधे आग के अंगारों पर पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है, इसलिए इसे अंगाकर कहा जाता है। और इसे

0: तो इतने विभिन्न प्रकार के देखो व्यंजन होते हैं, हम हर प्रदेश के व्यंजन को लाने की कोशिश कर रहे हैं और कितने तरह तरह के व्यंजन और रेसिपीज हमने सीखी भी है। आज छत्तीसगढ़ की हम सीख रहे हैं अंगाकर रोटी। ये एक पारंपरिक वहाँ के व्यंजन, प्रसिद्ध और पारंपरिक व्यंजन है। इसे सीधे आग के अंगारों पर पत्तों में लपेट कर पकाया जाता है, इसलिए इसे अंगाकर कहा जाता है। और इसे पान रोटी या पन पूर्वा रोटी भी कहते हैं, क्योंकि ये पत्तों में लपेटी जाती है। लेना क्या है इसमें, पका हुआ चावल लेना है या बचा हुआ चावल भी आप ले सकते हैं। एक कटोरी चावल का आटा, एक कटोरी नमक अपने हिसाब से ले लीजिए, और केले के पत्ते या पलाश के आपको अगर मिल जाए तो वो वाले पत्ते, गोबर के उपले या लकड़ी के अंगारे अगर हो सके तो। बनाना कैसे, सबसे पहले पके हुए चावल को अच्छी तरह मसल ले, इसमें चावल का आटा और नमक मिलाकर नरम आटा गूंध ले। अब जो पत्ते आपने लिए हैं पलाश के या केले के पत्ते, उनको आपस में रखना है। आटे की मोटी लोई बनाकर पत्ते के इसके ऊपर रखना है और ऊपर से एक और पत्ता ढकना है। अब जो तैयार पत्ते वाली रोटी को जलते हुए कंडे या कोयले के अंगारे पर रखना है और ऊपर से भी आपको गर्म अंगारे डाल देना है। ये नहीं है तो फिर अब आप घर पे जो तवा है उसके ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो 15-20 मिनट तक पकने दीजिए और पत्तों की देखिए सौंधी सौंधी खुशबू रोटी में आ जाती है। पत्ते हटाकर गर्मा गर्म अंगाकर रोटी को टमाटर की पतली चटनी या घी के साथ परोसा जाता है वहाँ पर पारंपरिक रूप से।
1: बिल्कुल, ऐसे नए व्यंजन देखते हैं तो उनको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और अब हम सुन लेते हैं गीत,
0: चलिए।

0: चंचल, हमसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा फरा की जो व्यंजन विधि है, जल्दी से बता दो।
1: तो भाई देखिए, हमारे श्रोताओं ने इसकी व्यंजन विधि लिखकर भेजी है और वो ये भी बता रहे हैं कि फरा उनके यहाँ करवा चौथ पर बनाया जाता है, तो करवा चौथ भी आने वाली है, थोड़ा सा ही इंतजार रह गया। लेकिन आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि पर अब तो जब भी मन करता है ना तभी ये बना लिया जाता है। इसके लिए चावल के आटे को सान कर उसकी लोई में चने की पिसी हुई दाल में नमक, मिर्ची, अदरक, ये जो चीज़ें, इनको बारीक काट लिया जाता है और इनको मिलाकर भरकर उबलते पानी में डालते हैं। कुछ ही देर में फरे हल्के होकर ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं और थोड़े से कड़े हो जाते हैं, इनके जो ऊपर का आटे का कवर है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। और फिर पानी से निकाल कर छोटे टुकड़ों में इन्हें काट कर हींग और जीरे से छौंका लगा लिया जाता है। फिर हरे धनिया की चटनी के साथ इनको खाया जाता है कि बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। तो फरा जो है वो कई प्रांतों में बनाया जाता है और हर प्रांत में बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। चावल के आटे के साथ बहुत सारे लोग इसमें आटे के साथ भी बनाते हैं और जो ताज़ा चने की दाल को पीसकर बनाई जाती है, जो मसालों का इसमें प्रोपोर्शन है वो भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। कुछ इसमें पीसा हुआ लहसुन अदरक भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च आपको ज़रूरत के अनुसार अगर जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डालिए या ना डालिए, तो ये बदलाव अपने हिसाब से किए जा सकते हैं। और फरा को कहीं कहीं मुठिया भी कहा
0: जाता है। अच्छा, एक संदेश और छोटा सा है कि हर रोज एक गुल्लक में कुछ रुपए जमा करते हैं तो एक अंतराल पर वही छोटी छोटी बचत से कितना पैसा अनजाने में जमा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता।
1: बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे गाने जमा हो जाते हैं, लेकिन ये जो सुन रहे हैं ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: घड़ी की सुइयां अभी हमें वक्त नहीं दे रही हैं कि हम और बातें करें, तो इजाजत ले लेते हैं सभी।
1: बिल्कुल,
0: चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी

0: दोस्तों, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
2: मुझे आमंत्रित करने के लिए और बड़ा अच्छा लग रहा है, ये डॉक्टर्स के लिए नया एक्सपीरियंस रहता है ना तो।
1: अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है और आप कहाँ के रहने वाले हैं संदीप जी?
2: मैं रहने वाला प्रयागराज इलाहाबाद, और पढ़ाई मैंने की है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है।
2: और उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव कर गया था, वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था, सफदरजंग हॉस्पिटल में था। उसके बाद फिर मुंबई की तरफ रुख किया।
1: जी जी,
2: यहाँ पे मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल है, बहुत प्राचीन हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर और बहुत अच्छा काम होता है इंटेंसिव केयर का। तो वो फिर मैंने वहाँ इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग की।
1: आपने इंटेंसिव केयर को क्यों चुना अपने स्पेशलाइजेशन के लिए?
2: हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको लगता है डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि लाइफ सेवर हो जो।
1: हाँ,
2: और वो केसेस जितने भी हैं वो इमरजेंसी में ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसा लगता था, मतलब डॉक्टर सबका रोल है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनका सब एक टीम वर्क होता है, लेकिन वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब इंटेंसिव केयर का डॉक्टर जो रहता है, वो जब यंग होते हैं, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, तो लगता है नहीं यार जान बचानी है कम से। तो वो एक था इंटरेस्टिंग मेरी तरफ से, ऐसा कि भाई चैलेंजेस रहते हैं, हर दिन आप एक नया चैलेंज देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया है लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है अभी भी।
1: बिल्कुल।
2: तो वो है
1: एक चीज़ जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी भी कोई मरीज आईसीयू में जाता है तो परिवार में एक तरह से पैनिक हो जाता है कि आईसीयू में जाने का मतलब अमूमन ये माना जाता है कि जान बचने वाली नहीं है। एक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप इन बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए कि आईसीयू में जाने का मतलब बहुत पैनिक नहीं है, वहां से लोग लौट कर भी आते हैं।
2: नहीं,

0: नहीं सर, अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं
1: जी।
0: और जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है। 100 में से 99 तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ 90 से ऊपर लोग वापस आते हैं। ये ऑब्वियसली कि आप किसी भी पेशेंट को, उसके सगे संबंधी को बोलेंगे कि भाई इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत है, तो थोड़ा तो लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतने डरने की बात नहीं है। और इस भ्रम की वजह से भी कि इंटेंसिव केयर यूनिट पे नहीं जाना चाहिए, हमको घर पे ही रख दो या हम वार्ड में ट्रीटमेंट लेंगे, ये कभी कभी समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाते हैं, ये हर फील्ड में है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सही समय पे सही जगह पहुंच गए तो आपके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अब वो भी नहीं है कि पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लास्ट स्टेज में आईसीयू, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ मॉनिटरिंग कि भाई इनके वाइटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर पल्स ऊपर नीचे हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें एक क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भी शिफ्ट करते हैं।
1: एक बहुत नॉर्मल परिस्थिति में, यानी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति ना हो, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए भी किया।
0: आप उस तरफ ना जा पाए, नॉर्मल सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने से एक बीच का एक रास्ता बना भी है कि ब्रेक कर दिया हमने।
1: हाँ,
0: एक पेशेंट थोड़ा सा बैड हुआ, उसको हमने इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया और उसको स्टेबलाइज कर दिया, और 80-90% केसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं। सर,
1: आपसे बात करते हुए जाने क्यों मुझे कोरोना का समय याद आ गया, क्योंकि आईसीयू की इतनी बातें हुई उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उन्हें तो याद करते हुए भी जरा डर लगता है।
0: बहुत बहुत
1: वो कितना चैलेंजिंग वक्त था आप लोगों के लिए, जो खासतौर पर आईसीयू स्पेशलिस्ट,
0: मेरे ख्याल से जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है ना सर, उसके लिए तो मतलब शुरुआत के दौर में था कि कुछ पता ही नहीं था ना इस बीमारी के बारे में। ये था कि भाई कोरोना हुआ और वो नहीं बचेगा, और शुरू में मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, ट्रायल एरर हिट एंड ट्रायल चल रहा था, भाई ये दे दो ये दे दो। तो हमें याद है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम जो हमने एक अलग से इसको बनाया, भाई कोरोना केयर यूनिट रहेगा, यहाँ पे अलग से पेशेंट रहेंगे, तो वो बहुत स्केरी था, क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता था कि हमारा क्या होगा। हमारा मरीज है, बट दुनिया को कुछ पता नहीं था कि किस तरफ हम जा रहे हैं,
1: हम एक अननोन राक्षस से लड़ रहे हैं।
0: हाँ हाँ, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको किया, ऐसा नहीं, हम लोगों ने बहुत जान बचाई, बहुत सी नहीं बचे वो तो उस पर क्या कमेंट किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से किया उसको, हम लोग उस समय को निकाल पाए।
1: आपके लिए इमोशनली ये कितना मुश्किल होता है कि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं मेडिकल के, जहां जाने बच भी जाती हैं और चली भी जाती हैं।
0: हाँ,
1: तो किसी पेशेंट को खो देना इमोशनली कितना बड़ा झटका होता है आपके लिए, और रोजमर्रा की जिंदगी में कितना भारी पड़ता है।
0: जो हम लोग है तो इंसान ही ना
1: जी,
0: वो पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट वो फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी नहीं बदल जाएगी। और उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, किसी को सगा संबंधी आप स्थिति में आ जाए तो उससे बड़ा नुकसान तो कुछ भी नहीं होता ना। तो बहुत 1-2 साल हमको वही लग जाता है सीखने में कि बात कैसे करनी है, बैड न्यूज कैसे आपको सामने वाले को बताना है, वो टच बनाए रखे हुए, मतलब आप मशीन से तो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया, अब नहीं हो सकता। उसके लिए भी एक हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर से, वो आपको कभी रूड नहीं होना है, भाई आप सामान नहीं बेच रहे ना यार, इंसान की जिंदगी का सवाल है, तो बात भी हमारी हो जाए, उनको हम अंधेरे में भी नहीं रखे, वो भी बताना एक ज़रूरी होता है कि भाई कुछ कुछ बीमारियाँ हैं जिनका कुछ इलाज नहीं है। वो न्यूज़ देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रोज का चैलेंज है सर वो।
1: जी जी,
0: कि कैसे आप उस चीज को रखें कि अभी है तो है, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते
1: जी,
0: बताना तो होता ही है।
1: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। बदलते वक्त के साथ भारत में जो आईसीयू फैसिलिटीज हैं उनमें किस तरह का बदलाव आया है? जब आप पढ़कर निकले थे तब से अब तक भी बहुत बीत गया,
0: आसमान तो जमीन का फर्क हो गया सर। और इसलिए मैं डॉक्टर में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी इग्नोर ना करें, सही बीमारी सही समय पर पकड़ आ गई तो मेडिकल साइंस हमारा इतना तरक्की कर गया है कि आप हर बीमारी में कम से कम एक लाइफ स्टाइल तो आपको अच्छी हम दे ही सकते हैं, भले वो कैंसर का ही मरीज क्यों ना हो। जो जानलेवा बीमारियां हैं, और आजकल खासकर आप देख रहे हैं हार्ट अटैक, अचानक डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कभी ये रहता है कि भाई जांच क्यों कर रहे हैं आप, दोनों चीजें हैं मैं मानता हूँ कि भाई ओवर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, बट आप अगर हमारी तरफ बैठ के देखेंगे ना, तो हमारे दिमाग में रहता है यार ये मेरे पास होके जा रहा है, कुछ बच ना जाए यार, यंग है, फिट है, एज अ डॉक्टर
1: कोई कमी ना रह जाए।
0: हाँ, कल को बाद में

0: सोचना है यार इसका ईसीजी कर लेते भाई, छोटी सी जांच। अक्सर आप देखते होंगे चेस्ट पेन 90% एसिडिटी है, हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज एसिडिटी रहती है
1: जी।
0: हाँ वो सर बड़ा पाव खा लिया था
1: जी,
0: मैं भी मानता हूँ, लेकिन यार वो थोड़ा बेसिक तो चाहिए हमको कि ये चेस्ट पेन है वो एसिडिटी का है या कार्डियक है, ये जो हाथ पाँव में कमजोरी है ये स्ट्रोक है या आपके नहीं सोने की वजह से है या ना खाने की वजह से, ये पहचानने के लिए जांच तो ज़रूरी है बेसिक। ये अवेयरनेस थोड़ा हमको आम पब्लिक तक भी फैलानी है, तो आपकी पहुंच गांव गांव कोने कोने में है, तो ये
1: पूरी दुनिया में।
0: हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा माध्यम है ये कि बेसिक करवा लो यार, बेसिक जांच। और आजकल तो स्वास्थ्य केंद्र में भी हमारे भारत सरकार की तरफ से तो हर चीजें हैं कि आप बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है, कभी भी कमजोरी लग रही है 4-5 दिन ठीक है, उसके बाद लग रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, छोटी सी जांच कर लीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि वो जांच नॉर्मल हो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बिना उसके ये थोड़ा है अभी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अवेयरनेस आ रही है बट अभी भी बहुत ज़रूरत है इसमें, खासकर जो इस तरह की जो हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ये बहुत अर्ली स्टेज में आ गया तो हम लगभग लगभग पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं।
1: आपने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी मुद्दा उठाया कि हमको शरीर के संकेतों को पहचानना,
0: हाँ,
1: और पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंभीर बीमारियों में वो कौन से संकेत हैं जो शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ के इग्नोर करते हैं, इस बारे में थोड़ा तफसील से
0: बहुत बताइए। अच्छा सवाल पूछा सर आपने। देखिए नेचर ना आपको साइन सिम्टम सब देता है, नेचर किसी के साथ ऐसा बेईमानी नहीं करता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो अलग बात है। कोई भी अगर 6-7 दिन मान लीजिए आप थकान लग रही है तो 6-7 दिन, 7 का फिगर रखिए, 7 डेज का एक याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो इस तरह जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं कि भाई कमजोरी लग रही है, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वजन कम लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, शहर में तो ठीक है दिल्ली मुंबई में है तो आप हॉस्पिटल्स में अब तुरंत, लेकिन छोटे जगह पे भी है ना, तो आसपास आजकल स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाके डॉक्टर को बताइए ज़रूर। ये तो नॉर्मल जो सिम्टम है भाई, नींद नहीं आ रही है यार, भूख नहीं लग रही है, हो सकता है नॉर्मल ही होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़ी बीमारी का संकेत भी रहता है। और कुछ चीज़ें जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो उतने जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना है, वो भी मैं, जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं, आपके जॉज में पेन हो रहा है, आपके ईयर में पेन हो रहा है और आपको लग रहा है हेडेक हो रहा है और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। और आजकल खासकर स्ट्रोक में थोड़ा भी कहीं भी आपको कमजोरी, देखिए एक जनरल कमजोरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी अगर विटामिन की कमी है तो सिर्फ दाएं हाथ में कमजोरी नहीं होगी, सिर्फ आपका बाएं उंगली में ऐसा कोई सेंसेशन जा रहा है तो विटामिन की कमी है, सिर्फ वहां नहीं होगा, ये स्ट्रोक का अर्ली साइन हो सकता है,
1: यानी एबनॉर्मेलिटीज पर ध्यान देना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को ना, हर चीज हम सिर्फ शरीर को ही इग्नोर करते हैं, बाकी दीवार से कहीं पानी टपक रहा है तो अरे यार पानी क्यों गिर रहा है, गाड़ी में हवा कम है, हवा का कम है, मोबाइल का ये स्क्रीन क्यों, लेकिन जिस शरीर के सहारे हम सारी जिंदगी निकालते हैं ना, थोड़ा दिखाई ठीक है वो आंखों में लगता है चश्मा, वो इग्नोर करते हैं हम,
1: जो जरूरी बात है उनको
0: वो इग्नोर करते हैं
1: जी।
0: दांत में दर्द ठीक है यार, अरे कभी कभी वो दांत दर्द हार्ट या कार्डियक का भी तरफ आप लेके जा सकता है, बट हम लोग थोड़े इंडियन लोग हैं ना, वो खाने पे डाल देते हैं, ये गलत नहीं है, होता है सर 60-70% वैसे ही रहता है, बट हाँ ये साइन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यार ये पूछने में क्या जाता है, आजकल तो इतने सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप है, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा है, तो आप जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं उनसे आप डिस्कस तो कर सकते हैं, वो आपको गाइड तो कर देंगे।
1: डॉक्टर साहब ये बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बातें हुई और सेहतनामा कार्यक्रम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है गाने, तो यहाँ एक गाने का ब्रेक लिया जाए और आपकी पसंद का पहला गाना सुनवाया जाए।
0: हाँ ये ज़रूरी है, ये डॉक्टर लोग के लिए भी ज़रूरी है और मरीजों के लिए भी ज़रूरी है।
1: जी
0: तो किशोर दा का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी,
0: ये जीवन है इस जीवन का बहुत,
1: देखिए मुझे तो ये पता है कि आप गुनगुनाते हैं तो ऐसे तो नहीं बच के जाइएगा,
0: थोड़ा सा गुनगुना देते हैं
1: जी।
0: ये जीवन है इस जीवन का, यही है यही है यही है रंग रूप,

0: डॉक्टर संदीप, बातें हो रही हैं इंटेंसिव केयर की। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आईसीयू स्पेशलिस्ट की दिनचर्या क्या होती है, आप किस तरह से क्या काम करते हैं?
1: इसमें थोड़ा हमारा थोड़ा कंप्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर बने हैं
0: जी,
1: आप आर्मी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रात की नींद जरूरी है, लेकिन एक कॉल अगर किसी मरीज का आ रहा है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं।
0: तो किसी भी वक्त मुस्तैदी से जाना पड़ सकता है।
1: हाँ, कुछ प्रोफेशन है ऐसे, डॉक्टर हुआ, आर्मी वन हुए, पुलिस वाले हमारे हुए, ये इनका समय का क्या ही करेंगे सर।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बाकी लोग चैन से सोएं तो कोई तो जगेगा।
0: बिल्कुल,
1: बट हाँ, फिर भी हम डॉक्टर हैं हम लोग, तो हमें पता होता है कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो नींद कहाँ कैसे पूरी कर सकते हैं। और जैसे हर आदमी को चाहिए अपने दिनचर्या में थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखना, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना। और आजकल सबसे बड़ा ना फैक्टर हो गया है स्ट्रेस सर।
0: जी जी,
1: ये आप जब मेडिकल की किताबें पढ़ेंगे ना, तो हर बीमारी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिखा रहता है।
0: जी,
1: दिल की बीमारी हो, वो दिमाग की बीमारी हो,
0: थायराइड हो,
1: इवन कैंसर, कोई भी स्ट्रेस में है उसको कोई भी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, ये आप मान के रखिए। और हर को ऊपर वाला कुछ ना कुछ देता है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गार्डनिंग, कुछ ना कुछ एक शौक रखिए और अपने दिनचर्या में से 15-20 मिनट निकालिए उस चीज के लिए, कम से कम डिस्कनेक्ट होइए ये स्ट्रेस से।
0: जी,
1: वो बहुत जरूरी है सर, मेरे ख्याल से इंटेंसिव केयर यूनिट तक बात ही ना आए यार।

0: बाहरी केयर कर लेते हैं
1: जी, मतलब जीवन में एक शांत मन और एक स्वस्थ तन के लिए बहुत जरूरी है कि हम टेंशन से दूर रहें, हम दबावों से दूर रहें।
0: वो जो WHO की डेफिनेशन आती है ना हेल्थ की, उसमें शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है।
1: जी जी,
0: आप स्ट्रेस में हैं तो आप कुछ भी इंजॉय थोड़ी ना कर पाइएगा।
1: बिल्कुल,
0: आपका हेडेक हो रहा है तो आप कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितने भी अच्छे गाने, आप इंजॉय तो नहीं कर सकते ना। किसी भी चीज़ को इंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ होना, किसी भी चीज़ को इंजॉय, पैसा भी है तो किस काम का जो आप हमको ही देने के लिए रखे हैं, मतलब नहीं है ना।
1: अब बिल्कुल,
0: एज अ डॉक्टर तो सबको ये एडवाइस है कि अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने दिनचर्या पे बहुत ध्यान रखें। और बहुत मुश्किल काम नहीं है सर।
1: जी जी,
0: बहुत सिंपल ही, ऐसा कुछ आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। समय पे सोना है, समय पे खाना है, मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करना। दूर तो नहीं रह सकते, कोशिश कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दों पर हो रही हैं। और डॉक्टर संदीप, मैं ये चूंकि बारिश और बारिश के बाद के मौसम के ये दिन जहां पूरे देश में अलग अलग तरह के बुखार फैले हुए हैं जो धीरे धीरे कई परिस्थितियों में गंभीर रूप ले लेते हैं और ICU तक मामला चला जाता है, इस मामले को जरा हमें समझाएं और इससे जुड़ी हुई सावधानियां बताएं।
0: हाँ, ये बहुत अच्छा इस समय को देखते हुए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मलेरिया, डेंगू, जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ तो बारिश का एक मौसम का एक अलग मज़ा है, लेकिन मज़ा तभी तक है जब आप स्वस्थ रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो उसमें भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी साइन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, और ख़ासकर इसमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, थकावट, बारिश के सीज़न में इन सब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ काउंटर से दवा लेके नहीं खानी है सर। बुखार अगर 24-48 घंटे है तो एक बार जरूर संपर्क करें डॉक्टर से। इसमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करें,
1: जिस पर आजकल ध्यान नहीं होता क्योंकि लोग पंखे की हवा में होते हैं, AC में होते हैं। पानी जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड चीज है।
0: डेंगू का ही मरीज है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको आराम कराते हैं, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं और सिम्टम जो है उसकी बुखार वगैरह की दवा दे देते हैं।
1: जी जी,
0: आप देखें ज़्यादातर बीमारी को कुदरत ही ठीक करता, आप सहारा दीजिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि हम सपोर्ट कर दें, बॉडी को सपोर्ट कर दें और नेचर अपने आप आपको क्योर करता है।
1: जी, एक समस्या जो बहुत बड़ी है कि बुखार आया या जुकाम हुआ तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग ले लेते हैं, घर पर पड़ी हुई है।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ, बराबर,
1: पैरासीटामोल उठा के ले लिया।
0: सही बात है
1: ना। तो ये जो चीजें हैं इनसे सावधान कैसे करें लोगों को, इतने सालों से ये बात चली आ रही है पर ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल रुकता नहीं है।
0: ये बहुत बड़ी समस्या है सर, खासकर एंटीबायोटिक्स जो हम लोग मिसयूज गए और उठा के ले आए। यहाँ तो बड़े शहरों में तो ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, बाकी जगह तो आप जाइए और लेके आ जाइए। एक बुखार आया तो एक टैबलेट मान लिया, ठीक है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, दूर है, एक क्रोसिन ले लिया। लेकिन अगर बुखार 24 घंटे से ज़्यादा का है तो एक छोटा सा ब्लड रिपोर्ट तो करना ही चाहिए आज के सिनेरियो में। कोई भी एक्सपर्ट इसीलिए बनाए भी जाते हैं, डॉक्टर्स इसीलिए हैं। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं सर, अभी तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा, बहुत अभी तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, थोड़ा भी है तो आपको एक सही दिशा तो मिल ही जाती है। मैं तो बिल्कुल बोलूँगा ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, उसका बहुत नुकसान होता है और उसके ही परिणाम है कि आजकल आप देख रहे हैं किडनी की बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, लीवर की बीमारियाँ, ये सब ये जो दुरुपयोग है ना, किसी भी चीज़ का आप मिसयूज़ करेंगे तो ये उसका ही परिणाम है कि आजकल बहुत इस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं।
1: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बीते दिनों एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया जाता तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जो व्यक्ति को आगे के लिए दिक्कत दे सकता है।
0: मैं आपको बताऊं कि जब हम मेडिकल में पढ़ते थे 2006 तक की बात बताऊं तो उस वक्त था कि 10-20-25 रुपए के एंटीबायोटिक में आदमी ठीक हो जाया करता था। आज की तारीख में सर जो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, लोग बोलते हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, अरे एक दिन का एंटीबायोटिक की दवा की कीमत ही हो जाती है 10,000। हायर एंटीबायोटिक्स इतने, क्योंकि ये वही है, हमने यूज़ कर करके, मिसयूज़ करके, यूज़ नहीं करके, हमने मिसयूज़ करके उसका इतना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है
1: कि दवाएं असर ही नहीं कर,
0: असर ही नहीं कर रही हैं। आपको हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है, वो महंगी है और प्लस जान के लिए कितना खतरा है एंटीबायोटिक। हमको भी लिखने से पहले दो बार सोचना पड़ता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, जान बचाने के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही डिजास्ट्रस हो सकता है अगर हम अभी नहीं सुधरे। ये अभी भी वक्त है सुधर जाएं, नहीं तो

0: 1929 में पेनिसिलिन, उसी वक्त पेनिसिलिन आई थी जिसने सारी सृष्टि को बचा लिया था, वो स्थिति फिर आने वाली है ऐसा लगता है। जिस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो ही स्थिति, अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं होते तो अभी तक सृष्टि खत्म हो चुकी होती। तो वो स्थिति हम फिर इंसान लोग पैदा ना करें।
1: ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, एक आम आदमी को एक आम भाषा में जरा समझाइए।
0: देखिए रेजिस्टेंस का आपको वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वही एंटीबायोटिक चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन नहीं है, किसी और का इन्फेक्शन है, दवा कुछ और ले रहे हैं, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लेता है कि सिर्फ नॉर्मल एंटीबायोटिक फिर उस पर काम ही नहीं करती है, उसको आप वक्त दे देते हैं। ये नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए कि आपने जैसे अधमरा सांप ना छोड़ते नहीं है, बाद में आपको वो डसने वाला है, वो बैक्टीरिया का वही हाल है। आपने उसको हाफ ट्रीटमेंट पार्शियल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, वो फिर बाद में जब रिबाउंड करता है ना, तो वो एक नॉर्मल, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि बाबा खुद से एंटीबायोटिक थेरेपी तो बिल्कुल मत कीजिए आप
1: जी,
0: स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के निरीक्षण नहीं कीजिए उसको।
1: तो इस बीच में जो बातें हुई उसका सार ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर, केमिस्ट पर जाकर एक तो ओवर द काउंटर दवाएं अपनी तरफ से इलाज ना करें, और दूसरा ये है कि बिना बात के एंटीबायोटिक आधी अधूरे कोर्स कर लेने से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो हम सब इंसानों के लिए बहुत खतरनाक बनता
0: है, बहुत बड़ा इंसानियत के लिए वॉर से ज्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया होने वाले हैं जिस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं चीजें
1: जी।
0: इंटेंसिव केयर यूनिट पे हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो सब पैन रेजिस्टेंस के, कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, एक काम कर रही है सिर्फ। सपोज आने वाले समय वो भी नहीं काम किया
1: तो कुछ भी काम नहीं
0: तो
1: कर,
0: क्या करेंगे हम। ये एक बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है अगर हम सही समय पे हम नहीं सुधरे तो।
1: जी डॉक्टर साहब, अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बहुत।
1: तो बाप की पसंद का अगला गाना कौन सा होगा?
0: एक कर्ज फिल्म का ओम शांति ओम।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा से बातचीत हो रही है। ये जो आईसीयू के विशेषज्ञ हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वापस एक खतरनाक जो जगह आईसीयू उसकी तरफ चलते हैं। जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज आता है, मान लीजिए उसको स्ट्रोक है, अटैक है या कोई और बीमारी है, तो एक आईसीयू में तैनात डॉक्टर क्या प्रोसेस करता है, वो क्या प्रोटोकॉल होता है उसका?
1: सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा होता है कि उसको स्टेबलाइज करना।
0: जी,
1: एक नॉर्मल कि भाई पल्स, बीपी, ऑक्सीजन, पेशाब ठीक से बन रहा है, इतनी चीजें बेसिक हैं। तो फर्स्ट हमारा ये रहता है कि इसको स्टेबलाइज करें। इसको
0: आप लोग बहुत टेंशन के दौरान काम करते हैं, क्योंकि आईसीयू का मतलब है कि बहुत पैनिक में।
1: वो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि पैनिक नहीं होना है,
0: मरीज और उसके साथी भले पैनिक हो,
1: क्योंकि उस स्थिति में फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है।
0: जी, तो
1: स्ट्रेसफुल कंडीशन होती, पैनिक से हम लोग नहीं मतलब बचते हैं कि भाई, क्योंकि अभी हमको हमारे पास टारगेट सामने है कि भाई इसकी जान बचानी है। जितना हमने सीखा है, जितना हमने पढ़ा है, उसका सही उपयोग करके इस आदमी को इस कंडीशन से बाहर निकालना है। फिर हमारी एक विशेषज्ञ की टीम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी का है तो किडनी के स्पेशलिस्ट को, ब्रेन का है तो ब्रेन के स्पेशलिस्ट को, और फिर हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि स्टेबलाइज करते हुए इसकी वजह निकालनी, क्यों इस कंडीशन में पहुंचा। ट्रीट द कॉज हर का रहता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ तो कहां से आ रहा है, यूरिन से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, वो पता लगाना, फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रीट करना। यही बेसिकली इंटेंसिव केयर ही होता है कि आप पहले तो उसको स्टेबलाइज किया, उसके ऑक्सीजन को, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके हार्ट रेट को, फिर पता लगाया एंजियोग्राफी करके भाई किस जगह से क्लॉट है, उसको वहाँ से दूर किया। उसमें भी स्टेजिंग होती है, वो तो बात की चीज़ें हैं, बट रिवार्डिंग भी बहुत है सर। जब आपका मरीज अच्छा होता है तो उससे अच्छा आपको कुछ, फिर वो पैसा दे ना दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जब हंस के उसके परिवार वाले बोलते हैं ना, सर आपने बचा लिया
0: जी,
1: तो उससे बड़ा रिवार्ड हम डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं होता है।
0: और
1: बहुत अच्छा लगता है ऐसा, हमेशा स्ट्रेसफुल जब वो रिजल्ट मिलता है ना उसका, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। आपने अलग अलग शहरों के छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और एक बड़ा अनुभव आपके साथ है, तो अपने करियर की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त आपको याद आ रही हो।
1: 26/11 हुआ था, बहुत दुखद हादसा था और हम लोग उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में थे।
0: ओहो, बिल्कुल आप उसी इलाके में थे।
1: उसी में थे, तो

0: इंटेंसिव केयर में हमारे कई कमांडोज भी आए थे, तो एक कमांडो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उनके सीने में बहुत सी गोलियां लग गई थी, तो हमने उनसे जब छुट्टी हो रही थी तो हमने पूछा, सर कैसा रहा? कहा, सर उतना दर्द तो गोली से नहीं हो रहा जितना दर्द आप जब गोली निकाल रहे थे तब हो रहा था। हमने कहा, सर आप गोली से नहीं, सर उसके लिए हम यूज टू हैं। जैसा आपने पूछा पैनिकी का, वो जब सामने से तो हमारा डर खत्म हो जाता है। वो लगता है इसको टारगेट है, ये हमारे देश का दुश्मन है, इसको खत्म करना है, तो उस वक्त हमको दर्द नहीं महसूस होता। यहाँ पे फिर हम नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी। वो मुझे लगा कि यार, हमने पूछा कि सर आप गोलियों से नहीं डरे, आप ये जरा से टांकों से डर रहे हैं? क्या डर नहीं रहे, लेकिन आपको बड़ा मजेदार एक वाक्य सुनाता हूँ
1: जी।
0: मैं इंटेंसिव केयर में नाइट ड्यूटी में था और रवि साहब एडमिट थे,
1: संगीतकार रवि की।
0: हाँ हाँ, जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर।
1: जी जी।
0: तो रात का वक्त था और मैं उस वक्त अपने ट्रेनिंग में था, तो 1-2 बजे का वक्त था, तो मैं नोट्स डाल रहा था और जैसे इंडियन लोग थोड़ा हमिंग करते हैं ना, ला ला ला ला ला ला, ऐसा करके मैं डाला। तो रवि साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये गाना आपको बहुत पसंद है। मैंने कहा, हाँ बहुत अच्छा, क्या कंपोजिशन सर, पहले के कंपोजर क्या कंपोज करते थे, आपको पता है किसने कंपोज किया है? हमने कहा, हाँ एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि साहब, हैं मतलब रवि साहब, आपने मेरा नाम पढ़ा क्या, बोर्ड पे नाम लिखा होता? हमने देखा, देखा हाँ आपका भी सेम नाम है। मैं सेम नहीं, मैं ही रवि साहब हूँ।
1: अरे क्या बात।
0: तो बड़ा अच्छा लगा उनसे और बहुत सी बातें बताई उन्होंने, बड़े बड़े जो हम तो सिर्फ जो सपनों में सोचते थे, जब रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, हमने पूछा जब ठीक हो गए तो कभी फंक्शन वगैरह में आते थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो बड़े जिंदा दिल इंसान थे,
1: कमाल के इंसान। मेरा भी उनसे एक नाता रहा है और
0: अच्छा अच्छा
1: वो बहुत दिलचस्प किस्से सुना।
0: हाँ हाँ,
1: तो उनके पास एक से बढ़ के एक किस्से थे और खुद गाने भी गाया करते थे।
0: अरे अरे, बहुत कमाल के कलाकार।
1: अभी जब गाने की बारी आएगी तो रवि जी का गाना सुना जाएगा। अभी अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए। आपने बताया कि एक कमांडो आए थे, जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में घायल व्यक्ति, एक्सीडेंट विक्टिम्स हों या बर्न विक्टिम्स हों, इस तरह के लोग आते हैं जो बहुत विभत्स स्थिति में भी होते हैं,
0: अपने
1: उनको कैसे संभालते हैं?
0: मैं सफदरजंग के बंस यूनिट में था जब सरोजनी नगर बम कांड हुआ था।
1: ओ ओ ओ,
0: वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हादसा था वो
1: जी।
0: और उस वक्त हमको याद है कि हम ड्यूटी खत्म करके हमारे 3 या 4 बजे के करीब हम निकल गए थे एक दिल्ली में, हम ड्यूटी ख़त्म करके अपना कनॉट प्लेस में थोड़ा घूमने घामने गए थे। फिर अचानक फ़ोन बजने लगा, हमारे सर का फ़ोन, तुम लोग कहाँ हो? तो उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि ये बम विस्फोट हो चुका है। अंदर से कहा, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी सर कॉल कर रहे हैं। मैं, क्या हो गया सर? बोले, जहाँ भी हो, जितने भी दोस्त हो, सब भाग के सफदरजंग आ जाओ, जो जहाँ भी है, जो सबको फ़ोन करोगे, बहुत डॉक्टर्स की ज़रूरत है इस वक्त। फिर समझ में आया कि भाई बहुत बड़ा बम कांड हुआ है। मेरे ख्याल से, मुझे भी याद नहीं है, बट 200-300 लोग की डेथ हुई थी। और उस वक्त जब बॉडी सर आ रही थी ना, तो मतलब हमारा एक दोस्त था, वो देख नहीं पाया, डॉक्टर होके वो वहाँ पे फेंट कर गया।
1: ओहो।
0: और किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, मतलब वो इतना विभत्स, वो मेरे मतलब आज भी जब मुझे याद करता हूँ तो मेरे इसे रोंगटे खड़े आती है। वो क्या सीन था, मतलब कैसे कैसे करके। और बट ये हमारे बड़ी अच्छी चीज़ है हिंदुस्तान में कि सब लोग, आसपास के सभी लोग, सभी हॉस्पिटल के बगल में एम्स था और मौलाना आजाद, जो भी डॉक्टर जब भी सुना, जिधर से आया वो गाड़ी मोड़ के आ गया। और उस वक्त वो सीन अभी भी नहीं उतरता, कभी भी हम याद करते हैं ना कि वो जो हादसा जो हुआ था, वो बम विस्फोट, वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं उतरता है।
1: ऐसे मुश्किल हालात में भी डॉक्टर जो है अपना संतुलन बना के और लोगों को बचाने का काम करते रहते हैं।
0: ड्यूटी है सर। लेकिन हाँ, अच्छा लगता, मैंने बोलता है जब हमारा मरीज अच्छा होके जाता है, जब कोई ठीक हो जाता है, तो बहुत रिवार्डिंग है सर, उससे बड़ा इनाम और क्या मिलेगा।
1: बिल्कुल, आपने ये वादा किया था कि रवि जी से जुड़ी घटना सुनाने के बाद कि अब उनका कोई गाना सुना जाएगा, तो कौन सा गाना सुना जाए?
0: ऐ मेरे जोहरा जो भी सुनते हैं सर।

मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक जावदा, ओ सनम।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा, अब मुंबई में आप अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं और आईसीयू यूनिट में लगातार काम कर रहे हैं। ये जो नया दौर है, इसने आईसीयू यूनिट को किस तरह से बदला है और आपके काम करने की प्रणाली को किस तरह से बदला है?
1: टेक्नोलॉजी का तो सर बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है, बहुत बहुत फायदा हुआ है। अब काफी एडवांस हो गए हैं हम लोग, मतलब हर फील्ड में, रेडियोलॉजी हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, वेंटिलेटर्स की क्वालिटी हो, और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है हर फील्ड में। इवन हम स्ट्रोक का हम वाक्य आपको बताएं कि एक हम जब बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, एक बैंक के कर्मचारी थे और वो कुछ साइन कर रहे थे और अचानक वो हाथ से पेन गिर गया उनके, तो उनको लगा कि शायद कुछ हुआ होगा। हर आदमी एक पहली बार में कैसे सोच लेगा कि वो स्ट्रोक है, लेकिन वो बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे ही था वो कार्यालय उनका। तुरंत वो लेके आया, उनका वो पूरा राइट साइड पूरा काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने बताया कि जो वक्त की कीमत,
0: बिल्कुल,
1: तो सही समय पे वो आ गए सर और बिल्कुल 100% रिकवर हो गए। अगर वो सही समय पे नहीं आते सर तो वो हाथ उनका हमेशा के लिए चला जाता
0: जी।
1: तो ये है वक्त, फिल्म की बात की आपने, ये है वक्त पे सही समय पे सही जगह पहुंचने का ना, ये है।
0: ये जो क्रिटिकल टाइम है किसी भी गंभीर बीमारी के मरीज को बचाने के लिए, जो एक शुरू के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ये जो वक्त होता है, पूरे देश में आम जनता ये कार्यक्रम सुन रही है। एक इंटेंसिव केयर यूनिट से जुड़े हुए डॉक्टर के तौर पर आप हमें ये समझाएं कि किस तरह से बिना पैनिक हुए फौरन भागना चाहिए और किस तरह से मरीज की मदद करनी चाहिए।
1: आज के सिनेरियो में एक ब्रेन का और एक हार्ट का, दो चीज में आपको बहुत, क्योंकि इसमें अगर वक्त आपने जाहिर कर दिया तो काफी देर हो जाता है। ब्रेन का तो मैंने जैसे जिक्र किया कि कोई भी कहीं भी आपको कमजोरी लग रही हो, बात करने में जुबान लड़खड़ा रही हो आपकी, स्लरिंग जिसको बोलते हैं, विजन में दिखने में कोई दिक्कत हो रही है, ये सब लक्षण को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सर।
0: मरीज तो ठीक है, लेकिन जो मरीज के साथ में
1: साथ वाले वो उनको
0: पास पड़ोस के लोग हैं,
1: हाँ हाँ, और ये जो हमारे यहाँ गुडविल में ही रहता है, जो अपनी पहले थेरेपी, फिर दादा दादी नानी की थेरेपी, फिर बगल वाले दुकानदार की थेरेपी, फिर फोन पे कहीं और से थेरेपी, इसमें जब हम 3.5-4 घंटे निकाल देते हैं जो क्रिटिकल टाइम होता है बचाने का, तो वो बिल्कुल ना करें सर।
0: तुरंत
1: जिस चीज के एक्सपर्ट के पास जाए, इसके लिए बनाया गया। और मैं तो जैसे पहले भी बोला आपके इस इंटरव्यू में कि अब गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुविधाओं

0: में बहुत बढ़ोतरी कर दी है। आप कहीं भी तुरंत संपर्क में आ सकते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कहीं आप डॉक्टर को फोन करें
1: बजाय इसके कि नुस्खे अपनाने की नुस्खे बजाय।
0: वो ठीक है, वो थोड़ा सा छिल गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा पेट खराब हो गया, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इस तरह के वाइटल साइन है, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है,
1: झाग वाग निकल रहा है,
0: हाँ वो तो मिर्गी या सीजर या जो भी लोग समझ, वो उसमें टाइम नहीं खराब करना है सर। और कभी आप डिजीज वाइज इमरजेंसी में कभी आप रखिएगा कि भाई ब्रेन के लिए अलग, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा कि भाई इस वक्त ये मोटा मोटा समझाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि भाई
1: मान लीजिए कि किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, तो अमूमन तो पता नहीं चलता है ना कि ये हार्ट अटैक है, तो ये जो आजू बाजू के लोग हैं, जो उसके पास मौजूद लोग हैं, मान लीजिए कोई सड़क पर ही जा रहा है और ऐसी कोई परिस्थिति होती, तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक हो सकता है और फौरन ले जाए।
0: देखिए, जो सबको पता है चेस्ट पेन, लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, जॉ पेन, ईयर पेन, पसीना आना, और खासकर डायबिटिक पेशेंट इस बात का ध्यान रखें, जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना सर, उनको वो पेन वो टिपिकल महसूस नहीं होता है। जो भी डायबिटीज से सफ़र कर रहा है ना, तो बीच बीच में अपनी जांच करते रहे, अगर उसको पसीना आ रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, लेकिन उसको टिपिकल हो सकता है डायबिटीज पेशेंट को वो टिपिकल चेस्ट पेन ना हो जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट को होता है, तो वो थोड़ा एक ट्रिकी पॉइंट है जो भी डायबिटीज सफ़र कर रहे हैं लोग उनके लिए। लेकिन कोई भी ऐसी जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, जॉ पेन, पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब चीज़ों को कभी टिंगलिंग हाथ से बाएं हाथ में, बट आप राइट साइड पेन को भी इग्नोर ना करें। हमको पता नहीं कि लेफ्ट का ही पेन हार्ट का है, वो कभी कभी बैक पेन भी हार्ट का होता है, और यूजुअली अगर आप टिपिकल देखेंगे तो पेशेंट पेन जो है एक जगह लोकलाइज नहीं होता, वो रेडिएट कर रहा होता है। ऐसा नहीं, वो नहीं हो सकता, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं रह गया अभी, अभी बीमारियां काफ़ी अपना स्वरूप बदल के भी आ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा है कि पेन अगर रेडिएट हो रहा है जॉ की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये अलार्मिंग साइन है, हार्ट से जुड़ी ये अलार्मिंग साइन। उसमें और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं
1: जी,
0: उसको कभी लेंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ अलार्मिंग है, आपको तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र एक चिकित्सक, जो भी डॉक्टर है जो इससे जुड़ा हुआ है, उससे संपर्क करना चाहिए।
1: स्ट्रोक से जुड़ी हुई क्या सिग्नल्स होते हैं?
0: जैसे कोई भी वीकनेस, कोई भी हाथ पर कहीं भी वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका अगर चेहरे की सिमेट्री आपको जो है चेंज लग रही है, फेशियल डिविएशन, कोई एंगल माउथ
1: टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है,
0: आप जो आपने पहले जिस आदमी को देखा है और आपने नोटिस किया कि यार उसका चेहरे में कुछ तो
1: विरूपता आ रही है,
0: सिमेट्री कहीं भी जाती है ना सर,
1: तुरंत समझ जाना चाहिए। हाँ,
0: कहीं भी सिमेट्री, जो नेचर के जो बनी हुई सिमेट्री है, वो अगर डिस्टॉर्ट हो रही है, डिविएट हो रहा है, आंख ऊपर की तरफ जा रही है, आंख को दिखने में दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रहा है, दो चीज दिख रही है, ये सब जो भी साइन है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है सर, शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है डॉक्टर।
1: इन दोनों परिस्थितियों में कितना वक्त होता है मरीज के पास, कितनी जल्दी पहुंचाना चाहिए?
0: देखिए, जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप टाइम खराब करते हैं, फिर फोन किया, उससे बात किया, उसने बताया फलाने को हुआ था, तो ऐसा नहीं, नहीं बाबा, आसपास पहले वहां पहुंच जाए, आप एक्सपर्ट के पास पहुंच जाइए, वो आपको गाइड करेगा ना, वो किसी भी रास्ता भूल जाते हैं, अगर पुलिस वाला कोई खड़ा है सिग्नल, वो सबसे अच्छा बताता है ना हमको, आप अनजान शहर में हैं और एक पुलिस वाला जो आप रास्ता भटक गए उससे पूछे, आम आदमी डॉक्टर तो नहीं होता है, आप साइन सिम्टम आपको जैसे ही लगे कि बाबा ये कुछ तो मेरे साथ एबनॉर्मल है, ऐसा पहले नहीं होता, उस पर मत डालिए कि मैं यार आज खाना भूल गया, आज नींद नहीं हुई, उस पर मत, ठीक है भगवान करे वही हो, मैं भी चाहता हूँ, डॉक्टर भी चाहते, भगवान ही नॉर्मल ही हो, लेकिन 99 में एक भी अब नॉर्मल है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना सर।
1: बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं, और यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो कौन सा गाना होगा?
0: यहाँ पे हम रफ़ी साहब का एक गाना सुनेंगे।
1: ठीक है,
0: आज मौसम बड़ा बेईमान।
1: क्या बात है, आप गुनगुनाते हैं तो इस बार फिर मैं चाहूंगा कि आप गुनगुनाएं।

0: बच्चे के होते ना रॉक स्टार बनना है बस,
1: हाँ
0: गिटार वगैरह बजाना, गाने लिखना। और वहाँ से वो क्रिएटिविटी तो थी, लिखता भी था, गाने भी बनाता था, स्केचिंग भी बनाता था, और
1: हाँ
0: हम सभी बहुत खुश हैं उसके लिए कि आज उसको वो मुकाम मिला है जिसको वो जो डिजर्व करता है।
1: क्या बात है। तो मतलब एक डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए दूसरे डॉक्टर साहब का जिक्र निकल आया
0: क्या
1: क्या बात है। अच्छा, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद इस पर बात करनी चाहिए, और वो आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं, जाहिर है कि परिवार जो है वो बहुत पैनिक होता है, बहुत चिंता में होता है, पर आईसीयू एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद करता है। वहाँ का एक खास अनुशासन और संयम होना चाहिए जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
0: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, दिक्कत क्या होती है कि वो जो जोन होता है उसको सबसे हमारा रहना कि उसको इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं। अक्सर मैं आपका पॉइंट समझा कि रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया गया, बात सही है कि कोई स्ट्रेस में है अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी, बट वो फॉर द टाइम बीइंग ना हमको उसको शांत रखना है, उसको स्ट्रेस फ्री रखना है, और सब उससे भी ज़्यादा हमको इन्फेक्शन फ्री रखना है,
1: बिल्कुल, सबसे
0: तो
1: बड़ी
0: सबसे
1: जिम्मेदारी
0: बड़ी
1: है।
0: जिम्मेदारी है। तो हम बोल भी देते हैं कि यार सेफ्टी फर्स्ट, अगर छोटा बच्चा आग छूना चाहे तो माँ उसको छूने नहीं देती है ना, वो बच्चा रोएगा, बट ठीक है हमको पता है छू देगा तो उसका नुकसान है। वैसे ही कुछ हमारा रहता है कि भाई हम मानते हैं आपको बुरा लग रहा है कि आपको मिलने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप उस कंडीशन में हमारी प्रायोरिटी है वो मरीज की सेफ्टी है,
1: उसकी
0: हम
1: जान बचाना
0: उनकी
1: है।
0: जान बचाना है। आपको देखिए वो इमोशनल होगा या आप उसको देख के इमोशनल होंगे, आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है, और जो कुछ है हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, बीच बीच में बताते रहते हैं क्या है क्या नहीं। बट हाँ, आपकी बात सही है कि हर आदमी देखना चाहता है कि भाई किस अवस्था में मेरा मरीज है, वो उसके भले के लिए, जैसे माँ अपने बच्चे को आग नहीं छूने देती ना।
1: लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि
0: हाँ
1: डॉक्टर्स
0: हाँ
1: अपनी जिम्मेदारी निभा रहे
0: निभा रहे
1: हैं
0: हैं, और उसके
1: और
0: भलाई
1: आईसीयू
0: के
1: में एक
0: लिए
1: खास तरह का बर्ताव किया
0: बताओ
1: जाए,
0: किया जाए।
1: और जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा मान के बाहर रुका जाए,
0: हाँ, और
1: इंतजार किया जाए।
0: डॉक्टर कम्युनिटी से मैं ये भी कहूँगा भाई थोड़ा पोलाइट रहते हैं, पोलाइट कभी कभी, देखिए हम इंसान ही हैं,
1: जी,
0: कभी कभी हो सकता है कि हमने जो है बहुत जो उम्मीद थी उनसे जितने प्यार से बात करना चाहिए शायद मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात किया, तो वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि जितने प्यार से वो उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर साहब बोलेंगे शायद उतने प्यार से नहीं बोला मैंने, लेकिन इंटेंशन कभी हमारा वो नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत दिलचस्प बातें हुई और आपने कुछ बहुत ज़रूरी मुद्दे हमारे श्रोताओं को समझाए आज की इस बातचीत में। विविध भारती के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको मौका देने के लिए, और एक डॉक्टर की तरफ से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
1: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की ये बातचीत। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें मेडिकल से जुड़ी हुई हुई। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे पता है और वो ये है कि हनुमान अंश फिल्म के जो निर्देशक हैं वो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में थे।
1: हाँ हाँ, डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी हमारा दोस्त भी है, हमारा जूनियर भी है, और उसके लिए बहुत खुशी है। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत शानदार उसने ये फिल्म बनाई है। और लोग बोलते हैं कि सफलता सफलता उसने जो आज हम उसकी सफलता देख रहे हैं, उसने जो 20 साल मेहनत की है उसका ईश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। और बातें मुलाकात होती है, बट आपके माध्यम से भी हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। बहुत बेहतरीन काम किया है उसने।
0: क्या बात है।
1: और इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे मुंबई लाने वाला विशाल ही था।
0: अच्छा अच्छा।
1: मैं दिल्ली में था और मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में, तो कहा चलो बस मुंबई चलते हैं। मैं भी गा लेता हूँ, वो मजाक मिला, चलो आपको कुमार सानू बना दूंगा यार, आप चलो तो मैं तो कंपोजर हूँ ही।
0: अच्छा, अब वो तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे।
1: हाँ हाँ, और वो गाने लिखता भी था, कॉलेज में भी बहुत अच्छा हमारा एक छोटा सा म्यूजिकल बैंड टाइप का था।
0: अच्छा।
1: तो पहले वो हर जैसे यंग

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी बहनें और श्रोतागण स्वीकार करें उनके रेडियो से घी शिल्पा का सप्रेम नमस्कार। बहनों, कल से प्रारंभ हो गए हैं शारदीय नवरात्रे। पूरा देश आदिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना के पावन उत्सव में डूबा हुआ है, लेकिन शारदीय नवरात्रि केवल 9 दिनों के व्रत, पूजा पाठ या गरबा पंडालों तक सीमित रहने का उत्सव नहीं है। यह पर्व हमें आत्मशुद्धि, सामाजिक जागरण और विशेष रूप से नारी शक्ति के सम्मान का संदेश देता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण सन्निस्थितः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बहनों, आज हम केवल पूजा पाठ की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे माँ दुर्गा के उन 9 रूपों के पीछे छिपे उस गहरे संदेश को, जो आज की महिला के अस्तित्व, उसके संघर्ष और उसके सशक्तिकरण की कहानी को बयां करते हैं। माँ का प्रथम रूप है शैलपुत्री, जो संदेश देती है दृढ़ संकल्प का। हिमालय की पुत्री शैलपुत्री हमें सिखाती है कि जीवन में परेशानियां कितनी भी बड़ी हों, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अड़िग और दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। माँ का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। यह रूप संदेश देता है कि शिक्षा, ज्ञान और लगातार आगे बढ़ने की साधना ही महिला को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाती है। माँ का तृतीय रूप माँ चंद्रघटा, सौम्यता और साहस का संतुलन है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। यह सिखाता है कि स्वभाव में सौम्यता और शांति रखें, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस भी हमेशा तैयार रखें। माँ का चतुर्थ रूप माँ कुष्मांडा, सृजन की शक्ति। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा बहनों इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि का सृजन नारी के बिना असंभव है। यह जीवन देने वाली और उसे संवारने वाली शक्ति है। माँ का पंचम रूप है माँ स्कंद माता, प्रतीक है ममतत्व और नेतृत्व का। कार्तिकेय की माता के रूप में यह रूप दिखाता है कि एक महिला ममतामयी माँ भी है और समय आने पर सही मार्गदर्शन करने वाली एक कुशल लीडर भी है। माँ का षष्ठम रूप है बहनों माँ कात्यायनी, महिषासुर का वध करने वाली माँ कात्यायनी आज की बेटियों को संदेश दे

सकती है कि वे अपने भीतर के डर को खत्म करें और समाज की हर बुराई का डटकर सामना करें। सप्तम रूप है माँ कालरात्रि, संकट मोचन रूप, अंधकार और शत्रुओं का नाश करने वाली। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि समय आने पर महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं चंडी का रूप धारण करना होगा। हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। हम बात कर रहे हैं माँ के रूपों की, तो माँ का अष्टम रूप है बहनों माँ महागौरी। यह रूप अंतरात्मा की पवित्रता, करुणा और समाज में शक्ति बनाए रखने की प्रेरणा देता है। माता का नवम रूप है माँ सिद्धिदात्री। माता का यह रूप सिद्धियों को देने वाला है। यह संदेश देता है कि जब महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं तो वह समाज को हर क्षेत्र में पूर्णता और सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाती है। बहनों, आज हमें यह समझना होगा कि जब तक हम इन नौ रूपों के संदेशों को अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक कन्या पूजन अधूरा है। समाज का विकास तभी संभव है जब हम अपनी बेटियों को जननी, दुर्गा और लक्ष्मी मानकर उनका सच्चा सम्मान करें। पंडालों में सजी है मूरत, घर घर में उजियारा है। पंडालों में सजी है मूरत, घर घर में उजियारा है। नवरात्रि के पावन दिन है, गूंज रहा जयकारा है। पर सोचो जरा, इन नौ दिनों में माँ क्या संदेश सुनाती है। मिट्टी की मूरत से उठकर वो हर नारी में मुस्काती है। मिट्टी की मूरत से उठकर वो हर नारी में मुस्काती है। शैलपुत्री बन जो बेटी जीवन में कदम बढ़ाती है, वो अड़िग हिमालय जैसी होकर हर मुश्किल से टकराती है। ब्रह्मचारिणी का रूप लिए जब ज्ञान की राह पर चलती है, बनकर कड़े तपोबल की मूरत, वो खुद अपनी किस्मत बुनती है। जब धारण कर चंद्रघटा वो धीरे शौर्य दिखाती है, शांत मधुर बहती नदियां संकट में बिजली बन जाती है। कुष्मांडा की मंद हंसी से सृष्टि का आंचल पलता है, नारी के ही भीतर तो यह सारा संसार पनपता है। स्कंद माता का रूप लिए ममता की अविरल धारा है, स्कंद माता का रूप लिए ममता की अविरल धारा है। आंचल में जिसके अमृत है, बाहों में ब्रह्मांड सारा है। पर मत समझो अबला उसको, जब अत्याचार बढ़ जाता है, तब कात्यायनी का सिंहनाद धरती अंबर कपाता है। भय का तमस मिटाने को जब कालरात्रि बन जाती है, पापी दुष्ट और कुरूप सोच को पल में मार गिराती है। पाकर सम्मान और स्नेह सदा वो महागौरी सी पावन है, है दया क्षमा और शांति वही जिससे महकता उपवन है। जब मिले उसे पूरा अवसर, वो सिद्धिदात्री कहलाती है। विज्ञान खेल या सीमाओं पर वो अपनी धाक जमाती है। सुनो बहनों, सुनो श्रोताओं, सुनो रे दुनिया, माँ की पूजा तब पूरी होगी जब समाज की हर एक बेटी भय और बंधनों से दूर होगी। मत करो दिखावा पूजन का अगर मन में मैल छुपाया है, मत करो दिखावा पूजन का अगर मन में मैल छुपाया है। नारी का सम्मान ही सच्ची पूजा है, माँ ने यही सिखाया है। नारी का सम्मान ही सच्ची पूजा है, माँ ने यही सिखाया है। बहनों, नवरात्रि के दिनों के इसी संदेश के साथ मिलकर लगाते हैं माँ का जयकारा और बातों को देते हैं यही विराम।

0: सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: जय माता दी। बहनों, आज हम बात कर रहे हैं माँ शक्ति के स्वरूप की। भारतीय संस्कृति में अगर हम बात करें शक्ति पूजा की, तो शक्ति पूजा का महत्व अत्यंत गहरा और प्राचीन है, जो सृष्टि के मूल तत्व के रूप में नारी ऊर्जा को स्थापित करता है। भारतीय सनातन परंपरा में शक्ति को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को संचालित करने वाली परम ऊर्जा और चेतना का प्रतीक माना गया है। मैनो, हमारी संस्कृति की यह खूबसूरती है कि जहाँ दुनिया के तमाम दर्शन ईश्वर को केवल पुरुष रूप में देखते हैं, वहीं सनातन संस्कृति में ईश्वर को माता के रूप में साधिकार स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद का वाक सूक्त हो या पुराणों की कथाएं, हर जगह आदिशक्ति को ही पूरे ब्रह्मांड का मूल कारण बताया गया है। यदि हम देखें वैदिक काल की ओर, तो वह समय था जब समाज में स्त्री को सर्वोच्च और आदरणीय स्थान प्राप्त था। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियों का शास्त्रार्थ इस बात का प्रमाण है। मैनो, शक्ति पूजा वास्तव में इसी नारी शक्ति के सम्मान की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। साथ ही शक्ति पूजा संपूर्ण भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोती है। असम का रहस्यमय कामाख्या धाम हो, कोलकाता की भव्य और जग प्रसिद्ध दुर्गा पूजा हो, या उत्तर से दक्षिण तक मनाए जाने वाला नवरात्रि का पावन पर्व, ये सभी उत्सव देश के सांस्कृतिक अंतःकरण को दर्शाते हैं। बनो, नवरात्रि के 9 दिनों में प्रकृति की आराधना के साथ साथ शक्ति के 9 रूपों की उपासना भी की जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि

व्यक्ति केवल विनाशक नहीं बल्कि वह ममतामयी माँ भी है जो सृष्टि का पोषण करती है। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि शक्ति के बिना सब कुछ निष्क्रिय है, यहाँ तक भी कि शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है, अधूरे हैं। शिव परम चेतना है तो शक्ति उनकी क्रियात्मक ऊर्जा है जो सृष्टि का निर्माण पालन और संहार करती है। उपनिषदों और शाक्त ग्रंथों के अनुसार प्रकृति के 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य का तेज, मनुष्य की बुद्धि व प्राण ऊर्जा, यह सब कुछ आदि माया आद्य शक्ति का ही प्रकटीकरण है। और बहनों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना गया है। कहा भी गया है, यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं पर देवताओं का वास होता है। इसका मूल आधार यही शक्ति पूजा है जो समाज में नारी के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव जगाती है। बात करें हम आज के बदलते दौर और शक्ति पूजा की, तो आज के समय में शक्ति पूजा की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। आज समाज को तोड़ने वाले दुर्विचार, ईर्ष्या और सामाजिक विघटन ही आधुनिक युग के रक्त बीज और महिषासुर है। इन बुराइयों से लड़ने के लिए हमें अपने भीतर की चेतना और विवेक रूपी शक्ति को जागृत करना होगा। मैनो सच्ची शक्ति उपासना तब तक अधूरी है जब तक हम अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर, साहसी और संस्कारवान न बनाए, ताकि वे किसी भी संकट का सामना खुद कर सके। इसके साथ ही आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि परिवार में बेटों को भी लड़कियों का सम्मान करना और उनकी रक्षा करने का संस्कार देना चाहिए। आज के समय की सबसे बड़ी शक्ति पूजा यही है। जब समाज की हर नारी सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त होगी, तभी हमारी शक्ति उपासना सच्चे अर्थों में सार्थक होगी। तो श्रोताओं, आइए इस पावन अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाएंगे, नारी शक्ति का आदर करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक ऊर्जा का योगदान देंगे। इसी संदेश के साथ बातों को देते हैं विराम और लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे उपवास के कुछ व्यंजन।

0: जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: मनु, नवरात्रि में उपवास रखने का अत्यधिक धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है, जो मनुष्य के तन, मन और आत्मा को शुद्धि करता है। उपवास का अर्थ होता है उप का मतलब पास और वास का मतलब होता है रहना, जिसका सीधा तात्पर्य है भगवान के समीप समय बिताना। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ नए स्वादिष्ट झटपट बनने वाले व्यंजन, जो आपके उपवास के दिनों को आसान और जायकेदार बना देंगे। मैनू, आज हम आपको पूरा मील बताएंगे, ब्रेकफास्ट के भी बताएंगे आपको कुछ व्यंजन, मेन कोर्स के भी बताएंगे और साथ में बताएंगे स्वीट डिश। तो सबसे पहले बताते हैं कुछ स्नैक्स और ब्रेकफास्ट के व्यंजन, बहुत ही आसान है इनको बनाना। सबसे पहले हम आपको बताते हैं साबूदाना पनीर टिक्की बनाना। इसे बनाना बहुत आसान है। भीगे हुए साबूदानों में मैश किया हुआ पनीर, उबले हुए आलू, भुनी हुई मूंगफली का चूरा, हरी मिर्च, सेंधा नमक मिलाएं। टिक्की का आकार देकर इन्हें हल्के घी में कुरकुरा होने तक शैलो फ्राई करें। यह प्रोटीन से भरपूर एक बेहतरीन नाश्ता है। मैनू, हमने इसमें आपको जो भी बताया है सामग्री, इसमें हमने आपको बताया नहीं है कि आपको कौन सी सामग्री कितनी डालनी है। आप अपने हिसाब से किसी भी सामग्री को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम आपको बताते हैं इंस्टेंट व्रत चीला बनाना। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए समा के चावल का आटा या कुट्टू का आटा। इसमें हरी मिर्च, अदरक, उबले हुए कद्दूकस किए हुए आलू, मूंगफली का पाउडर और हरा धनिया मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें। तवे पर थोड़ा सा घी लगाकर इसे चीले की तरह फैलाकर दोनों तरफ से सेक लें। इसके अलावा बहनों, नाश्ते में आप फलाहारी मखाना मूंगफली कटलेट भी बना सकती हैं। भुने हुए मखाने और मूंगफली को दरदरा पीस लें। इसमें उबले हुए आलू, सेंधा नमक, काले मिर्च मिलाकर कटलेट का आकार दें और तवे पर कम घी में सेक लें। बहनों, ये सभी नाश्ते के व्यंजन पौष्टिक भी हैं और स्वादिष्ट भी हैं। अब हम आपसे बात करते हैं मुख्य भोजन, मेन कोर्स की। इसके लिए आप बना सकती हैं फलाहारी डोसा। समा के चावल लें और साबूदाना लें। इनको पीसकर रात भर या कुछ घंटे भिगोकर हल्का खट्टा बैटर तैयार कर लें। बस अब इस बैटर को तवे पर फैलाएं, कुरकुरा डोसा बनाएं और नारियल की चटनी के साथ खाएं। इसके अलावा बहनों, आप कुट्टू की दही वाली सब्जी भी व्रत में बना सकती हैं। आपको इसको बनाने के लिए क्या करना है कि खट्टे दही में थोड़ा सा कुट्टू का आटा घोल लें। कढ़ाई में जीरा और हरी मिर्च का छौंक लगाकर उबले हुए आलू डालें, फिर दही का घोल मिलाकर धीमी आंच पर

यह पारंपरिक आलू रस्सेदार का एक नया और गाढ़ा विकल्प है। बहनों, हम हमने नाश्ता भी कर लिया है, अब हमने खाना भी खा लिया है, तो अब क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। उपवास में तुरंत एनर्जी देने के लिए आप खजूर और अखरोट की बर्फी बनाकर खा सकती हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत झटपट बन जाती है। आपको क्या करना है, खजूर के बीज निकालकर उन्हें आप पीस लें और बारीक कटे अखरोट के साथ हल्के घी में भूनकर थाली में जमा दें। इसमें आपको चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं है और बन गई है आपकी खजूर और अखरोट की बर्फी। बहनों, माँ के नवरात्रों में आप अगर उपवास रख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। फिलहाल हमने इतना कुछ बना लिया है, आप और हम थक तो ज़रूर गए हैं, तो क्यों ना इस गाने के साथ अपनी थकान को हम मिटाएं।

0: सब।
1: पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट, इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

स्टूडियो की घड़ी बहनों मुझे कर रही है इशारा, जाते जाते बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, कुमकुम भरे कदमों से आए माँ दुर्गा आपके द्वार, कुमकुम भरे कदमों से आए माँ दुर्गा आपके द्वार, सुख संपत्ति आपको मिले अपार। नवरात्रि की शुभकामनाएं करें स्वीकार। इसी के साथ दीजिए अपने रेडियो से शिल्पा को जाने की अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी अलवर का। ये सर इसका चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त राजश्री शर्मा। कहते हैं हर नए दिन के साथ हमें एक नया मौका मिलता है, कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर करने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। तो चलिए इसी तरह की कुछ दिलचस्प और काम की बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी उलझन परेशानी नहीं होती, बल्कि हमारे पास मौजूद बहुत सारे विकल्प होते हैं। हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस रास्ते को चुनना है, किस बात के लिए हाँ कहनी है और किसके लिए ना, बस इन्हीं सवालों में हम अपना कीमती समय कितना निकाल देते हैं पता ही नहीं चलता। जरा सोचिए, जब हमारे पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े होते हैं, तब भी हम अलमारी के सामने खड़े होकर सोचते रहते हैं कि आज पहनना क्या है। लेकिन जब सिर्फ दो कपड़े होते हैं तो फैसला बड़ी आसानी से हो जाता है। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। कई बार हम इसलिए परेशान नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हमारे सामने बहुत कुछ होता है। एक रास्ता चुनते हैं तो दूसरे रास्ते के छूट जाने का डर सताता है। एक फैसला लेते हैं तो मन में बार बार ख्याल आता है कि कहीं दूसरा फैसला बेहतर तो नहीं था। और इसी उलझन में हम उस चीज का आनंद लेना भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है। दोस्तों, विकल्प होना अच्छी बात है, लेकिन हर विकल्प को परखते रहना और हर फैसले पर शक करना हमें मानसिक रूप से थका देता है। कभी कभी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमें नए रास्ते खोजने से ज्यादा किसी एक रास्ते पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। जैसे करियर में ही देख लीजिए, कोई व्यक्ति एक नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन साथ साथ में 10 दूसरी परीक्षाओं के बारे में भी सोच रहा है। कभी लगता है ये कर लूं, कभी लगता है वो कर लूं। नतीजा ये होता है कि मेहनत तो बहुत होती है लेकिन ध्यान बटा रहता है। वहीं जब इंसान अपनी प्राथमिकता तय कर लेता है और पूरी लगन के साथ उस दिशा में आगे बढ़ता है तो उसका सफर थोड़ा सरल हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं होने चाहिए, बल्कि बात ये है कि हर विकल्प को अपने सामने खुला कर रखकर देखिए कि बस सवाल पूछिए कि मेरे लिए इस समय सबसे जरूरी क्या है। जब इसका जवाब मिल जाए तो फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। और हाँ, हर फैसला जिंदगी भर के लिए नहीं होता। कुछ फैसला हमें अनुभव देते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ हमें हमारी असली मंजिल के करीब ले जाते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमेशा ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना, कुछ फैसलों पर टिक जाना और अपने चुने हुए रास्ते पर भरोसा करना ही काफी होता है, क्योंकि

सच तो ये है कि कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं होते और जब मन बार बार भटकने की बजाय चुनी हुई राह पर चलना सीख जाता है। तो दोस्तों अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों आज है सोमवार और आज हम बात करते हैं करियर से रिलेटेड। अगर आप भी किसी बड़ी कंपनी के साथ काम सीखकर अपने करियर की शुरुआत करना चाहती हैं तो आज ये जानकारी आपके लिए काफी काम की हो सकती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में अप्रेंटिस की 335 पदों पर भर्ती निकली है। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी। दोस्तों इस भर्ती के तहत अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस सहित अलग अलग श्रेणियों में प्रशिक्षण का अवसर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन की तारीखों की। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और 4 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। यानी इच्छुक उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का मौका अभी है। योग्यता की बात करें तो पद के अनुसार ITI संबंधित विषय में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी गई है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता की और आयु सीमा जरूर जांच ले। अब सबसे जरूरी सवाल, आवेदन करना कहाँ है? तो दोस्तों इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.iocl.com पर जाएं। इस वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप सेक्शन पर इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये अप्रेंटिस प्रशिक्षण का अवसर है, स्थायी नौकरी की गारंटी नहीं। इसलिए किसी भी तरह की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। तो दोस्तों अगर आप निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं तो अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT मद्रास से रिसर्च करने का सपना देखते हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए खास है। IIT मद्रास में PhD और MS बॉय रिसर्च प्रोग्राम के लिए जनवरी 2027 में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आवेदन की जरूरी तारीख। इस भर्ती नहीं बल्कि शोध कार्यक्रमों के लिए प्रवेश ऑनलाइन आवेदन की तारीख है 30 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ले। अब बात करती हैं आवेदन कर कौन सकता है। IIT मद्रास में इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन, मानविकीय और सामाजिक विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शोध करने के अवसर मिलते हैं। PhD करने के लिए सामान्यतः संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या निर्धारित पात्रता के अनुसार अन्य योग्यताएं जरूरी होती हैं। वहीं MS बॉय रिसर्च के लिए भी संबंधित विषय की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। कुछ विषयों में

आवेदन कर कौन सकता है? आईआईटी मद्रास में इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन, मानविकीय और सामाजिक विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शोध करने के अवसर मिलते हैं। पीएचडी करने के लिए सामान्यतः संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या निर्धारित पात्रता के अनुसार अन्य योग्यताएं जरूरी होती हैं। वहीं एमएस बॉय रिसर्च के लिए भी संबंधित विषय की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। कुछ विषयों में स्नातक के बाद डायरेक्ट पीएचडी का विकल्प भी उपलब्ध है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। इसके बाद विभाग के अनुसार लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और या इंटरव्यू के माध्यम से चयन प्रक्रिया किया जा सकता है। इसलिए आवेदन से पहले अपने विषय की पात्रता और चयन प्रक्रिया जरूर जांच लें। अब सवाल है कि फॉर्म भरना कहाँ है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको आईआईटी मद्रास की आधिकारिक रिसर्च एडमिशन पोर्टल research.iitm.ac.in पर जाना होगा। तो अगर आप शोध के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं और अपने विषय में गहराई से काम करना चाहते हैं, तो ये अवसर आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी करें। दोस्तों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई इन्हें 24 घंटों में अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ जाता है। कोई दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी सोचता रह जाता है कि आखिर आज किया क्या, आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका एक बड़ा कारण है टाइम मैनेजमेंट, यानी अपने सपने का सही इस्तेमाल करना। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कभी कभी सच ये होता है कि हमारा समय छोटी छोटी चीजों में बढ़ जाता है। कभी मोबाइल पर रील देखते हुए, तो कभी जरूरी काम को कल पर डालते हुए, और जब काम पूरा होने का समय आता है तो हम जल्दबाजी करने लगते हैं। दोस्तों, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हम हर समय काम करते रहें, जरूरी ये है कि हर काम सही समय पर काम करें। इसके लिए एक छोटी सी आदत अपनाई जा सकती है। हर सुबह अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय कर लीजिए। पहले उन कामों को पूरा करने की कोशिश कीजिए जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मोबाइल और दूसरी चीजों के लिए भी समय तय करें, ताकि आपका ध्यान बार बार ना भटके। और हाँ, हर काम को कल पर ना टालना बंद कर दे, क्योंकि आज का एक छोटा सा प्रयास कल की बड़ी सफलता बन सकता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने लिए समय निकालना भी भूल जाएं। परिवार के साथ वक्त बिताना, आराम करना और अपनी पसंद का करना भी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। तो दोस्तों, आज से समय को सिर्फ गुजारने मत दीजिए, उसका सही इस्तेमाल करना सीखिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। लेकिन आज के समय का सही इस्तेमाल करके हम अपने आने वाले कल को बेहतर जरूर बना सकते हैं। याद रखिए, समय को मैनेज करना दरअसल अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा देना है। तो दोस्तों, आप सुनते हैं ये गीत।
5: अभी कौन सा लगाया था? अच्छा, शाम होने लगी।
4: हाँ,
5: अब लगाओगी कौन सा?
4: जल्दी से लगा देते हैं इसको।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी अलवर का। ये सरिस का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे

0: जिससे दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं हमारे आज शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, आज शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 हिंदी में और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 7:00 कार्यक्रम ग्राम भारती में आज चर्चा का विषय रहेगा चने की उन्नत खेती। साथ ही एक भेंटवार्ता हम अपने किसान भाइयों को सुनवाएंगे, रबी फसलों की बुवाई में ध्यान देने योग्य बातें। वार्ताकार होंगे श्री हरिदत्त शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी मौजपुर लक्ष्मणगढ़। साथ ही जानकारी दी जाएगी फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और प्रबंधन, और क्यों पत्ते पीले हो जाते हैं के बारे में, और होगा बाजार भाव और मौसम की जानकारी। 7:30 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 8:15 लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे नरसिंह शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत। 9:45 समाचार संध्या हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:00 अंग्रेजी में समाचार भी आप दिल्ली केंद्र से ही सुन सकेंगे। 9:15 विविध भारती के कार्यक्रम हम मुंबई से रिले करेंगे। 11:00 होंगे हिंदी में समाचार, जिसे आप दिल्ली केंद्र से सुन सकेंगे। श्रोताओं, ये थी हमारे आज शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, कल सवेरे 8:30 बजे आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का भाग 1392। 9:10 पर कल सवेरे हम आपको सुनवाएंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला।

श्रोताओं, कल शाम 5 बजे महिला जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे बेहतर की दुआ करें, बदतर की तैयारी करो और विश्व आपदा नियंत्रण दिवस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही नींद ना आए तो बिस्तर पर लेटे रहें या उठ जाएं, इस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। 5:30 बजे युवाणी कार्यक्रम में आज की बात में आप सुनेंगे साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। रोचक जानकारी में आप जानेंगे इंसान का खास साथी बांस और होंगे थीम सॉन्ग्स। कल 7:00 बजे कार्यक्रम किसानवाणी हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे राजा रूपचंद की कथा, कलाकार होंगे किरोड़ी मल जोगी और साथी। श्रोताओं, यह थी हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आप सभी को नवरात्रि की दूसरे दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। और आइए सुनते हैं माता का किए भेंट।

उदित नारायण, नेहा कक्कड़, पलक मुच्छल और राजा हसन को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी लव यात्री

और इसी के साथ हमारा ये फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद राजस्थानी भाषा में, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले हैं। प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, राज्य सरकार मांग से अधिक आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव, 15 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के आसार। और खेलो राजस्थान 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी, 1 दिसंबर से प्रतियोगिताएं प्रस्तावित।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक को गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने विरोध और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति बनाई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं SOP जारी की जाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अनधिकृत भीड़भाड़ को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल और अन्य संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर भी चिंता जताई। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीते कुछ सालों से रक्षा क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण तथा प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा मंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर

0: समारोह में बोल रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
1: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की पार्थिव देह पुलिस ने परिजनों को सौंप दी। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। भरतपुर आईजी प्रीति चंद्रा ने बताया कि बीती रात जिले के वैर स्थित भोंडा गांव में ग्रामीणों ने खनन लीज विवाद को लेकर पूर्व विधायक पर हमला कर दिया था, जिसमें पूर्व विधायक और उनके अंगरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। श्री भड़ाना को नाजुक हालत में जयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। पुलिस ने 40 लोगों को चिन्हित किया है, जिनकी तलाश जारी है। वहीं कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य सरकार खरीफ सीजन में मांग से अधिक उर्वरकों की आपूर्ति कर रही है। रबी सीजन में भी किसानों को मांग के अनुसार डीएपी और यूरिया उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि डीएपी की 5,10,000 मीट्रिक टन मांग पर 5,44,995 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाया गया। इसी तरह यूरिया की 11 लाख मीट्रिक टन मांग के मुकाबले 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया की आपूर्ति की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 18 दिन के लिए डीएपी और 35 दिन के यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरक वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमाखोरी, कालाबाजारी और यूरिया के डायवर्जन में लगे विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 128 फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, वहीं 25 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीम लेपित यूरिया नीम के तेल से कोटेड यूरिया है, जिसे खास तौर से कृषि उर्वरक के रूप में उपयोग के लिए विकसित किया गया है। नीम की परत यूरिया के नाइट्रीकरण को धीमा कर देती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है और भूजल प्रदूषण भी कम होता है। एक रिपोर्ट।
2: नीम कोटेड यूरिया किसान के हित में महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। इससे यूरिया के गलत इस्तेमाल और डायवर्जन पर रोक लगी है, साथ ही बिचौलियों पर भी लगाम लगी है। केंद्र सरकार ने सभी देशी निर्मित यूरिया पर 100% नीम कोटिंग अनिवार्य कर दी है। उर्वरक निर्माताओं को इससे जुड़ी लागत को संतुलित करने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP पर अधिकतम 5% तक बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है। नीम कोटेड यूरिया पारंपरिक यूरिया होती है, जिसे नीम के तेल से संसाधित किया जाता है। नीम का तेल नाइट्रिफिकेशन अवरोधक के रूप में काम करता है और मिट्टी में नाइट्रोजन के रिलीज को धीमा कर देता है। ये नाइट्रोजन पोषक तत्वों की हानि को कम करता है और उर्वरक के अधिक उपयोग को घटाता है। इससे किसान यूरिया की खपत कम कर सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया को अपनाने से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है। इससे फसल की पैदावार, यूरिया की आवश्यकता और अन्य कीटनाशक खर्चों में भी कमी से फसल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बांसवाड़ा कोर्ट परिसर में ट्रैप कार्रवाई करते हुए आज अदालत के रीडर और एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया। इन पर परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेने का आरोप है। ACB के अनुसार परिवादी को जमानत मिलने के बाद उसकी जमानत खारिज नहीं करवाने तथा अदालत में विचाराधीन प्रकरण में मदद करने के एवज में रिश्वत की ये मांग की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रिश्वत रीडर के कहने पर वाहन चालक की मार्फत मांगी गई थी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों में बीकानेर संभाग में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। कल से 15 अक्टूबर तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम

0: बारिश की संभावना है। विभाग ने कल चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के आसार हैं। आज विश्व आर्थराइटिस दिवस है। ये दिन जोड़ों में बार बार होने वाले दर्द, अकड़न और सूजन यानी गठिया से जुड़े लक्षण सहित जोड़ों से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसके माध्यम से रूमेटिक और मस्कुलोस्केलेटन बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सक्रिय जीवन जारी रखने में सहयोग देने के प्रयास किए जाते हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुलता अग्रवाल ने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र बढ़ने के साथ अधिक आम होता है। वहीं सूजन संबंधी गठिया युवाओं को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सेल्फ मेडिकेशन से बचें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। उचित इलाज और व्यायाम से जोड़ों की कार्यक्षमता जीवन भर बनाए रखी जा सकती है।
1: हमें केवल कुछ ही बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें हमेशा मोबाइल रहना, आपको अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करते रहना है ताकि आपके जॉइंट्स के अराउंड जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहें, और आपको साथ ही साथ ये देखना है कि आप बार बार अगर किसी जॉइंट से चोट लग रही है तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको जॉइंट से संबंधित कोई भी आपको सिम्टम्स हैं जैसे दर्द है, सूजन है, तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ऐसे पेन किलर्स लेकर आप उस बीमारी को बढ़ाइए नहीं, तो आपको हमेशा अपने सिम्टम्स के प्रति सतर्क रहना है ताकि आप अर्ली सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर सकें। इस बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम इसको अर्ली पकड़े ताकि हम इसका बेहतर इलाज कर सकें।
0: शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जा रही है। शारदीय नवरात्र पर और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
2: शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही कल घरों, मंदिरों और गरबा पांडालों में घट स्थापना की गई। राजधानी जयपुर के आमेर स्थित शिला माता मंदिर, सीकर के प्रसिद्ध जीण माता मंदिर, डूंगरपुर के आशापुरा धाम और गलियाकोट के शीतला माता मंदिर सहित प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं और माता के जयकारे गूंज रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक गरबा और डांडिया का उल्लास छाया हुआ है। वहीं रामलीलाओं का मंचन भी किया जा रहा है। कोटा के प्रसिद्ध दशहरा मेले की भी शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के दौरान नए वाहनों की खरीद को लेकर भी लोगों में उत्साह है। वहीं लोग निवेश के बेहतर विकल्प भी तलाश रहे हैं। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: खेलो राजस्थान 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं। इन खेलों में भाग लेने के लिए 16 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ये खेल प्रतियोगिताएं इस साल 1 दिसंबर से 15 जनवरी 2027 के बीच प्रस्तावित हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए इन मुकाबलों का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले हैं। प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, राज्य सरकार मांग से अधिक आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव, 15 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के आसार। और खेलो राजस्थान 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी, 1 दिसंबर से प्रतियोगिताएं प्रस्तावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो गए हैं। 12 जिले की प्रमुख माता मंदिरों सहित अन्य मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। पहले दिन शुभ मुहूर्त में मंदिरों और घरों में घट स्थापना की गई। इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की आराधना की गई। साथ ही अनुष्ठानों का दौर शुरू हुआ। जिले के विभिन्न मंदिरों में अखंड रामायण पाठ भी प्रारंभ हो गए हैं। मंदिरों में सुबह से ही दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहता है। रामगढ़ स्थित कृष्णाई माता मंदिर, अंता के सोरसन स्थित ब्रह्माणी माता मंदिर, छबड़ा की गुगोर माता और शाहबाद स्थित नगरकोट माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज दूसरे

0: दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जा रही है। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा हुई। इसके साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जो चुनाव प्रक्रिया पूरे होने तक प्रभावी रहेगी। यहां तीसरे और चौथे चरण में चुनाव होंगे। तीसरे चरण के चुनाव की समय सारिणी में संशोधन किया गया है। नई समय सारिणी के अनुसार तीसरे चरण में 2 नवम्बर को मतदान दलों की रवानगी होगी। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए 3 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सरपंच पद के लिए 4 नवंबर नामांकन प्रक्रिया की तारीख रहेगी, जबकि 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज चुनाव की तैयारियों के तहत जिले की सभी पंचायत समितियों में प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी बाल मुकुंद असावा के निर्देशन में आयोजित कार्यशालाओं में रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और जिला तथा ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संभावित प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया, निर्वाचन संबंधी नियमों और दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। साथ ही नामांकन प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बताया गया। जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने और पात्र युवाओं के मतदाता पंजीयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में बालिकाओं ने लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने परिवार तथा समाज को मतदान के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। कोई भी योग्य मतदाता न छूटे थीम पर जिले में पात्र युवाओं का मतदाता सूची में 100% पंजीयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी शिक्षण संस्थाओं में 2 दिवसीय विशेष मतदाता पंजीयन शिविरों का आयोजन हुआ। इनमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया सीखी और अपना ऑनलाइन पंजीयन कराया। जिले में नगर निकाय चुनाव पिछले दिनों संपन्न हुए। 12 नगर परिषद चुनाव के परिणाम में पहली बार आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शीतल राठौर सभापति बनी। अंता नगर पालिका में कांग्रेस के प्रदीप कुमार विजयी हुए। अटरू में कांग्रेस की निशा नगर पालिका अध्यक्ष विजयी हुई, जबकि छबड़ा नगर पालिका में भाजपा की रीना सुमन अध्यक्ष निर्वाचित हुई। साथ ही मांगरोल नगर पालिका में भी भाजपा के भूपेंद्र कुमार अध्यक्ष बने। सिसवाली नगर पालिका में कांग्रेस के पीयूष चेयरमैन बने। जिले भर में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति हुई। जिला कलेक्टर ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत पूरे जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत कई स्थानों पर स्वच्छता से जुड़ी जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुई। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहो, सुप्रीम कोर्ट रा दरुजा देश रा हर रहवासी सारू खुल्योड़ा है। प्रदेश में खादरी पर्याप्त उपलब्धता, राज्य सरकार मांग बत्ती पूर्ति तय कर रही है। प्रदेश रा मौसम में बदलाव, 15 अक्टूबर ताई कछे कछे हल्की बरसात रा आसार। और खेलो राजस्थान 2026 सारू ऑनलाइन तरीकाओं नाम मंडाया जा सके है। 1 दिसंबर होड़ा रोक कार्यक्रम। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरबस समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहो है कि कानूनी हक रा उल्लंघन री सूरत में अदालता ने दखल देवणो चाहिए। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रा 33वां स्थापना दिवस रे मौके CJI सूर्यकांत नई दिल्ली में

0: बढ़ो के संविधान देश रा हर रहवासी ने मान बराबरी आजादी और न्याय रो हक देवे है जानी हिफाजत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करे है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहो के सुप्रीम कोर्ट रा दरवाजा सगला सारू खुलिया है।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं, कोई भी पिटीशन किसी भी कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: दिल्ली पुलिस विरोध और धरना प्रदर्शन सारू रामलीला मैदान बुराड़ी मैदान और उगनी दिल्ली रो CBDT मैदान टैकिना है। दिल्ली रा पुलिस कमिश्नर का न्यू जारी हुकम रे मुजब जंतर मंतर ने प्रदर्शन सारू तय ठोणा ने लिस्ट हटातियो चियो है। गृह मंत्रालय जनता रा विरोध प्रदर्शन करण और धरना देवन राहक ने तय करण सारू दूजी ठोणा ने पिछाण करण बाबत एक समिति बनाई ही जिनरी सिफारिशा रा आधार जंतर मंतर ने प्रदर्शन रे ठोणा

0: माननीय सदस्य है, किसी इलेक्टेड बॉडी का कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: दिल्ली पुलिस विरोध और धरना प्रदर्शन सारू रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और उगनी दिल्ली रो CBDT मैदान तय किया है। दिल्लीरा पुलिस कमिश्नर का न्यू जारी हुकम रे मुजब जंतर मंतर ने प्रदर्शन सारू तय ठोणा ने लिस्ट हटाती चियो है। गृह मंत्रालय जनता रा विरोध प्रदर्शन करण और धरना देवन राहक ने तय करण सारू दूजी ठोड़ा ने पिछाण करण बाबत एक समिति बनाई ही, जिनरी सिफारिशा रा आधार जंतर मंतर ने प्रदर्शन रे ठोड़ा ने लिस्ट हटावन रो फैसलो करी चियो। पुलिस रे मुजब धरना प्रदर्शन सारू तय करी जी 3 नुवी ठोड़ा नुवी मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी करी जावेला। इबीच देश की राजधानी में हिफाजती इंतजाम और कड़ा कर दिया गया है और भीड़ भाड़ रोकण और कानून व्यवस्था बनाई रखण सारू शहर री सरहद रेलवे स्टेशन बस अड्डा और दूजी ठोड़ा सुरक्षा और बधा दे रिची है। इबीच लोकसभा में विपक्षरा नेता राहुल गांधी आज नई दिल्ली में खबरनवीसा सागे बातचीत कीनी। वह सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश ने कागज लिखकर चुनाव निपक्ष तौर करावण जुड़ी चिंता जताई। दूजकानी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा री ओर आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करी चियो। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU री छात्रावां सागे कथित यौन उत्पीड़न रा आरोपित मणिपुर कांग्रेस रा सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल कोईजम रे खिलाफ कार्रवाई री मांग करी ची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि लाडला कुछ वर्षा माए रक्षा हलका ने एकदम नुओ और खुद रेपाण उबो बनावण माथे खास ध्यान दियो जा रियो है। आमाए हथियारा और तकनीक लेर वर्दी साजो सामान और सिखावण ताई सगला हलका शामिल है। वे आज नई दिल्ली माए फौज और भारतीय खाद्य निगम बीच एक करार सारू राखी जा जलसा माए बोल रहा है। श्री सिंह कहो कि भारत रक्षा जरूरतों रो मोटो हिस्सो अब देश में ही तैयार कर रहे है।
2: आज आर्मी और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: पहली वाला विधायक और भारतीय जनता पार्टी रा नेता अतर सिंह भडाना री पार्थिव देह पुलिस वारा परिवार वाला ने सौंप दीनी है। ई पाछे हरियाणा रा फरीदाबाद माए वारो दाग करियो जा रियो है। भरतपुर रेंज री IG प्रीति चंद्रा बतायो के लाडली रात भरतपुर जिला माए वैर कने भोंडा गांव माए कुछ लोग खनन लीज रा झगड़ा माए भडाना माथे हमलो कर दीनो हो, जिनरे कारण भडाना और वारो अंगरक्षक घना जख्मी फेंक्या हा। ई पाछे भडाना ने नाजुक हालत में जयपुर रेफर करी जिया, जठे इलाज रे दौरान मारी मौत वेगी। ई वाकया पाछे हल्का माए हालात तनातनी वाला है पर काबू माए है। पुलिस 40 जना री पिछाण कर वाने हेर रही है, जदका कुछ लोगों ने हिरासत में लिया जिया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहो है कि राज्य सरकार सियाणू साखा री बुआई सारू मांग बत्ता खाद री पूर्ति कर रही है। वे बतायो कि DAP खाद री 5,10,000 मीट्रिक टन मांग बत्तो 5,44,995 मीट्रिक टन खाद मुहैया कराई चियो है। यूरिया खाद री 11,00,000 मीट्रिक टन मांग रे मुकाबले 17,00,000 मीट्रिक टन बत्ता यूरिया री पूर्ति करी ची। डॉक्टर मीणा बतायो कि प्रदेश में करीब 18 दिन री मांग रे मुजब DAP और 35 दिन री मांग रे मुजब यूरिया रो स्टॉक मौजूद है। वह कहो कि खाद रा वितरण में किणी भांतरी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करी जावेला और जमाखोरी और कालाबाजारी करण वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। मंत्री बतायो कि 128 फर्मा रा लाइसेंस निरस्त करी चिया और 25 जना रे खिलाफ FIR दर्ज कराई ची है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। नीम लेपित यूरिया खाद रा दाना मथे नीम रा तेल री परत

0: भाई चावे है जिन्हें खास तौर खेती बाड़ी माए काम लेवन सारू विकसित करी चियो है। नीम री परत यूरिया रा नाइट्रीकरण न मंदो करते वे है जिन्हु मिट्टी माए पोषक तत्व बत्ती तादाद माए अवशोषित वे सके है और जमी हेठ पानी कम गंदो वे है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नीम कोटेड यूरिया किसान के हित में महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। इससे यूरिया के गलत इस्तेमाल और डायवर्जन पर रोक लगी है, साथ ही बिचौलियों पर भी लगाम लगी है। केंद्र सरकार ने सभी देशी निर्मित यूरिया पर 100% नीम कोटिंग अनिवार्य कर दी है। उर्वरक निर्माताओं को इससे जुड़ी लागत को संतुलित करने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP पर अधिकतम 5% तक बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है। नीम कोटेड यूरिया पारंपरिक यूरिया होती है जिसे नीम के तेल से संसाधित किया जाता है। नीम का तेल नाइट्रिफिकेशन अवरोधक के रूप में काम करता है और मिट्टी में नाइट्रोजन के रिलीज को धीमा कर देता है। ये नाइट्रोजन पोषक तत्वों की हानि को कम करता है और उर्वरक के अधिक उपयोग को घटाता है। इससे किसान यूरिया की खपत कम कर सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया को अपनाने से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है। इससे फसल की पैदावार, यूरिया की आवश्यकता और अन्य कीटनाशक खर्चों में भी कमी से फसल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा कोर्ट परिसर में आज अदालत रा रीडर और एक ड्राइवर ने गिरफ्तार कर लीनो। वहां माथा एक जनाऊ घूस रा तौर 40,000 रुपए लेवन रो आरोप है। ब्यूरो में मिली जानकारी रे मुजब शिकायत करन वाला ने कोर्ट उन जमानत मिलिया पाछे वारी जमानत खारिज नहीं करावन और कोर्ट माए चाल रहा मामला माए मदद करन री एवज माए घूस री आ रकम मांगी ची ही। शिकायत माए रीडर रा कहम पाछे ड्राइवर रे मार्फत घूस लेवन रो आरोप मांडी चियो हो। अरबे मौसम। बीकानेर संभाग माए लाडला 24 घंटा माए कठे कठे बादलां री गाज सगे हल्की मझला दर्जा री बिरखा भी। मौसम विभाग रे मुजब कालों 15 अक्टूबर ताई उत्तराध आतुणी और उत्तराध हल्का माए जोरदार बायरो बजन सगे कठे कठे हल्की बरसात रा आसार है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी हल्का रा जिला माए गरज सगे हल्के मझला दर्जा री बिरखा रा आसार है। मौसम महकमो काल चूरू हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। आज विश्व आर्थराइटिस दिवस है। ओ दिन जोड़ बार बार दुखन अकड़न और गठियाओं जुड़िया लक्षणा समेत जोड़ाओं जुड़ी बीमारियां ने बारा माए जाग जगावन सारू मनायो जावे है। जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल माए गठियारी बीमारी री जानकार डॉक्टर मधुलता अग्रवाल बतायो के उम्र बधवा सागे गठियारी बीमारी भेवणु आम बात है पण सूजन जुड़ी गठियारी बीमारी नौजवाना माथे असर कर सके है। डॉक्टर मधुलता बतायो के बीमारी रा हालात माए खुद दवाई लेवणु बचनु चाहिए और डॉक्टर री राय जरूर लेवनी चाहिए। वह कहो के जरूरी इलाज और कसरत जोड़ा ने जिंदगी भर काम करन लायक बनाया जा सके है।
2: हमें केवल कुछ ही बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें हमेशा मोबाइल रहना, आपको अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करते रहना है ताकि आपके जॉइंट्स के अराउंड जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहें, और आपको साथ ही साथ ये देखना है कि आप बार बार अगर किसी जॉइंट से चोट लग रही है तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको जॉइंट से संबंधित कोई भी आपको सिम्टम्स हैं जैसे दर्द है, सूजन है, तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ऐसे पेन किलर्स लेकर आप उस बीमारी को बढ़ाइए नहीं, तो आपको हमेशा अपने सिम्टम्स के प्रति सतर्क रहना है ताकि आप अर्ली सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर सके। इस बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम इसको अर्ली पकड़े ताकि हम इसका बेहतर इलाज कर सके।
0: खेलो राजस्थान 2026 माए भाग लेवन सारू 16 नवंबर ताई ऑनलाइन तरीकाउ नाम मंडाया जा सके है। ए खेल होड़ा इन साल 1 दिसंबर आवता साल 15 जनवरी बीच कराई चावनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स री भांत राज्य क्रीड़ा परिषद री ओरों कराई जावन वाले आ होड़ा माए 12 पारंपरिक और नुआ खेल शामिल करिया जावेला। खेलो राजस्थान रा तेत ग्राम पंचायत उले राज्य स्तर ताई होड़ा राखी जावेला। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहो सुप्रीम कोर्ट रा दरूजा देश रा हर रहवासी सारू खुल्योड़ा है। प्रदेश माए खादरी पर्याप्त उपलब्धता राज्य सरकार मांग उमबत्ती पूर्ति तय कर रही है। राज्य रा मौसम माए बदलाव 15 अक्टूबर ताई कठे कठे हल्की बरसात रा आसार। खेलो राजस्थान 2026 सारू ऑनलाइन तरीकों नाम मनाया जा सके है।

0: एक दिसंबर उड़ान रो कार्यक्रम इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भारतीयों का कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

ग्राम भारती कार्यक्रम की चौपाल में बैठा सभी किसान भाई और बहनों को महेश भाई की ओर से घनी घनी राम राम। किसान भाइयों, आज की अपनी ग्राम भारती की चौपाल में अपन चर्चा करेंगे चना की उन्नत खेती पर। साथ ही जानकारी की बातों का विषय रहेगा फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण व प्रबंधन। दूसरा जानकारी की बातों का विषय है क्यों पत्ते पीले हो जाते हैं। साथ ही किसान भाइयों सुनेंगे एक भेंट वार्ता जिसका विषय है रबी फसलों की बुआई में ध्यान देने योग्य बातें। और किसान भाइयों जानेंगे बाजार भाव और मौसम का हाल और सुनेंगे एक चौकासा लोकगीत। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं आज की चर्चा जिसका विषय है चना की उन्नत खेती। चने की फसल अधिकतर बारानी क्षेत्रों में की जाती है जहाँ खेतों में खरपतवार हो और जुताई करना लाभकारी होता है। जुताई के कारण जल की अधिक प्रवेश कर सकेगा और खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और इनमें अपन को खाद में या जो उसकी उपजाऊ क्षमता में सहयोग करेगा। अगर हम बात करें चने की उन्नत किस्मों की तो जिसमें GNG 1581 गणगौर है, CSJ 515, RSG 974, RVG 201, GNG 1958 ये मरुधर की है, GNG 2144, GNG 2171 ये तैयारी है। अब इसके बाद अगर बात करें भूमि की तैयारी की तो चने की जो फसल है वो हल्की और भारी दोनों तरह की मिट्टी में किया जा सकता है, पर आवश्यक यह है कि जल निकासी वाली भूमि होनी चाहिए। हमें पहले गर्मियों में ही एक पलटवार यानी अच्छी जुताई कर देनी चाहिए और बागवानी के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करना आवश्यक है ताकि उसमें नमी संरक्षित रह सके। बुआई से पहले 3-4 बार भली प्रकार जुताई करके 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से क्विनाल फास 0.15% चूर्ण भली तरीके से मिट्टी में मिला दें। जिन क्षेत्रों में जड़ गलन की समस्या है वहाँ पर 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 200 किलोग्राम खाद में मिला अच्छी तरह से मिलाकर 10 से 15 दिनों तक छाया में रखें और बुआई के समय उसे प्रति हेक्टेयर के यानी कि पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। उर्वरक का प्रयोग हमें जो मिट्टी परीक्षण हमने कराई है उसकी सिफारिश के अनुसार करना चाहिए। किसान भाइयों मिट्टी का परीक्षण आवश्यक रूप से कराया जाना चाहिए। जिन भाई बहनों ने ये परीक्षण नहीं कराया है वो 10 किलो नाइट्रोजन 25 किलो फास्फोरस सिंचित अथवा जहाँ बहुत अच्छी नमी हो वहाँ पर 20 किलो नाइट्रोजन 40 किलो फास्फोरस 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई के समय इसे उड़ दिया जाना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में जहाँ खेतों में मैग्नीज की कमी है वहाँ 16.5 किलो 165 किलो मैग्नीज सल्फेट प्रति हेक्टेयर की बुआई की दर से पहले ही उसे ओढ़ दें। और इसके अलावा जिनमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हाई ग्रेड फास्फेट रॉक PSB कल्चर का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों ये अगर अपन सावधानी इसमें रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने जो बुआई है या अपनी जो चने की फसल है अच्छी होगी। तो किसान भाइयों अब सुनते हैं एक भेंट वार्ता और भेंट वार्ता है रबी की फसलों में बुआई रबी की फसलों की बुआई में ध्यान देने योग्य बातें। श्री हरिदत्त शर्मा सहायक कृषि अधिकारी मौजपुर लक्ष्मणगढ़ से भेंट वार्ता। तो सुनो किसान भाइयों।

0: किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं श्री हरिदत्त शर्मा, डबल AO मोजपुर। तो सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: तो हरिदत्त जी, आप से हम सबसे पहले किसान भाइयों के लिए जानकारी चाहें कि हमारे जो रबी फसलों में खेत की तैयारी किस तरह से हमारे किसान भाई कर सकें, क्योंकि रबी फसलों की बुआई का जो समय है वो इस समय चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं कि किस तरह से खेत की तैयारी करें।
1: सबसे पहले तो किसानों को जो अपनी खरीफ की फसल हैं उनके जो खरपतवार अवशेष बचे हुए हैं उनको निकालें खेत से, उसके बाद में जुताई चालू कर दें। नमी की कोई कमी नहीं है इस समय, और जो है पाटा लगा के तैयारी कर लें खेत की। बीज उपचार के लिए अपन बीज में जो है कीटनाशक यानी जो है दवाई बीज उपचार करें उससे कीटनाशक।
0: अच्छा जी, यानी कि अपन जो गहरी जुताई करके और पाटा लगा करके अपने खेत को किसान भाई तैयार कर सकें। अब हम आपसे चाहें कि इस समय हमारे जो किसान भाई हैं कौन कौन सी रबी फसलों की मुख्य फसल हैं उनकी वो बुआई कर सकें।
1: किसान भाइयों, रबी की जो मेन फसल हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, यहाँ की जो मेन क्रॉप हैं वो ये हैं।
0: अच्छा, इन फसलों का हमारे किसान भाई, तो बात हम करते हैं कि सबसे पहले जैसे सरसों की बात करते हैं, तो सरसों की जो फसल है उसमें हमारे जो किसान भाई हैं वो कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनको खेत में बुआई अपने किसान भाई कर सकें, और ऐसी किस्में जिनमें कि कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो उन फसलों को अपने किसान भाई बोएं, जिससे कि अपन को किसान भाइयों को उसमें कुछ रोग ना लगें और उससे उनको अच्छा उत्पादन मिल सके।
1: किसान भाइयों, सरसों की जो मेन किस्में हैं वो है RN 393, अरावली जिसको बोलते हैं, T59, पूसा बोल्ड RH 30, लक्ष्मी 1977, RL 1359, बायो 902 जिसको पूसा जय किसान के नाम से भी जानते हैं, RH 819, RN 505, गिर्रास RH 671।
0: अच्छा, ये हमारी जो उन्नत किस्में हैं सरसों की, तो इनको हमारे किसान भाई बुआई कर सकते हैं। अब बात करें कि हमारे जो किसान भाई हैं भाई ये उन्नत किस्में हैं इनकी बुआई करें, तो बोते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें कि भाई जैसे बीज उपचार है, भूमि उपचार है, उनके बारे में किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहते हैं?
1: किसान भाइयों, सबसे पहले भूमि उपचार, जो भूमि से जो कीड़े होते हैं हानिकारक वो लगते हैं उनके लिए भूमि उपचार जरूरी है। भूमि उपचार के लिए दीमक और अन्य कीड़ों की रोकथाम हेतु बुवाई से पूर्व अंतिम जुताई के समय क्यूनाल पोस्ट 1.5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टर की दर से खेत में डालकर जुताई करें। नमी को ध्यान में रखकर जुताई के बाद पाटा लगाएं। सरसों रोग प्रबंधन हेतु 15 किलोग्राम जिंक तथा 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टर का प्रयोग करने से बीमारियां कम लगती हैं तथा पैदावार में वृद्धि भी होती है।
0: अच्छा, यानी कि इस तरह तो हमारे किसान भाइयों भूमि उपचार कर सकें। अब इसके अलावा बीज उपचार है, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहते हैं?
1: किसान भाइयों, मैं आपसे बताता हूँ, बीज उपचार के लिए बीज की मात्रा पर केजी 4 से 5 किलो प्रति हेक्टर जो है पर हेक्टर काम में ली जाती है, बीज की मात्रा जो है
0: जी।
1: और बीज उपचार के लिए 2 ग्राम मैनकोजेब या 3 ग्राम थ्राइरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करना चाहिए किसान भाई।
0: अच्छा, यानी कि आपने भूमि उपचार के बारे में बताया और बीज उपचार के बारे में बताया, तो इससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको कितना फायदा होता है भूमि उपचार और बीज उपचार से, उसके बारे में बताएं।
1: बीज उपचार से क्या है, जो बीज जनित जो बीमारियां हैं वो नहीं लगती हैं, जैसे सफ़ेद रोली है ये आती है
0: जी,
1: उसका नियंत्रण होता है सफ़ेद रोली का, M45 से सफ़ेद रोली नियंत्रण हो जाती है बीज उपचार से। बाद में खैर स्प्रे भी करते हैं, लेकिन मेन जो है बीज उपचार जरूरी है इसमें।
0: अच्छा जी, यानी कि बीज उपचार से इन तरह के कुछ रोग ऐसे हैं जो कि अपन अगर शुरुआत में ही किसान भाई ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उन पर अपनी फसल पर नियंत्रण कर सकें। अब बात आती है कि भाई जैसे हमने बुआई कर दी है बीज उपचार करके, भूमि उपचार करके, तो उसके बाद खरपतवार मुख्य समस्या अपनी जो फसल है उनमें आती है खरपतवार की, तो खरपतवार प्रबंधन के लिए हमारे जो किसान भाई उनको क्या सलाह देना चाहोगे?
1: खरपतवार नियंत्रण 2 तरीका से होता है, एक तो अपन जैविक होता है, एक अपन पौध संरक्षण जो है उसके द्वारा होता है, तो उसके जरिए भी अपन कर सकते हैं। खरपतवार हाथ से भी निकाल सकते हैं और अपन उनको दवाई से भी जो है नियंत्रण कर सकते हैं।
0: अच्छा, यानी कि अच्छी जो है हमारे खाद अच्छी तरह से अपन हाथ से अगर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालें तो वो

0: ज्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद अब बात करते हैं अपन जैसे सिंचाई की, तो सरसों की फसल की अपन बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो इसमें सिंचाई की अपने किसान भाई किस तरह से ध्यान रखें और किस तरह से सिंचाई कर सकें।
1: किसान भाइयों, सरसों में अधिकतर जो है किसान भाई दो सिंचाई करते हैं, एक तो 40 दिन पे कर देते हैं बुवाई के, 35-40 दिन बाद कर देते हैं, दो मतलब जब फ्लावरिंग स्टेज होती है
0: जी
1: उससे पहले हो जाती है, और एक जब दाने पड़ जाते हैं और जब दाने की जो टफ स्टेज होती है थोड़े करने पड़े उसे पूर्व कर देनी चाहिए।
0: अच्छा जी, फिर अब बात करते हैं उर्वरक के बारे में, तो हमारे जो किसान भाई हैं उसको उर्वरक के बारे में भी, खाद के बारे में भी किसान भाइयों को बताएं कि कौन से जो खाद है मुख्य रूप से वो किसान भाइयों को डालने चाहिए जिससे कि अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई ले सकें।
1: किसान भाइयों का ये ध्येय है कि वो DAP की ज़्यादा तरफ रुझान करते हैं, जबकि DAP का विकल्प है सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट
0: जी,
1: जैसे DAP की जगह 3 कट्टा SSP प्लस 1 कट्टा यूरिया मिला करके पर हेक्टर काम में ले सकते हैं,
0: यानी कि वो 4 बीघा के लिए हो जाए।
1: 4 बीघा के लिए, 4 बीघा के लिए ये अपन करें। इसमें सल्फर भी मिलती है अपन को एक्स्ट्रा में,
0: यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का अगर मिश्रण अपने किसान भाई करेंगे तो DAP से भी अपन को अच्छा लाभ मिलेगा, यानी कि उसमें साथ में सिंगल सुपर फास्फेट में आप सल्फर भी बता रहे हो मिलती है, जबकि हमारे किसान भाइयों के भ्रांति है कि एक ही उनके रट लगी हुई है DAP
1: की, जबकि उससे कोई वो नहीं है, बराबर वो है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा इसमें यूरिया से पूर्ति करते हैं अपन SSP की उसमें, और सुपर फास्फेट जो है उसमें होता ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है उल्टा DAP की बजाय।
0: तो DAP की बजाय तो निश्चित रूप से आप इस तरह से उर्वरक डालने की बात कर रहे हो, तो आप हमारे किसान भाइयों को आपकी सलाह ये है कि भाई अपन DAP के बजाय सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया मिलाकर उसका काम में ले सकें। अब इस तरह से हम आगे बात करते हैं कि एक जौ भी हमारे बोए जाने वाली मुख्य फसल है, क्योंकि अब धीरे धीरे लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे पानी की कमी आती जा रही है, और हमारे किसान भाई गेहूं की जो सिंचाई करते हैं उसमें अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है, और अब जौ है वो कम पानी में हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकें, तो जौ के बारे में हमारे थोड़े से किसान भाइयों को बताएं कि कौन सी मुख्य उन्नत किस्में हैं उनके बारे।
1: देखो, जौ की जो मेन किस्म चल रही हैं, जो बढ़िया यील्ड दे रही हैं, उपज दे रही हैं अपने, RD 2035, RD 2503, RD 2668, BL2 बिलाड़ा, ये लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए स्पेशल है, बिलाड़ा 2
0: जी। तो ये उन्नत किस्में हमारे किसान भाई जौ की उगा सकें। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो भूमि उपचार और बीज उपचार इनमें भी जरूरी है क्या?
1: हाँ बिल्कुल, भूमि उपचार तो जमीन से जो कीड़े होते हैं हानिकारक उनको नष्ट करने के लिए होता है, तो वो तो हर क्रॉप में लगते हैं।
0: अच्छा, सभी फसलों में हमारे भूमि उपचार और बीज उपचार, तो इसमें बीज उपचार के लिए भी कौन कौन सी चीज़ों का हम बीज उपचार कर सकें?
1: इसमें बीज उपचार के लिए मैनकोजेब या थायरम, इन दोनों जो है ये दवाई हैं, इनसे उपचारित कर सकते हैं अपन। प्रति किलो बीज में 3 ग्राम थायरम, 2 ग्राम मैनकोजेब के हिसाब से अपन बीज उपचार कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो इसमें अपन बीज उपचार कर लिया और भूमि उपचार अपने किसान भाइयों ने कर लिया, तो इसमें भी खरपतवार के नियंत्रण के लिए अपने किसान भाई को क्या सलाह देना चाहोगे?
1: खरपतवार निकालने के लिए रसायन जो आ रहे हैं उनसे भी निकल सकता है खरपतवार, या अपने श्रमिक द्वारा भी निकाल सकते हैं खरपतवार,
0: निराई गुड़ाई के द्वारा। इसके अलावा अब हम बात करना चाहें कि उर्वरक प्रबंधन भी इसमें किस तरह से है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं कि किस मात्रा में कैक सिंचाई हो जाए, कब कौन सी सिंचाई पे कितना उर्वरक अगर अपन किसान भाई डालना चाहें तो।
1: बुवाई से पूर्व जौ की फसल में नाइट्रोजन की 30 केजी प्रति हेक्टर होनी चाहिए नाइट्रोजन, बुवाई से पूर्व हाँ, जिसको ओर के दें अपन।
0: अच्छा जी,
1: और खड़ी फसल में अपन 30 किलो नाइट्रोजन खड़ी फसल में दे सकते हैं प्रति हेक्टर
0: के हिसाब से। अच्छा, चलो इस तरह से हमारे नाइट्रोजन की जो मात्रा है हमारे किसान भाई पूर्ति कर सकें और अच्छा उत्पादन ले सकें। तो अंत में हम आपसे चाहें कि हमारे किसान भाइयों को कौन सी सलाह देना चाहो जिससे कि वो कम लागत में और अच्छा उत्पादन ले सके, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे
1: किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, जो DAP है, DAP की जगह जो अपन सिंगल सुपर फास्फेट

0: यूरिया मिला करके काम में लें तो वो दी बेस्ट है, सबसे अच्छा है।
1: अच्छा जी, चलो आपने हरिदत्त जी हमारे किसान भाइयों को अपने रबी फसलों की किस तरह से तैयारी किसान भाई कर सकें, किस तरह से हम उन्नत किस्में और उर्वरक प्रबंधन के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी, या के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार साहब, धन्यवाद साहब।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी रबी फसलों में बुआई पर ध्यान देने योग्य बातें। श्री हरिदत्त जी शर्मा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और सबसे महत्वपूर्ण भूमि की तैयारी और साथ में बीज उपचार, जिस पर आपको भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब किसान भाइयों, समय है मनोरंजन का, तो सुनते हैं एक चौका सा लोकगीत।

अभी आपने सुना एक चौकासा लोगी सीमा मिश्रा और उनके साथियों का। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जानकारी की बात का। जानकारी की बात में फसलों में पोषक तत्वों की कमी, लक्षण, पहचान व समय पर करें प्रबंधन। लगातार फसल लेते रहने से, गोबर आदि जैविक खाद का कम उपयोग करने से मिट्टी में आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी होने लगती है। मिट्टी में कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं, कितने नहीं हैं, पौधे के लिए कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, ये सभी जब हम मिट्टी का परीक्षण कराते हैं तो हमें पता लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मिट्टी की भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधों को नहीं मिल पाते हैं। मिट्टी की जाँच में फॉस्फोरस, पोटास तत्वों को के मान सीधे इन आवश्यक तत्वों की भूमि उपलब्ध दर्शाते हैं। पीएच मान मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता को दर्शाता है और इससे हमें क्या क्या कमी है उनके बारे में पता लग जाता है। किसान भाइयों, जैसे अगर नाइट्रोजन की कमी है तो पौधे छोटे हल्के रंग के हो जाते हैं, पुरानी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और अधिक कमी होने पर पत्तियां भूरी होकर सूखकर गिर जाती है। फॉस्फोरस की यदि कमी हो तो पत्ती अथवा तने पर लाल या बैंगनी रंग आ जाता है, पत्ती सीधे एवं सकड़ी हो जाती है, जड़ों में फैलाव कम हो जाता है और पौधे छोटे और गहरे रंग के हो जाते हैं। अगर पोटेशियम की कमी हो तो पुरानी पत्तियों के किनारे पीले झुलसे हुए से हो जाते हैं, बाद में ये पत्तियां झुलसी हुई हो जाती हैं और गिर जाती हैं। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, पुरानी पत्तियों की नसें हरी रहती हैं लेकिन बीच में का जो स्थान होता है वो पीला पड़ जाता है। और अगर ये ऐसी स्थिति कोई सी भी हो तो उसमें हमारी फसलों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर हम जस्ता की बात करें, जिंक की बात करें तो पत्तियां छोटी और सुकड़ी होती है, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, जब शिराएं हरी रहती हैं पत्तियों के भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पौधों के अग्रभाग में दिखाई देते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी हो तो नई पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और शीर्ष कली पीली तथा उक्के आकार की हो जाती है, धीरे धीरे सूखकर गिर जाती है। बोरॉन की कमी हो तो शीर्ष पत्तियों का रंग हल्का हो जाता है, प्रारंभ में पत्तियों का आधार का रंग हल्का रहता है, अंत में शीर्ष कली सूखी हो जाती है और नई जो पत्तियां हैं गुच्छों के रूप में बनती हैं, डंठल जैसे एक फूल सा बन जाता है इस तरह का, और ये उनमें एक समस्या सी उत्पन्न हो जाती है। तो किसान भाइयों, ऐसे अगर हम करें तो जो इनमें आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी जांच करा के हम मिट्टी में उनको डाल सकते हैं।

0: किसान भाइयों, ये तो रही जानकारी की बात। अब दूसरी जानकारी की बात अपन शुरू करें, उससे पहले सुन लें ये संदेश।
1: कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
5: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
6: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: किसान भाइयों, जानकारी की दूसरी बात, आखिर पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं? जो अभी हम पोषक तत्वों की बात कर रहे थे, उनकी कमी से ये पत्ते पीले हो जाते हैं। और इनमें जैसे नाइट्रोजन की कमी हो, तो अगर हमें ऐसा लगे पौधे के नीचे की जो पत्तियां हैं पीली दिखाई दे रही हैं, तो ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। उपचार अगर इसका करना हो, विभागीय सिफारिश के अनुसार हम नाइट्रोजन उर्वरक की आधी मात्रा बुआई के समय और आधी में से आधी मात्रा सिंचाई के पहली सिंचाई और बची हुई मात्रा जो दूसरी सिंचाई करें 35 से 40 दिन के बाद उसमें खड़ी फसल में छिड़क दें। सल्फर व जिंक की कमी, अगर हम ऊपर वाले भाग की पत्तियां पीली दिखाई दे तो उसमें सल्फर की कमी के कारण ऐसा होता है। यदि पत्तियों का आकार छोटा है या पत्तियों की शिराओं के बीच भूरे धब्बे बन जाएँ तो अपन को मान लेना चाहिए कि जिंक की कमी है। और जिंक की कमी क्या करें, मिट्टी की जांच के आधार पर जिंक तत्व की कमी का निर्धारित होने पर बुआई से पूर्व 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट तथा 24 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की मिट्टी में मिलाकर उसे छिटक दें और मिट्टी में मिला दिया जाना चाहिए। यदि बिजाई के समय अगर हम नहीं कर पाए और हमें पता लगता है तो 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 750 ग्राम भुजा हुआ चूना अलग अलग बर्तनों में घोलें और जो चूने का जो घोल है उसमें 100 से 125 लीटर अपन ले लें और पानी में उसे मिला दें और उसके बाद उसे छिड़काव करें। सल्फर की अगर कमी न हो तो 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई की जानी चाहिए। अगर जो पत्तियाँ पीले पड़ रहे हैं तो उनका हम ऐसे किसान भाइयों उपचार कर सकते हैं। सल्फर की जैसे कमी हो 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम क्या डालेंगे, उसमें जिप्सम डालेंगे और खड़ी फसल में हरा कसीसा फेरस सल्फेट आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में के हिसाब से घोलकर उसका छिड़काव भी हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो रही जानकारी की बात। अब समय है आज के बाजार भाव का। तो अगर अलवर की मंडी का आज का जो बाज़ार भाव है गेहूं का 2500 से लेके 2100 रुपये प्रति क्विंटल, जो 2100 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल, चना 7000 से लेके 7300 रुपये प्रति क्विंटल। हम सरसों की बात करें तो 8000 से लेके 8700 रुपये प्रति क्विंटल, ग्वार 5700 लेके 6200 रुपये प्रति क्विंटल, तेल 9000 से लेके 11000 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, आज के मौसम की बात करें तो आज आंशिक बादल छाए रहे और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अलवर में भी, वैसे तो बीकानेर संभाग में मौसम की संभावना ज़्यादा है, लेकिन अलवर में भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी इस समय हो सकती है। और शीघ्र एक दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है जो सही वर्षा अपने इस उत्तर पूर्वी राजस्थान में कर सकता है, ऐसा मौसम विभाग की अनुशंसा है। और किसान भाइयों, अब समय हो गया विदा लेने का। तो सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान, घनी घनी राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कुमार सानू अलका याग्निक के गाए तड़ी पार के इस गीत के साथ ही हमारा ये फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का इस सरिस का चैनल है लोक संगीत में। आइए आपको सुनवाते हैं नरसिंह शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत।

आप सुन रहे हैं नरसिंह शर्मा और साथियों को। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये अगला लोकगीत, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी रे गोवर्धन गिरधारी।

0: जाता फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
5: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
6: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
7: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
9: क्या हो गया ऐसा?
8: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
9: ये कमाल कैसे हो गया?
8: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
9: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
8: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
10: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे नरसिंह शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य।

0: केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को और दिल्ली हरियाणा पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों

0: का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन किसी भी कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
2: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
4: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
3: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
5: वी आर नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन।
6: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
3: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य

0: में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India reaffirms commitment to deepening economic cooperation with UK, targets doubling bilateral trade by 2030. Centre urges states and union territories to ensure prominent display of rate lists by clinical establishments. Government to set up high-level committee to address sugarcane farmers' grievances in Maharashtra and Karnataka. Jantar Mantar in New Delhi no longer a protest site. Delhi police designates 3 new venues. American economists Robert E. Hall and Michael Woodford to get this year's Nobel Prize in Economics. An IMD forecasts a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab and Chhattisgarh till tomorrow. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal

0: पड़ोसन फिल्म से लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

भूपेन हजारिका की, माफ कीजिए, भूपेन हजारिका की आवाज़ में रुदाली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, गुलजार ने इसे लिखा। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि

0: हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आवाज़ है जो दिल की गहराइयों को छू जाती है, दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाती। इस आवाज़ में शोखी है तो दर्द भी, संजीदगी भी। आवाज़ ऐसी जो सीधा दिलों पर असर करती, शायद ही कोई इस आवाज़ के असर से बचा हो। इस आवाज़ की कशिश सुनने वालों के दिलों की गहराइयों में कुछ यूं उतरी कि सुनने वालों के दिल मचल उठे। अपनी गायकी के बेमिसाल अंदाज के साथ आवाज के इस जादूगर ने करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बना ली। गजल सम्राट जगजीत सिंह हैं आज के फनकार।

अब अंदाज के दम पर करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों को जीतने वाले गजल की दुनिया के बेताज बादशाह जगजीत सिंह, जिनकी आवाज में नज्म हो या गीत ओ गजल, लोग सुनने को बेकरार हो उठते।

तो जन्म के समय उनका नाम जगमोहन रखा गया, लेकिन उनके पिता ने अपने गुरु की सलाह पर उनका नाम जगजीत कर दिया और फिर हर कोई प्यार से उन्हें जीत कहकर पुकारने लगा। वैसे तो जगजीत सिंह का परिवार मूलतः पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। चूंकि इनका जन्म राजस्थान में हुआ, इसलिए शुरुआती शिक्षा गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो जालंधर आ गए, जहाँ के डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इतिहास जैसे विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साथियों, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि संगीत के प्रति जगजीत सिंह की रुचि पढ़ाई के दौरान ही बढ़ती गई और धीरे धीरे संगीत का ये शौक जुनून बन गया। उनके भीतर एक गायक बनने की तमन्ना जाग उठी।

जगजीत सिंह ने पंडित छगनलाल शर्मा के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत सीखने की शुरुआत की और फिर आगे चलकर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखकर साल 1965 में गायकी के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए, जहां से शुरू हुआ उनके संघर्ष का दौर।

जगजीत सिंह माया नगरी में तो आ गए थे, लेकिन संघर्ष का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तलत महमूद, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, किशोर कुमार जैसे महान गायकों के दौर में प्लेबैक सिंगिंग का चांस मिल पाना दूर तक संभव न था। मुंबई जैसे शहर में अपनी रोजी रोटी के लिए वो कभी विज्ञापनों के जिंगल्स गाते, कभी कॉलेज तो कभी हाई प्रोफाइल लोगों

की पार्टियों में अपनी पेशकश दिया करते। कहते हैं कि जीवन के संघर्ष इंसान को खट्टे मीठे अनुभवों से भर देते हैं और संघर्ष के बाद मिली सफलता ताउम्र साथ रहती है। ऐसे ही अपने संघर्ष के दिनों में जगजीत सिंह की मुलाकात हुई चित्रा जी से। फिर साल 1969 में दोनों ने विवाह कर लिया और यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनका पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल देखते ही देखते हिट हो गया। जगजीत चित्रा की गजलें शोहरत की बुलंदियां छूने लगी।

एक लंबे संघर्ष के बाद जगजीत सिंह ने अपनी बेमिसाल गायकी के दम पर अपनी पहचान बनाई 70 के दशक में, जब गजल के आसमां पर नूरजहां, मल्लिका पुखराज, बेगम अख्तर, तलत महमूद, मेहदी हसन जैसी आवाजों का बोलबाला हुआ करता था। करोड़ों संगीत प्रेमियों को अपनी अद्भुत गायकी से दीवाना बनाने वाले गजल सम्राट जगजीत सिंह ने मीर, गालिब, फैज, फिराक, गुलजार, निदा फासली, जावेद अख्तर, राजेश रेड्डी जैसे हर दौर के शायर की गजलों को अपनी आवाज दी।

गायकी को एक नया लिबास पहनाया जगजीत सिंह ने। उनका मानना था संगीत प्रेरणा की वस्तु है, प्रतियोगिता की नहीं। जगजीत सिंह ने अपनी गायकी में नित नए प्रयोग किए, फिर चाहे वो साज हो या आवाज। कुछ गजलों में तो उन्होंने कोरस का भी इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, जगजीत सिंह ने साधारण शब्दों में ढली आम आदमी की जिंदगी को भी सुर

साथियों, जगजीत सिंह के फिल्मी सफरनामे पर नजर डालें तो साल 1981 की फिल्म प्रेम गीत, 1982 की फिल्म अर्थ और साथ साथ कभी भुलाई नहीं जा सकती।

जगजीत सिंह ने अनेकों म्यूजिक कंपनीज के साथ काम किया। पंजाबी एल्बम्स के साथ साथ जगजीत सिंह के भक्ति एल्बम्स को भी लोगों की सराहना मिली। उनके इस अंदाज ने भी संगीत प्रेमियों को मोह

साल 2003 में भारत सरकार ने जगजीत सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया और आगे चलकर इनके सम्मान में डाक टिकटें भी जारी की गईं। गजल, शास्त्रीय, भक्ति, लोकगीत जैसी तमाम शैलियों में अपनी लाजवाब गायकी से लोगों का दिल जीतने वाले गजल सम्राट जगजीत सिंह ने साल 2011 में 10 अक्टूबर के दिन अपनी अंतिम सांसें लीं।

शोध आलेख स्वर शिफाली कपूर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। हमारे

मैंने सब कागज पे लिख दिया था बहुत पहले, दिल का हर राज कह दिया था बहुत पहले। अब जो पूछोगे तो क्या बाकी है कहने को, जो कहना था कह दिया था बहुत पहले। मेरे जख्मों की गहराई ना पूछो मुझसे, मैंने हर दर्द को अपना लिया था बहुत पहले। तुमको फुर्सत ही

ना थी हाले दिल सुनने की, हमने सब कुछ तो कह दिया था बहुत पहले, जिसको तुम आज भी एक ख्वाब समझते हो वो हकीकत थी, हमने देख लिया था बहुत पहले, हमने हर रंज को किस्मत का लिखा मान लिया था, तुमको खोने का भी डर था बहुत पहले, तुमने लौट आने का वादा तो किया था हमसे, दिल ने मगर अंजाम समझ लिया था बहुत पहले।

हम टूटे ये दिल भी टूटा, चलो जाने दो, क्या सुनोगे क्या कुरेदोगे, जाने दो। दर्द की बात अगर छेड़ी तो बिखर जाएंगे, जख्म सोए हैं उन्हें मत छेड़ो, जाने दो। हमने माना कि बहुत रंज दिया है तुमने, अब न शिकवे न गिले, बस छोड़ो, जाने दो। दिल ने बरसों जिसे आँखों में सजाया था, वो ख्वाब था अब ख्वाब समझो, जाने दो। जिंदगी फिर भी गुजर जाएगी खामोशी से, हम अगर टूट गए हैं तो गए हैं, जाने दो। जिसको अपना कहा वो अपना था ही कब, अब ये किस्सा भी हुआ पुराना, चलो

आके तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

समझ लेना मोहब्बत तो नहीं, कुछ ताल्लुक में फरीब बेहिसाब भी होता है। इश्क में हर शख्स को मिलती नहीं मंजिल, राहे उल्फत में दश्ते सराब भी होता है। इश्क इंसान को फकत आबाद ही नहीं करता, इसमें आदमी का खाना खराब भी होता है।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। ऐन से फकत इश्क नहीं अजाब भी होता है, दिल के जख्मों का कोई हिसाब भी होता है, दिल के बहलाने को काफी नहीं वादों की रोशनी, चश्मे तर में आलम इस्तेराब भी होता है, हर ताल्लुक को

0: मैंने आज फिर बैठ के तन्हाई में उजड़े दिल उदास आँखों का हिसाब लिखा, हर ख्वाब का जिक्र जो तेरे साथ देखा था, हर उस जख्म पे खामोशी का अजाब लिखा। जो लफ्ज़ लबों तक आके इजहार ना बन सके, उन्हें अशकों की जुबा में बेनकाब लिखा। तेरे बाद जो गुजरी दिले बेकरार पे, हर एक दिन को दर्द की किताब लिखा। ना कोई गिला ना शिकायत का बाब लिखा, मगर जो दिल ने कहा वो बेहिजाब लिखा। अब क्या उम्मीद वफा, क्या इंतजार वसल, हर एक आरजू को वक्त ने नायाब लिखा।
1: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।

वो मेरा मुंतजिर होगा, ये मेरा ख्याल है बस, दिल को उस पे अभी तक एतबार है बस, जो उसने पूछ लिया हाल दिल तो क्या कहें, ये एक लम्हा ही सदियों का इंतज़ार है बस, ना उसने वादा किया ना वफा का इकरार, मगर ये दिल भी अजब बेइख्तियार है बस, क्या सुनाएं उस दौरे मुख्तसर की कहानी, कि हमें रास ना आई इस मोहब्बत।

0: साफ सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनूं।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे नहीं।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज

0: सेवाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी।